0: लोगों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सबसे पहला स्थान योग का होता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे योग के कुछ प्राणायामों की मुख्य सूची, जो इस प्रकार है। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये सभी जानते हैं। प्राण का अर्थ है जीवन, शक्ति या श्वास, और आयाम का अर्थ है विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम के नियंत्रित अभ्यास से शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहला प्राणायाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ध्यान योग से शुरू करते हैं। ध्यान योग प्रणव प्राणायाम, अपना ध्यान एकाग्र करके, एकाग्रचित हो करके त्रिनेत्र पर लगाना है, यानी कि दोनों आंखों के मध्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राणायाम में प्रणव प्राणायाम का क्या महत्व होता है। प्रणव प्राणायाम यानी कि ध्यान को केंद्रित करने का अर्थ हमारे आजकल के विद्यार्थियों को, खास करके जो बच्चे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, और बच्चे ही क्यों, सभी लोग, बड़े भी और बूढ़े भी, सभी लोगों के लिए प्रणव प्राणायाम ध्यान योग इस तरीके से है जैसे एक औषधि। नियमित रूप से करने वाला अभ्यास यानी प्रणव प्राणायाम हम करें तो काफी कुछ हमें लाभ मिलता है। दूसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, जो कि सुखासन में हमें बैठ जाना है, पद्मासन में। जिस स्थिति में अपने आप को आप अच्छे से महसूस कर पाए, उस स्थिति में आपको बैठ जाना है। दाहिने अंगूठे दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से सांस लें। अब बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें और फिर दाहिनी से सांस लेकर बाईं से छोड़ें। यही प्रक्रिया यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती रहेगी। इसका जो लाभ होता है वो बहुत ही ज्यादा हमने देखा है कि कई प्रॉब्लम्स में ये ठीक करने में सफल हुआ है। मानसिक तनाव कम करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, रक्त संचार में सुधार करता है, मन को शांत करता है, साथ ही साथ हमें एक स्वस्थ जीवन जीने की कला बताता है। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। सीधा बैठकर गहरी सांस लें, पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर निकालें। सांस लेना स्वतः होता है, और जैसा कि हम एक विधि हमेशा से बताते आ रहे हैं, जैसे हम किसी के भी जन्मदिन पे जाते हैं या फिर हमारा खुद का ही जन्म होता है, तब हम क्या करते हैं, एक केक को कट करते हैं, जो कि आज की ये एक विधि बन चुकी है। तो केक जब हम कट करते हैं और उस पर लगाते हैं मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को बुझाने के लिए हम मुंह से फूंक मार करके उसका प्रयोग करते हैं। कपालभाति सीखने का सबसे सरल जो एक उदाहरण है वो ये है कि आप नाक के सामने अपनी एक उंगली को लेकर के जाएं और उस उंगली को मोमबत्ती समझें और उसे आप अपने नासिका से यानी श्वास से उसे बुझाने का प्रयास करें, यानी कि स्वतः बाहर श्वास को निकालें। और ऐसे ही इस उदाहरण से आप बहुत जल्दी कपालभाति करना भी सीख जाएंगे। पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है, शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। उसके बाद प्राणायाम आता है भस्त्रिका प्राणायाम। सीधा बैठ जाएं, तेजी से गहरी सांस लें और छोड़ें।

प्रक्रिया धौंकने की तरह होती है। इसको करने से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, सर्दी जुखाम में लाभदायक होता है। उसके बाद प्राणायाम आता है, भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद कर लें, कानों को उंगलियों से हल्का बंद करें, श्वास लेकर छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी या हुम ध्वनि का प्रयोग करें। हुम ध्वनि को प्रयोग करते हुए जब हम करेंगे तो हमारे कानों में एक हल्की सी आवाज और कंपन होगी, जिससे यह प्रतीत होगा कि हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। तनाव, चिंता और क्रोध कम होता है, मन को शांति देता है और एकाग्रता बढ़ाता है। इसके बाद प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम। गले को थोड़ा संकुचित करके श्वास लें और छोड़ें। श्वास लेते समय हल्की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे लाभ होता है। जिनको भी थायराइड होता है, यानी थायराइड ग्रंथि के लिए ये सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। मानसिक शांति प्रदान करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है। उज्जयी प्राणायाम के और भी कई लाभ हैं। आइए अब चलते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को नली के आकार में मोड़ें, यानी

या गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते समय लंबा ओम का उच्चारण करें तथा हमिंग साउंड करें, यानी कि करके एक साउंड हम बनाते हैं, वही साउंड हम कर सकते हैं। मन को अत्यंत शांत करता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगला प्राणायाम होता है अग्निसार। अग्निसार श्वास बाहर निकाल कर रोकें, पेट को बार बार अंदर बाहर करें ताकि हमें यह मालूम हो सके कि हम श्वास को ठीक तरीके से छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। पाचन तंत्र मजबूत करता है, गैस, कब्ज और अपच में लाभदायक होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बारी बारी से दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ें और लें। श्वास की गति धीमी और नियंत्रित रखें। शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करता है, तनाव को कम करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखता है आपके लिए। क्योंकि सबसे पहले ये जरूरी होता है कि अगर हमारे पेट में गैस, पेट फूलना, हल्की कमजोरी और भूख कम लगने की अगर बात है तो यह प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो ये था आज की जो एक समय सारणी यानी मुख्य प्राणायामों की सूची। तो आप इसे जरूर से करें और उसके बाद हमें चैट बॉक्स में आकर के इन सारे नियमित प्राणायामों के बारे में बताएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है और आप उसमें चाहते हैं कि कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं और या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह और सुन सहेली प्रोग्राम में, ताकि हम उसका निवारण आपको दे सकें। तो इसी के साथ आज की समय सारणी को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और प्राणायाम, एक और आसन के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए आज दोस्तों हम बात करेंगे अर्ध हलासन के बारे में। यह वह प्राणायाम है जो कि हमारी भागम भागी लाइफ में समय में जो भागदौड़ की भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं हो रही हैं। भागदौड़ भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान ही डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन रही हैं। ऐसे में शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग का अभ्यास, संतुलित खान पान अपनाना बहुत ही जरूरी होता है। योगासनों का नियमित अभ्यास व सिर्फ आप अपने शरीर को फिट रखने का काम करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी उपयोगी होता है। शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और फिट बनाने के लिए कई तरह के योगासनों का अभ्यास किया जा सकता है। तो आज हम आपको अर्ध हलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्ध हलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्ध हलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अर्ध हलासन को जो कि हम साथ में करेंगे और उसके फायदे भी बताएंगे। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा विस्तार और अच्छा सा फायदा होता है। मेन हम बताएंगे कि अर्ध हलासन जो है वो पेट और पीठ की समस्याओं को दूर करने में अर्ध हलासन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अर्ध हलासन के फायदे जान लेते हैं, बेनिफिट्स होते हैं अर्ध हलासन करने के। मोटापे की समस्या आजकल आम तौर की लाइफ में बहुत बढ़ती जा रही है। जो खान पान है वो नियमित रूप से ना होने पर और ऐसे कई जगह पर जो कि आज की न्यू जनरेशन है, एक जगह बैठकर जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से भी उनका शरीर बढ़ता जाता है। फिर वो शाम को अपना एक जिम अपनाते हैं, यानी जिम की तरफ भाग दौड़ करते हैं।
तो आज हम इसी सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही नियमित रूप से और सरल रूप से इस प्राणायाम को, इस व्यायाम को करेंगे।

घर पर ही बैठ करके तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मोटापे की समस्या से जो भी लोग आजकल के ग्रसित हैं, उनके लिए अर्धहलासन योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपके पेट और पीठ से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और साथ में आपको फिट रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी है यह प्राणायाम। पेट की समस्याओं से अर्धहलासन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसका अभ्यास शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी फायदेमंद होता है, यानी कि सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं हम अभ्यास के लिए जुड़ेंगे, हम इंटरनल भी जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता है कि वह स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ, तो उन सारी चीजों को भी फायदे दिलाने के लिए अर्धहलासन बहुत ही आवश्यक है। जान लेते हैं कि अगर हम अर्धहलासन करेंगे तो उससे हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे दूर होंगी। तो नंबर वन यानी सबसे पहला फायदा है इसका पेट और पाचन तंत्र के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम दिन भर में कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसको खाने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट की जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो प्राणायाम है जिसका नाम है अर्धहलासन, तो आइए हम बताते हैं। अर्धहलासन को रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अर्धहलासन योग बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से आपको पेट से संबंधित यानी कब्ज, अपच की समस्या, भूख न लगने की समस्या से आदि बहुत फायदा मिलता है। यह योगासन आपकी भूख को भी ठीक तरीके से काम करने में यानी सुचारू रूप से ठीक करता है। दूसरा आता है इसी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए बेहतर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। नियमित रूप से अर्धहलासन योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को बाहरी बीमारियां और संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। तीसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा पीठ के लिए फायदेमंद अर्धहलासन। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और हेल्दी होती हैं। कमर दर्द की समस्या और पीठ से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अर्धहलासन अभ्यास करने से बहुत ही उपयोगी होती हैं और वह जल्द ही ठीक होती हैं। अगर आपकी भी पीठ से जुड़ी समस्याओं हैं, आपकी समस्याएं हैं और उनकी आप शिकार हैं, तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है शरीर का रक्त प्रवाह सुधारने में उपयोगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपको ब्लड का यानी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में काफी हद तक मदद मिलती है। पांचवा इसका जो कि हमारा मुख्य उपयोगी है वो है वजन कम करने में। आज के समय में असंतुलित खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए न जाने कितने लोग कई कई दवाइयां, कई कई ऐसे योग अभ्यासन को अपनाते हैं जिसको करने के बाद में उन्हें फायदा तो मिलता है लेकिन कुछ ही समय के लिए। अर्धहलासन ही एक मुख्य रूप से फायदेमंद प्राणायाम है जो आपको जल्दी से वजन कम करने के लिए सुचारू रूप से सहायक सिद्ध होता है और अच्छी डाइट के अलावा रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे कि आपको किस तरीके से आसन की जो विशेषताएं हैं, जो उपयोगिताएं थी वो हमने बताई। आइए अब हम बात करते हैं अर्धहलासन जो कि हमें किस तरीके से करना चाहिए।
जैसा कि अभी हमने बताया कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके पेट से संबंधित सभी जो कि छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि अर्धहलासन हम कैसे करेंगे। विधि, अर्धहलासन करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर एक मैट का उपयोग करेंगे। यदि आपके पास योगा मैट उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी घर की चद्दर या कोई भी घर में जो मैट हो आप उसको बिछा करके यह अर्धहलासन प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, यानी पीठ आपकी नीचे रहेगी मैट पे, और हाथों को जांघों के पास रखें। उसके बाद पैरों को उठाएं, यानी आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे हवा में। इसके सिर और गर्दन कमर जमीन पर रखें, यानी सिर आपका और गर्दन कमर जमीन पर रहेगा। यदि हम देखें अपने जो कि प्राणायाम हम ये करेंगे, तो यदि हम इसका अगर कभी फोटो देखें तो आपको अंग्रेजी का एल शेप आपको समझ में आएगा कि ये एल जो कि शेप होता है, एल शेप में आपकी बॉडी दिखेगी। और पैरों को नीचे से ले जाएं, यानी कि आपके दोनों पैर ऊपर रहेंगे और अपने को पैर के बगल में, यानी जहां पर हिप्स हैं वहां पे आप दोनों हाथों को रख दें, और यह आसन अब पूरा हुआ। हम फिर से बता दें आपको, दोनों जांघों को ऊपर रखें यानी हवा में, गर्दन पीठ और सर आपका जमीन पे, दोनों हाथ आपके हिप्स के पास से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, और दोनों पैर हवा में यानी सीधे। श्वास मध्यम गति से लेनी है और छोड़नी है। यह अभ्यास पूर्ण तभी होगा जब हम श्वास से नियमित यानी श्वास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे, और टाइमर के हिसाब से स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट और धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो अर्धहलासन को अपने डेली रूटीन में शामिल करके सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अर्धहलासन अगर करने में आ रही है तो आप हमें जरूर से जरूर चैट बॉक्स में आकर के, जब हमारा योगशाला प्रोग्राम सुबह आता है उसके बाद में जब आप साथ में हम योगासन कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हलासन करने में या सूर्य नमस्कार करने में किसी प्रकार का अगर आपको कुछ ऐसी मन की वृत्तियां हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप चैट रूम में आकर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आप उसका आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हलासन यानी हलासन प्राणायाम, और आशा करती हूँ आप इसका नियमित रूप से रोज अगर आप इसको करेंगे तो आपसे आपके शरीर से संबंधित, आपसे आपके पेट के संबंधित सारी समस्याएं ठीक होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आऊंगी अपने नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं योगा एक्सपर्ट समता आपके सामने फिर से रूबरू होने आई हूँ आपकी अपनी योग पाठशाला में, जिसमें आगे की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, जिसमें 5वां प्राणायाम के बारे में हम आपके सामने आज फिर से आपसे आपको बताने आए हैं, उनकी विशेषताएं, उनके लाभ, उनकी विधि, और उनसे होने वाली जब हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो उनकी सावधानियाँ। जैसा कि आपको सभी को पता है दोस्तों कि हमारी इस भागम भागी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूर्णता सामान्यता रूप में हम नहीं ले पाते हैं। जैसे हम ले सकते हैं अपने खान पान को लेकर के, खान पान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पूर्ण रूप से हमें अपने स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे आजकल जैसे हो गया है कि हर चीज़ में मिलावट, तो हमें पूर्ण रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे कैल्शियम चीज़ जो की चीज़ें हैं हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती हैं। तो
तो ऐसी भागम भागी वाली स्थिति में हमें अपने आप को नियंत्रित रूप से स्वस्थ रखने के लिए दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें करना है, और जिसके साथ साथ हमें अपने शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क और हमारी पूर्ण जीवन को भी अच्छे से हम नित प्रतिदिन प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं। पांचवा प्राणायाम जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, जो है अग्निसार। अग्निसार के बारे में हम अगर बात करें तो यह एक मुख्य प्राणायामों में से है। जैसे कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम हमारा नियमित रूप से खान पान नहीं हो पाता है तो हमें पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अपच, गैस, या कहीं भी मैंने कुछ अगर हम लोगों ने कुछ खा लिया उल्टा सीधा, या जंक फूड्स। आजकल बच्चों के जो आजकल की रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं जंक फूड्स की, तो इन सब को ठीक करने के लिए, इन सब से बचने के लिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं खाना है, नहीं खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन इन सब से थोड़ा सा निजात पाने के लिए हम प्राणायाम की ओर अगर बढ़ेंगे तो हमें अपने स्वस्थ शरीर के साथ साथ हमें स्वस्थ जीवन भी प्रदान होगा। तो आइए अग्निसार के बारे में अब हम जानते हैं। अग्निसार प्राणायाम क्रिया योग के शरीर से अंदर अग्नि उत्पन्न होने के कारण अंदर के रोगाणु नष्ट होते हैं, जैसे इसे हम प्लाविनी क्रिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं अग्निसार विधि कि हमें अग्निसार प्राणायाम कैसे करना चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें खड़े होकर, बैठकर, लेटकर तीनों तरह से किया जा सकता है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि हम अगर बेंड होके बैठ नहीं पा रहे हैं, हम मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है या पेट में दिक्कत है, हमारी कमर में प्रॉब्लम है, हमारी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो हम अब प्राणायाम कैसे करेंगे। आप यह प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम किसी भी स्थान पर, आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, आप बेड पर बैठ के कर सकते हैं। मेन आपका मुख्य कारण यह है कि आप एकांचित होकर के और एकाग्रता से किसी भी चीज़ को, आप किसी भी प्राणायाम को आप करें। तो सबसे पहले हम बैठने की स्थिति बताते हैं आपको। यह प्राणायाम खड़े होकर, बैठकर, लेटकर

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, राधे राधे, जय जिनेंद्र। सुबह की पहली किरण के साथ आज हम बात करेंगे उस संगीत की जो शब्द नहीं जहाँ श्रद्धा बोलती है, जो सुर नहीं जहाँ समर्पण का भाव रहता है। आज पहली किरण में पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग्स जैसे चीजों पर मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ और जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति कैसे एक ही धड़कन मन के धड़कती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और शो की शुरुआत हो चुकी है पहली किरण के साथ। जी हाँ, शो है आपका पहली किरण और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज इस भक्तिमय कार्यक्रम में बात करेंगे उस भक्ति रस पान की जो हम सभी सुबह सुबह बिल्कुल करते हैं। जी हाँ, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, भाव वही होता है, बस नाम अलग होते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, पचरा ये सिर्फ गीत नहीं, माँ दुर्गा को पुकारने की लोक परंपरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल या फिर अवध क्षेत्र में जब नवरात्रि आती है तो गांव की चौपाल, मंदिर की सीढ़ियां ढोलक और मंजीरों के साथ गूंज उठती है। आइए आनंद उठाते हैं इस देवी गीत का, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में पचरा कहते हैं। पचरा में माँ को बेटी की तरह बुलाया जाता है, माँ की महिमा भी होती है और संतान का अपनापन। बिल्कुल, आइए इसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं आपके अपने शो पहली किरण में।

दोस्तों, देवी गीत शास्त्रीय और लोक दोनों रूप में मिलते हैं। इनमें शक्ति, करुणा और संरक्षण का भाव होता है। देवी गीत हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, ममता में भी होती है। इसके अलावा भजन, भजन मन की चुप्पी से निकलती हुई प्रार्थना है। तुलसी, मीरा, कबीर से लेकर आज के सरल भजन तक, भजन हमें ईश्वर के करीब नहीं बल्कि अपने भीतर ले जाता है, उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है जो हमारे ही अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इस भजन की ओर। भजन वो दीप है जो बाहर नहीं भीतर की ऊर्जा को ऊर्जावान करता है, उजाला फैलाता है और प्रकाशित करता है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे कीर्तन की। आखिर कीर्तन क्या है? कीर्तन संगीत का ही एक भाव है, एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसके द्वारा हम भक्तिमय होकर अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। और कहा भी जाता है, जब पूजा पाठ की बात होती है, जब इबादत की बात होती है, जब प्रभु की बात होती है, तो वहाँ पे भाव ही सबसे ज्यादा काम आता है। कहते हैं ना, प्रार्थना में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और जब वो प्रार्थना, वो शक्ति, वो भाव सुर और ताल से बंध जाए, फिर पूछना ही क्या, फिर कौन नहीं मोहित होगा, कौन नहीं आपसे जुड़ना चाहेगा। बिल्कुल इस कीर्तन की तरह, कीर्तन सामूहिक भक्ति है। नाम का उच्चारण, ताल में डूबना और डूबा हुआ मन, और लय में झूमता हुआ विश्वास, इन सभी का मिश्रण होता है कीर्तन में। जहाँ एक स्वर नहीं, सैकड़ों दिल एक साथ हरि नाम लेते हैं, वही कीर्तन है। कीर्तन यानी उसकी रटन। आइए लेते हैं एक बार फिर से उन्हीं का नाम।

अब जानेंगे कि अलग अलग धर्मों में भक्ति संगीत का महत्व क्या है। इस्लाम धर्म में जो भक्ति संगीत होती है उसको हम हम्द या नात कहते हैं। हम्द यानी अल्लाह की प्रशंसा। जिन संगीतों में अल्लाह की प्रशंसा हो रही होती है उन्हें हम हम्द के नाम से जानते हैं। और नात यानी पैगंबर मोहम्मद की शान में गाया जाने वाला संगीत। यहाँ सुर नहीं सजदा होता है, किसके लिए? उस ऊपर वाले के लिए।

जिसकी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म यानी हिम्स। यहाँ पे हम भजन को हिम्स के नाम से जानते हैं। चर्च में गाए जाने वाले गीत ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और उनकी प्रार्थना के लिए होते हैं, और इन गीतों के माध्यम से हम प्रभु यानी यीशु से संवाद करते हैं।

अब बात करते हैं सिख धर्म की, जहाँ पे इस कीर्तन, इस भजन को शब्द नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्दों को रागों में गाया जाता है और इसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द ही गुरु है और संगीत उसकी राह है, ऐसा माना जाता है।

बौद्ध धर्म में इसी को चैंटिंग कहते हैं। किसको? भजन को, कीर्तन को, ईश्वर में जुड़ जाने को, भक्ति में धुन पिरोने को चैंटिंग के नाम से जानते हैं हम बौद्ध धर्म में। मंत्रों का सामूहिक जाप मन को शांत करने के लिए इसका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में चैंटिंग कहते हैं और इसीलिए इसका नाम चैंटिंग पड़ा।

आइए अब बढ़ते हैं एक छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में मंदिर, मस्जिद और चर्च पास पास थे। एक दिन बिजली चली गई, अंधेरा घिर आया। तभी मंदिर से भजन, मस्जिद से नाथ और चर्च से प्रार्थना की आवाज आई। अंधेरा वही था, वही अंधेरा, पर डर चला गया था। गांव के बुजुर्ग बोले, ईश्वर का नाम अलग हो सकता है पर आवाज एक ही होती है, वो भी श्रद्धा की। आइए चलते हैं हम भी इस श्रद्धा को और रंग देते हैं, और रूप देते हैं, और उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस गुरु की इबादत में सजदा करते हैं।

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पचरा, देवी गीत, भजन, कीर्तन, चैंटिंग जैसे अन्य शब्दों की, जो कि एक संगीत होता है और ये संगीत होता है उस ईश्वर से जुड़ने का माध्यम यानी भक्तिमय माध्यम, जिसमें हम अपने भावों को शब्दों से जोड़ते हुए सुर लय तान से जोड़ देते हैं। पचरा एक देवी गीत है जो कि भोजपुरी, मैथिली और बंगाल की लोकप्रिय परंपरा में गाया जाने वाला देवी दुर्गा और अन्य देवियों को समर्पित भक्ति गीत है, जिसमें भक्त सीधे माँ से संवाद करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं और अपनी मनोकामनाएं बताते हैं। ये गीत अक्सर नीम के पेड़ के नीचे और ढोल मंजीरे के साथ गाए जाते हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव दिखाते हैं। पचरा शब्द का अर्थ है देवी के लिए गाए जाने वाले पांच या अधिक पद या छंद। ये देवी दुर्गा, शीतला माता और अन्य देवियों की स्तुति, महिमा, शक्ति का वर्णन करता है, जैसे उन्हें घर पर बुलाना या रोकना। इसमें भक्त और देवी के बीच सीधा संवाद यानी बातचीत होता है, जिसमें भक्त अपनी पीड़ा और इच्छाएं बताते हुए माँ को मनाता है। भक्त सीधे मैया भवानी कहकर संबोधित करता है और उनसे बातचीत करता है। ये गीत लोक परंपरा का हिस्सा है जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अन्य राज्यों का भी हिस्सा माना जाता है। ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ऐसे गीतों में, और तालियां भी बजाई जाती हैं, जिनसे इस गीत संगीत में और भाव उत्पन्न होता है और भक्त भाव भजन से भाव विभोर होकर इस संगीत में रम जाया करते हैं।

श्रोताओं, अब मैं पचरा गीत से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर आपसे चर्चा करती हूँ। पचरा गीत मुख्य रूप से नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर देवी दुर्गा की स्तुति और वंदना के लिए गाए जाते हैं, जिनमें भक्त देवी को घर बुलाते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ये गीत अक्सर विवाह समारोहों और लोक अनुष्ठानों में भी गाए जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, जहां इन्हें सामूहिक रूप से गाया जाता है। इस गायन की विशेषताएं होती हैं, ये गीत देवी और भक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, जहां भक्त देवी को घर आने का निमंत्रण देते हैं और उन्हें रोकने की मिन्नतें करते हैं। महिलाएं अक्सर मिलकर इन गीतों को गाती हैं, जिससे एक सामूहिक भक्ति और आनंद का वातावरण बनता है। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जैसी स्थानीय भाषाओं में ये गीत बहुत ही लोकप्रिय है और प्रचलित भी है, जो स्थानीय संस्कृति और आस्था को दर्शाती है। तो आइए हम भी चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

तो दोस्तों, पचरा हो या कीर्तन, भजन हो या नाट, अगर मन सच्चा है तो हर सुर हर शब्द ईश्वर तक पहुंचता है। इसी विश्वास के साथ मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह भक्ति से शुरू होती है। और जब घर में गूंजते हैं भक्ति के स्वर, कभी ध्यान दीजिए, जिस घर में सुबह सुबह कोई भक्ति गीत बज रहा हो, वहां दीवारें भी शांत लगती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता महसूस होता है। भक्ति संगीत सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे घर के माहौल में उतरता है।

ऐसे संगीत जो कि भक्ति से जुड़ाव रखते हैं, घर में सहनशीलता बढ़ाते हैं, आपसी बातचीत में मिठास लाते हैं, गुस्सा अपने आप ही आपको धीमा होता महसूस होगा। भजन सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति इंसानियत से शुरू होती है। बौद्ध धर्म में जिसे चैंटिंग कहते हैं, उसका मतलब है उच्चारण करते रहना। कोई भी मंत्र हो, कोई भी भजन हो, अगर हम उसका लगातार उच्चारण करते हैं या वो हमारे कान में गूंजता है, जिससे हमारे जहन पे एक अलग सा ही प्रभाव होता हमें महसूस होता है। उसके बाद मानसिक तनाव कम हो जाता है, घर का वातावरण स्थिर और शांत हो जाता है, नींद और एकाग्रता बेहतर होती है। जब शिव का नाम चलता है तो घर की हवा में भी ठहराव आ जाता है। कोई भी मंत्र हो, अगर उसका उच्चारण निरंतर होगा तो पॉजिटिविटी तो आनी बनती है।

0: आप नहीं आओगे, पर मुझे विश्वास था आप आए बिना रह नहीं पाओगे।
1: अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलती हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था जहां रोज सुबह टीवी की आवाज तेज होती थी, बहस, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन। एक दिन किसी ने टीवी की जगह हल्का सा भजन चला दिया। कुछ नहीं बदला सिवाय माहौल के, और जब माहौल बदला तो लोग खुद ही बदल गए। चलिए हम भी बदलते हैं अपने स्वभाव को, मन को शांत करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन की बेहतर शुरुआत करते हैं।

शांति ही साधन है एक सुखी जीवन की, और इसीलिए हम ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी मंत्र को सामूहिक तौर पर चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। दोस्तों, भक्ति संगीत घर की दीवारों को नहीं दिलों को सजाता है। अगर घर में रोज कुछ मिनट भी ईश्वर का नाम गूंजे तो समझिए घर खुद एक दुआ बन जाता है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर स्वर सुकून बनकर उतरता है। अब मुझे इजाजत दें और अपने दिन को बेहतर बनाएं, एक ऊर्जावान विचार को जन्म दें और पूरे दिन सकारात्मक रहने का प्रयास करें। राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।

क्या बात है, क्या बात है, तू ही रब तू ही दुआ। एंड भाई कुछ ऐसी दुआएं हैं जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब कभी आपने की होगी, याद होगी ना। चलिए फिलहाल एक दुआ हम लोगों की ज़िंदगी का एक दिन और मिल जाने की, और वो दुआ आज कबूल हो गई और फाइनली एक नया दिन हमारा इंतज़ार कर रहा, और साथ ही इंतज़ार कर रहा आपका आज का थॉट ऑफ द डे, बस इसी म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: तो भाई चलिए, वक्त हो गया फिलहाल आपको बताने का कि आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए आर चंदन क्या लाए हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

कुछ थॉट थोड़ा सा अटपटे लगते हैं, कुछ थॉट ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कुछ में इल्यूजन लगता है, कुछ में लगता है ये बतौर तोहफा है आपके लिए। मतलब कई सारी फीलिंग्स अलग अलग थॉट्स को लेके अलग अलग टाइम पे आपको आती रहती है। एंड फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा ही आज एक थॉट आया है जो सुनने में तो अलग लेकिन जान लेने के बाद इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है कि आप कहने वाले उफ ये पहले क्यों ना मिला। आज का थॉट कहता है कि सिर्फ स्त्री या सिर्फ पुरुष होना घातक है, सिर्फ स्त्री या सिर्फ पुरुष होना घातक है। इंसान में स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का मेल होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ स्त्री और सिर्फ पुरुष होना घातक है। मनुष्य में स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का मेल होना चाहिए। सुनने में शायद एक लेवल का अंदाज़ा आपको हो पा रहा होगा, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करें तो ये कितना गहरा थॉट है। अब मुझे लगे कि मैं मेल हूँ और मैं मेल जाति को समझता हूँ, या किसी को लगे वो फीमेल है और वो फीमेल को समझते हैं। आप फीमेल ही फीमेल हैं, हम मेल ही मेल हैं, और शायद इसीलिए तो फिर मेल हो नहीं पाता आपस में, क्योंकि हम अपने तक तो रहते हैं लेकिन जहाँ पर ऐसा रिश्ता दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पर अगर हम सिर्फ अपने को लेंगे तो क्या चल पाती है चीज़ें? नहीं चल सकती हैं। और इस समाज में आधे आधे हैं, मतलब आधी आबादी हम कैसे छोड़ सकते हैं? अपने घर में ही देख लें, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ फीमेल होना या सिर्फ मेल होना सच में बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आदमी को लगेगा कि वो आदमी है तो उसको लगेगा भाई कि मुझे तो बड़ा ही टाइट रहना है, मुझे तो किसी के सामने झुकना नहीं है, और मुझे तो अपने आंसू किसी को दिखाने नहीं हैं, और मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। जबकि बहुत कुछ अलग भी चीज़ें होती है। ऐसी स्त्री को लगेगा कि भाई मैं पुरुष के पीछे क्यों जाऊँ, है ना, मैं किसी और के लिए क्या करूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद स्त्री करती हैं, लेकिन हम जब देखें तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती है। स्त्री में भी बहुत सारी हिम्मत हो जाती है, स्त्री भी कई बार परिवार चला रही होती है। खैर, इसलिए तो कहा जाता है कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, हालांकि ये अलग की बात है। लेकिन अगर देखें तो सच में हम ये पाएंगे कि अगर हम महसूस करना चाहते हैं इंसान को, तो इंसान दोनों का मेल है। इंसान में ही आता है पुरुष और इंसान में ही आती है स्त्री। तो इसलिए अगर इंसान को समझना है तो दोनों होना पड़ेगा। और हम क्या कहते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन हम दूसरे जेंडर को ही नहीं अपने अंदर समाने देते हैं, यानी पुरुष के अंदर स्त्रीत्व ही नहीं होता है और अक्सर स्त्री के अंदर पुरुषत्व नहीं होता है। तो बड़ा ही प्यारा ये थॉट ऑफ द डे है। मुझे लगता है कि जिस दिन इस बात को समझने लग गए ना, उस दिन से ये जो झगड़े हैं, ये जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, बड़े मसले आ रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और उस बेहतरी से एक दूसरे को समझ पाएंगे कि शायद हमेशा हमेशा मिसाल के लिए कायम कर देंगे। देखिए, कई बार जब आप पुरुष होकर के किसी महिला के साथ होते हैं और जब आप उनके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी कई सारी चीज़ें आप में झलकने लग जाती है और उनकी कई सारी चीज़ों को आप बिन कहे समझने लग जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि शायद कुछ कुछ आप भी कुछ सिचुएशंस में वैसे ही फील करते हैं जैसा सामने वाला करता है, ठीक ऐसा ही स्त्री के साथ होता है। पहले तो जब वो शुरुआत की बात होती है तो स्त्रीत्व ही होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पुरुषत्व भी समझ में आता है कि आखिर पुरुषत्व क्या है, और इस तरह करके फिर चीज़ों को बेहतर कर लेता है इंसान, समझ पाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये घर घर के जो झगड़े हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आती है किसी भी रिश्ते में, ये इसीलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर दोनों नहीं है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ स्त्री और पुरुष के बारे में बात नहीं है, यहाँ तो अगर पुरुष पुरुष बात करें, स्त्री स्त्री बात करें, तो भी वही मसले हैं।
तो आपके अंदर अगर इंसान आप खुद को कहते हैं तो आपके अंदर दोनों ही होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कहें कि नहीं दिन ही दिन चाहिए, रात की तो ज़रूरत ही नहीं, इतना सारा काम है, या रात ही रात हो, सिर्फ आराम ही आराम करे, कुछ भी ना करना पड़े, तो रात भी होना है दिन भी होना है। इसलिए एक इंसान में स्त्री भी होना है पुरुष भी होना है, क्योंकि वो अपने अपने गुण हैं और इसीलिए फिर कोई पीछे या कोई कमतर नहीं होता कि भाई ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है और ये चीज़ नहीं, क्यों पता है दोनों में से एक भी नहीं तो दूसरा खुद ब खुद नहीं। कितनी खूबसूरत बात है जो नेचर ने हमको ऑलरेडी दे दी है, बस शायद हम ही नहीं गौर कर पाते हैं, शायद हम ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज वो वक्त है 21 सितंबर का जब ये थॉट हम सुन करके महसूस कर पा रहे हैं पुरुष होकर के अपने अंदर के स्त्रीत्व को और स्त्री होकर के अपने अंदर के पुरुषत्व को। और आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या का ये सॉल्यूशन है अगर इस चीज़ को हम फील करते हैं और हमारे अंदर आ जाता है। तो ज़रा गौर करिएगा, ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये सच में सोचने के लिए है। और जिस दिन सच में आप सोचने लग जाएंगे उस दिन शायद खुद ब खुद आपको चीज़ें महसूस होने लग जाएगी। और इस बहुत गहरे और बहुत मायने के साथ है इस थॉट को, उसकी खूबसूरती के साथ आप समझेंगे, है ना। वैसे कैसा लगा थॉट आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं चैट पर। चैट आपको मिलती है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन मिलता है आपको रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM आपके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर।

0: सुदेखा, इतना खूबसूरत गाना, आप ज़रा सोचिए कि गाना आपने इतना ज़्यादा एंजॉय किया तो ये थॉट कितना ज़्यादा गहरा रहा होगा। चलिए, अंदाज़ा तो आपका अच्छा है वैसे, तो चलते हैं ना चैट बॉक्स पर आपके मैसेजेस को रीड करने। ऑफकोर्स कई बार हमारे फ्रिक्वेंसी से सुनने वाले और रेडियो गार्डन से सुनने वाले सोचते हैं कि ये मैसेजेस आ कहाँ पर रहे हैं और हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो भाई आप भी जुड़ सकते हैं, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, क्योंकि यहीं आपको मिलता है चैट का ऑप्शन और इसी चैट पर जो कुछ लिखते हैं वो हम तक सीधे पहुंच जाता है। फिलहाल आज क्या कुछ लिखा है और आपने, और आज क्या कुछ पहुंचाने की आपने जहमत उठाई है, चलिए बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो हमारा सबसे पहला जो मैसेज आया है इस शो में वो आशुमिश जी का लखनऊ से आया है और आपने लिखा है, सुप्रभात सर जी। सुप्रभात। खिलखिलाती सुबह, ताजगी से भरा सवेरा, फूलों और बहारों ने आपके लिए रंग बिखेरा है। सुबह कह रही है जग जाओ, आपकी मुस्कुराहट के बिना सब अधूरा है। वाह क्या बात है भाई, ये कहा है आपने तो हम उठ भी गए और उठ करके आ भी गए और देखिए अधूरापन पूरा कर दिया फिलहाल। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। एंड महेंद्र हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर एंड ऑल द लवली लिसनर्स, थैंक यू सो मच। अ न्यू मॉर्निंग ब्रिंग्स न्यू होप्स, न्यू एनर्जी एंड अ फ्रेश रीजन टू स्माइल। मे दिस ब्यूटिफुल डे फिल एवरीवन्स हर्ट विद हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स। लेट्स बिगिन द डे विद द गुड म्यूजिक, पॉजिटिव थॉट्स एंड अ बिग स्माइल। क्या बात, एकदम परफेक्ट आपने शो को पोर्ट्रे कर दिया अपने इस मैसेज में कि एक सुबह की शुरुआत खूबसूरत सी हो सभी के लिए, एक नई उम्मीद हो, एक नया जोश हो और एक ताज़ा स्टार्ट हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ताज़ा सा रीज़न हो स्माइल करने का। वाओ, इट्स वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच महेंद्र फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू सो मच। प्रीति जी लिखती हैं बहराइच से, सुबह का सुप्रभातम सर जी, आपको भी सुबह का सुप्रभातम। एंड सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। साथ में प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, 100% सत्य पर आधारित औसम थॉट, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए एक दूसरे के पूरक होना बुद्धिमानी की पहचान है। मुझे लगता है वैसे भी इंसान होने के लिए ही है, आप किसी के संग हो या ना हो, आपके अंदर अगर दोनों गुण नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। आप तो अकेले ही ऐसे टंग जाने वाले हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आशु जी लिखती हैं कि घर न टूटे उसके लिए एक समझदार स्त्री की ज़रूरत होती है और वो स्त्री न टूटे उसके लिए एक समझदार पुरुष की ज़रूरत होती है। वाह क्या बात है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। हमारी सविता जी लिखती हैं कि हम तो भाई दोनों जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आज के सुविचार बहुत सही बात लगी, थैंक यू सो मच। अनूप मिश्र जी हमारे आ गए हैं और आपने भी लिखा है कि गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है, जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। वाओ क्या बात है। एंड इसके बाद जो है महेंद्र जी अपने ऑफकोर्स विचार प्रकट करते हैं आज के सुविचार पर कि मेरे विचार से स्त्रीत्व केवल स्त्री की पहचान नहीं बल्कि ममता, करुणा, सम्मान, संवेदनशीलता का भाव है। वहीं पुरुषोत्तम होने का अर्थ केवल पुरुष का होना नहीं बल्कि अपने आचरण में मर्यादा, जिम्मेदारी, विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान रखना है। असल खूबसूरती है वो इंसान के पहनावे या शब्दों में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों में होती है। आज का ये सुंदर विचार बहुत अच्छा लगा सर जी, थैंक यू सो मच। बड़े ही खूबसूरती से आपने इस बात को बयां किया है महेंद्र जी, सो इसके लिए पहला शुक्रिया तो आपको बनता है, नहीं मतलब लिटरली बनता है। थैंक यू सो मच टू यू कि आपने इतने आसानी से इन बातों को कह दिया और बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये जो गुण होते हैं दरअसल अगर हम पुरुषों का देखें तो जैसा कि आपने बताया कि भाई इनके आचरण में मर्यादा, जिम्मेदारी, विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान, स्त्रीत्व में देखें तो ममता, करुणा, सम्मान, संवेदनशीलता, और अगर ये बताइए कि इंसान में से इसमें से कुछ भी निकाल लिया जाए तो इंसान कितना खौफनाक हो जाएगा, कितना ख़तरनाक, कि विनम्रता ही नहीं है, सब कुछ है विनम्रता ही नहीं है, सब कुछ है संवेदनशीलता ही नहीं, कुछ भी हो जाता उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना भी प्रॉब्लम में हो, है ना, ममता ही नहीं है कोई, मतलब किसी के लिए इतना प्यार है ही नहीं किसी भी स्त्री में या पुरुष में, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, दूसरों के प्रति सम्मान ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, तो एक भी चीज़ अगर निकाल ली जाती है तो कितना खौफनाक हो जाता है। इसीलिए आज के थॉट ने कहा था कि दोनों होना एक इंसान में ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ना कि पुरुष हैं ना कि स्त्री हैं, है ना, क्योंकि दोनों गुण होकर ही हम इंसान हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है फिर इंसान की परिभाषा को परिभाषित करना। सो चलिए, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं आप लोग और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह इतनी खूबसूरती से अपनी बातों को आप लोग कह देते हैं। सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आता है कि यार सच में मैं कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि आप जिस चीज़ को सोच रहे हो सामने से उस चीज़ को बताया जाए, एक अलग अंदाज में उसी बात को कहा जाए, एक डिटेल्ड वे में,
और वो चीज़ आप हमेशा करते हैं, सो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है आपकी ये अदा। तो चलिए भाई, फ़िलहाल बहुत सारी बातें हैं जो आपसे हमें करना है, और साथ ही साथ इन बातों के बीच में हम बता दें कई सारी बातें ऐसी भी है जो आपके काम की होने वाली, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन अगर मैं अगली बात कहूं तो भाई अगला जो ऑफ कोर्स बातचीत मेरी आपसे होने वाली है वो होने वाली है सिटी अपडेट्स के रिगार्डिंग। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पसंद है आपकी सिटी अपडेट, तो चलिए हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए सिटी अपडेट्स। तो यस, क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपको सिटी अपडेट्स बताने के लिए इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर। शुरुआत हो गई है और वो भी बड़े ही खूबसूरत से अंदाज में।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सो दिल का क्या करे, चलिए हम बता दें। फिलहाल दिल को लगा देते हैं गोंडा की अपडेट सुनने के लिए। तो मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन आइडिया होगा। वैसे क्या ख्याल है आपका? मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो मजाक की बात नहीं है क्या? मतलब सच में अगर दिल को गोंडा अपडेट्स में लगा दिया जाए तो सही रहेगा? अच्छा, ओके, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, मतलब ये आप वैसे भी बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, दिल नहीं लग रहा है तो मन ही लगा लेते हैं गोंडा अपडेट्स की तरफ, क्योंकि वक्त हो गया है आपको आपकी सिटी की अपडेट्स आप तक पहुंचाने का।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, क्या बात है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं कहाँ, गुंडा अपडेट्स की तरफ और की तरफ। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि भाई आज गुंडा अपडेट्स में आपके लिए क्या क्या है जो आपके लिए हम ले आए हैं। सो यस, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जो हो रही है वो थानेपुर में 13 घंटे गुल रही बिजली की अपडेट्स को लेकर के हो रही है। सो कल सैटरडे नाइट 11:30 बजे जो है थानेपुर उपकेंद्र की बिजली गुल हो गई और पूरा कस्बा और ग्रामीण इलाका जो है वो अंधेरे में डूब गया। सो रात भर बिजली नहीं आई, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे और सुबह की बात है, घरों में पानी की मोटरें भी फिलहाल नहीं चल सकी। और 13 घंटे बाद यानी कल संडे के दिन दोपहर 1 बजे जो है वो आपूर्ति बहाल हुई है, जिसके बाद लोगों को

थोड़ी सी राहत मिली। इसके अलावा बता दें कि भाई बाढ़ पीड़ित किसानों का प्रदर्शन को लेकर के अगली अपडेट आ रही है। सो सरयू नदी का पानी घटने के साथ ही माझा का जो एरिया है वहाँ कटान तेज़ हो गई है। माझा राठ में 3 हफ्ते से नदी की जो तेज़ धारा है वो खेतों को काट रही है। इससे दर्जनों भीगे फसल जो है वो नदी में समा चुके हैं। किसान जो है वो नाव से खेतों तक पहुँच कर अपनी फसल काट कर सेफ जगहों पर पहुँचा रहे हैं। और कल ग्रामीणों ने राहत सामग्री और नाव न मिलने पर गुस्सा जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। इसके अलावा आपको बता दें अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है 54 शिक्षक कर्मी जो है स्कूल्स से अनुपस्थित यानी अब्सेंट पाए गए हैं। सो बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 21 अगस्त से 17 सितंबर तक निरीक्षण में 54 शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रधानाध्यापक और बाकी कर्मचारी जो है वो अब्सेंट पाए गए। सो प्रेरणा पोर्टल के निरीक्षण मॉड्यूल से प्राप्त रिपोर्ट के हिसाब से BSA ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करके 3 दिन में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण मांगा गया है। एंड अब इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट किधर से आ रही है। सो आपको बता दें कि फ़िलहाल अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जन आरोग्य मेले को लेकर के। जी हाँ, सो ज़िले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कल यानी रविवार को जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। परसपुर क्षेत्र के 4 PHC में से 3 में RBSK के डॉक्टरों ने मरीजों का ट्रीटमेंट किया। सो सिर्फ भौरीगंज CHC में MBBS डॉक्टर ने मरीज देखे। कई सारे केंद्रों पर बदलते मौसम की वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा पहुंच रहे थे। इसके अलावा चलते हैं आपको लेकर के अगली अपडेट की तरफ। यस, और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आपको बता दें कुछ इवेंट्स को लेकर आ रही है। आज सुबह 7 बजे से आवास विकास कॉलोनी में प्रेरणा पार्क में योग प्रशिक्षण का शिविर लगाया गया था। इसके अलावा नगर पालिका परिषद गोंडा के सभागार में EO संत राम जो है शहरवासियों की समस्याओं की सुनवाई भी सुबह 10 बजे से आज करने वाले हैं। इसके अलावा सेवा संकल्प अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र महनोन के कलाकार नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं। ये सुबह 11 बजे किया जाएगा आज ही। एंड इसके अलावा शाम 5 बजे गांधी पार्क में ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़रिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सो ये जो है ज़बरदस्त तरीका है। एंड दूसरा जो अपडेट, अगली अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है ITI में एडमिशन के 3rd फेज़ का जो परिणाम जारी हुआ है उसको लेकर के। सो राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेशन 2026-27 के एडमिशन के लिए 3rd फेज़ का जो है वो परिणाम जारी कर दिया गया है। चुने हुए कैंडिडेट्स के एडमिशन की प्रक्रिया 21 से 25 सितंबर तक चलेगी। सो कैंडिडेट्स अपना जो है रिजल्ट राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करके देख सकते हैं। सो नोडल ITI गोंडा के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने बताया कि जो चुने गए कैंडिडेट्स हैं बुलावा पत्र का प्रिंट, सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी एक एक प्रमाणित प्रति, साइज़ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ से लेकर के संबंधित ITI जो है वो निर्धारित तिथि के बाद पहुँचे और संस्थान की चयन सूची से सत्यापन के बाद जो है वो एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा चयन की सूचना जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए भी भेजी जा रही है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी रैंक दिखाई जाएगी और उन्हें जो है वो एडमिशन के अगले फेज़ के लिए इंतज़ार करना होगा। सो कैंडिडेट्स जो हैं वो www.scvtup.in पर जा कर के रिजल्ट्स देख सकते हैं। यानी अगर आपने ITI का ऑफकोर्स एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप भी जा कर के देख सकते हैं www.scvtup.in पर। यहाँ पे आपको परिणाम जो है वो दिख जाएंगे। इसके बाद अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आपको बता दें कि भाई 5 साल में ही सड़क उखड़ने को लेकर के आ रही है जो कि करोड़ों की लागत से बनी थी। सो हर साल बरसात में सड़कों के टूटने का सिलसिला और निर्माण की जो गुणवत्ता है उसकी जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है। सो आर्यनगर से महाराजगंज तक बनी जो प्रमुख सड़कें हैं 5 साल के अंदर ही जगह जगह ख़राब हो गई हैं। कई जगहों पर सड़क फट चुकी है और
एक दर्जन से ज़्यादा जगह पर बड़े गड्ढे हो गए हैं। सो विभाग ने हाल ही में पैचिंग कराई, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क फिर से उखड़ने लगी है। सो लोक निर्माण विभाग खंड 2 ने साल 2020 में आर्यनगर से गोकर्ण नाथ शिवाला तक करीब 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण स्वीकृत किया था। साल 2021 में गोकर्ण नाथ शिवाला से पृथ्वीनाथ मंदिर झाली धाम होते हुए विशुनापुर बाजार तक करीब 14 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई और करीब 22 किलोमीटर लंबी इन दोनों सड़कों की लागत जो है वो 58 करोड़ रुपए आई। निर्माण का जिम्मे जो है वो निर्भय कंस्ट्रक्शन को मिला था। तो ये एक अपडेट है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। जी हाँ, और अगली जो अपडेट आ रही है दरअसल वो मुशायरों को लेकर आ रही है, नातिया तरही मुशायरा। सो साहित्यिक संस्था बज़्म शाम गज़ल की तरफ से बालूगंज में सालाना नातिया तरही मुशायरे का जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें शायरों ने जो है पैगंबर इस्लाम की शान में नातिया कलाम भी पेश किया, और ये जो है इसमें अध्यक्षता मुख्तार फारूकी देवा जो कि देवा से आए थे और मुईब रहबर लखनवी ने साझा रूप से किया था। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है, यस, अपनी रचनाओं से समाज की आवाज़ उठाने की बात कही गई है। सो राष्ट्र साधना के शताब्दी वर्ष के मौके पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत की गोंडा यूनिट की तरफ से कल एक स्कूल में काव्य गोष्ठी भी आयोजित की गई, और कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो हरिराम शुक्ल ने प्रजागर की तरफ से किया स्टार्ट, और वरिष्ठ कवि साहित्य भूषण से सम्मानित शिवाकांत मिश्र विद्रोही ने अपनी रचना से कहीं ना कहीं लोगों को प्रस्तुत करके भाव विभोर कर दिया, और इस तरह कई सारी कवियों की मौजूदगी वहां पर देखी गई। सो भाई चलिए, आई होप कि ये अपडेट्स आप तक पहुँच गई है और साथ ही साथ ये अपडेट आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होगी ऐसा हमें भी लगता है। सो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी जो कि हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि ये अपडेट्स आप बाकी उन लोगों तक भी पहुंचाने वाले, स्पेशली आईटीआई की जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने बताई गई वेबसाइट पर जा कर के अपना परिणाम देख सकते हैं ताकि वो किसी भी मौके से चूक ना जाए, है ना। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है, और अब चलते हैं अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि अगला म्यूज़िकल ब्रेक वापस से आ रहा है आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और कहीं ना कहीं इस बात का भी ऑफ़ कोर्स खुशी होती है कि कई तरह की चीज़ें जो हैं वो हम आप तक ला पाते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं, और वो चीज़ें बखूबी आप तक पहुंच भी जाती है, सबसे अच्छी बात ये है। सो फिलहाल वक्त है अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलने का, बट आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
4: भाई, एआई के बारे में तो आजकल हम लोग रोज चर्चाएं करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। एआई से क्या फायदा हो रहा है, एआई किस तरह काम कर रहा है, और साथ ही कुछ नुकसान भी बता देते हैं कि भाई एआई पे कितना हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में फिलहाल एक ऐसी खबर आई है जिसने फिलहाल एआई को लेकर एक बार वापस से चर्चा में ला दिया है। जी हाँ, दरअसल इस एआई की वजह से जो गलती से एक बुज़ुर्ग बिहार पहुंच गए थे, उनको एआई की ही मदद से लुधियाना पहुंचाया गया। जी हाँ, सो क्या है पूरी बात, आखिर कौन है ये बुज़ुर्ग और कैसे और किसने आखिर एआई की मदद से इनको लुधियाना पहुंचाया? ये सवाल जाहिर है आपके जहन में भी होगा और मेरे जहन में भी है। तो चलिए, जब आपके जहन में भी है और मेरे जहन में भी है, तो क्यों ना इस जहन के डाउट को क्लियर कर लिया जाए और पूरी बात बता दिया जाए। यस, लेट्स गो।
5: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

दरअसल आपको बता दें कि पंजाब की जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसमें गोल्डन टेंपल माथा टेकने गए लुधियाना के जो बुजुर्ग थे वो साथियों से बिछड़ गए और ये गलती से ट्रेन में बैठकर बिहार पहुंच गए। अब वहां एक शख्स ने इन्हें भटकते हुए देखा। उन्होंने बुजुर्ग से बात की लेकिन उन्हें सिर्फ अपने गाँव का ही नाम याद था। सो उस शख्स ने उन्हें 4 दिन अपने घर पर रखा और AI की मदद ली। सो कोशिश कामयाब रही और कल यानी सैटरडे को वो बुज़ुर्ग को लुधियाना में मौजूद उनके घर पहुंचाने में सफल रहे। सो ये देखकर बुज़ुर्ग का जो पोता था वो इस कदर इमोशनल हुआ कि बिहार के जो युवक था उसके पैरों में गिर पड़ा। इसके बाद अपने दादा को भी गले लगा कर पोता खूब रोया। ठीक नहीं है चमनलाल की मानसिक स्थिति, इसीलिए फतेहगढ़ गुजराम के रहने वाले जो बुज़ुर्ग हैं चमनलाल, बीते 11 सितंबर को CM तीर्थ यात्रा वाली बस में सवार होकर अमृतसर में गोल्डन टेंपल गए थे। इसी दौरान चमनलाल जो है अपने साथियों से बिछड़ गए थे। अब चूंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए और गलती से बिहार जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। सो रेलवे स्टेशन पहुँच गए और इस दौरान जो है वो बुज़ुर्ग का जो पोता है सुखचैन सिंह, वो दादा को खोजते अमृतसर पहुंचा। वहीं रेलवे स्टेशन पर चमनलाल अकेले इधर उधर भटक रहे थे और खाने के लिए मांग रहे थे। सो स्थानीय जो निवासी हैं नीरज ने उन्हें खाना खिलाया और अपने घर ले गए। सो बुज़ुर्ग को सिर्फ ने गांव का नाम फतेहगढ़ गुजरा ही याद था। इसके बाद नीरज ने गूगल मैप और ChatGPT से पता चला कि ये गाँव लुधियाना ज़िले के माछीवाड़ा साहिब के पास है। इसके बाद नीरज बुज़ुर्ग को लेकर उनके गांव माछीवाड़ा पहुंच गए थे। सो इस तरह से कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने बताया कि भाई देखिए AI ने किस तरह का ऑफ कोर्स कारनामा कर दिखाया और बिछड़े हुए दादा को पोते से मिलाया उस शख्स ने जो बिहार में इन बुज़ुर्ग को मिला था। और जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए इन्होंने AI की भी हेल्प ली थी। 4 दिन अपने घर पर रखा और उसके बाद इनको लगा कि भाई AI वो जुगाड़ हो सकता है जिसके ज़रिए उनके घर तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि बुज़ुर्ग को सिर्फ अपने गांव का नाम याद था और इंडिया बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई क्यों ना AI से ही पूछा जाए कि ये स्पेसिफिक गांव यहाँ है। और हो सकता हो भाई कि थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट देख करके पंजाब भी प्रॉम्प्ट में दिया होगा नीरज ने, तो शायद स्पेसिफिक सर्च कर पाया होगा AI पंजाब में। बट कहीं ना कहीं कई बार काफ़ी बड़ी हेल्प भी हो जाती है इसी AI से। फिलहाल ये खबर जो कि रियल लाइफ वाली है, आपको जानने के बाद कैसी लग रही है हमको कमेंट करके फटाफट से बताइए और हमें आपके बताए जाने का इंतज़ार बेसब्री से है।

0: सो फिलहाल बहुत तरह के हम लोग ने विरोध देखे हैं, मजम्मतें देखी हैं, लेकिन एक ऐसा विरोध जो किसान कर रहे हैं मध्य प्रदेश में चिता पर लेटकर, जी हाँ, और ये जो प्रदर्शन है वो दरअसल किसी और लिए नहीं बल्कि जल सत्याग्रह है। आइए, क्या है ये और कैसा सत्याग्रह है आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

फिलहाल मध्य प्रदेश के पन्ना में केन, बेतवा, मझगवां और रूंझ नदी जो है अंतर संबंध परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापितों ने कल यानी संडे को मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर के चिता प्रदर्शन किया। जी हाँ, सो अजयगढ़ तहसील क्षेत्र में जो प्रभावित आदिवासी और किसानों ने पानी में जो खड़े होकर के जल सत्याग्रह और प्रतीकात्मक रूप से चिता पर लेट करके विरोध जताया। फिलहाल बता दें कि केन, बेतवा लिंक परियोजना, मझगाएं डैम और रूंझ बांध के प्रभावित किसान और आदिवासी अब एक मंच पर आ गए। सो जय किसान संगठन के बैनर तले चल रहे आंदोलन में ग्रामीणों ने पन्ना जिला प्रशासन पर असंवेदनशीलता और तानाशाही के साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल घर बन गए हैं टापू। जी हाँ, सो बांधों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों के घर डूब गए और कुछ इलाके टापू बन गए हैं। सो मुआवजे में भी अनियमितता बताई गई है। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें बताया कि उन्हें पूरा मुआवजा पुनर्वास का फायदा नहीं मिला है, जबकि प्रशासन 1889 परिवारों को भुगतान करने का दावा कर रहा है, लेकिन ऐसा हकीकत जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। सो फिलहाल ये प्रदर्शन जो है ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है वहाँ के आदिवासी और वहाँ के किसानों के ज़रिए। फिलहाल आपसे तो हमने पूछा था कि भाई एआई के बारे में बताइए, तो हमारे महेंद्र जी ने कहा है कि बिल्कुल सही कहा नासर जी, ये घटना बताती है कि एआई का सही दिशा में और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई का गलत इस्तेमाल नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम एआई को समझदारी, जिम्मेदारी और अच्छे उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करें। इस घटना में एआई ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ इंसानियत का खूबसूरत मेल देखने को मिला। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे साथ में हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में गीता जी। एंड अरीबा शेख भी आ गई हैं और आपने भी लिखा हेलो गुड मॉर्निंग अदनान सर, हाय अरीबा आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही प्रीति जी ने बोला है बहराइच से कि उस बिहारी युवक को सल्यूट है जिसने एक बुज़ुर्ग की मदद की। हाँ बेशक नीरज का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन बुज़ुर्ग को उनके घर तक पहुँचाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई कितनी ज़रूरी और कितनी बड़ी बात है। सो फिलहाल मुझे लगता है कि बात बिल्कुल सही मोड़ पर आके पहुँची है कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हम पर बहुत हद तक जो है वो डिपेंडेंट होता है कि भाई हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं। सो यस ऑफ कोर्स, अब आप भी बताइए कि भाई आपने कितना खुद को अपनी चीज़ों को लेकर के मैनेज किया है, क्योंकि कई बार हम खुद ही बहुत समझदारी दिखाते हुए भी और होते हुए भी हम कई बार खुद को आज़ाद नहीं कर पाते अपनी कुछ आदतों के साथ में। सो अगर ऐसा कुछ रहा है आपके साथ भी तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल चल रहे हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि आखिर क्या कुछ है और क्या कुछ चल रहा है आपके मॉर्निंग शो में।

0: बेटा छुटकी।
1: जी मैडम।
0: एक बात पूछे।
1: हाँ मैडम।
0: ये बताओ कि भगवान ने तुम्हें आँखें किस लिए दी हैं? पता है तुम्हें?
1: जी देखने के लिए।
0: अरे वाह छुटकी, तुम्हें तो सब पता है। अब ये बताओ कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कान किस लिए दिए हैं?
1: जी मुर्गी बनने के लिए।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: वो जय

0: चेहरा किराए पर दे करके 14 लाख कमा रहे हैं लोग। अरे ये कोई सपने में देखी बात नहीं है, ये हकीकत है। अब आप सोचेंगे चेहरा दे करके किराए पर और 14 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब ये कुछ बात हजम नहीं होने वाली है। लेकिन चलिए हम बताते हैं तो शायद उसके बाद हमको भी हजम हो जाए और आपको भी। डाइजेशन अच्छा वैसे अपना।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

जी हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ये कि भाई किराए पर चेहरा दे करके और 14 लाख रुपए कमा रहे हैं, और कोई एक दिनों कई सारे लोग ऐसे हैं। अब माजरा क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल माजरा ये कि चीन में जो है लोग AI कंटेंट के लिए अपना चेहरा किराए पर दे करके पैसे कमा रहे हैं, और इनका चेहरा जो है वो सीरियल, एडवर्टाइजमेंट और गेम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। सो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर चेहरे के इस्तेमाल के बदले 14 लाख रुपए तक की फीस भी इवन दी जा रही है। सो 3 दिन में 7 बार इस्तेमाल हुआ है चेहरा। एक बैंक कर्मचारी का चेहरा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने 3 दिन में 7 बार इस्तेमाल किया है, इसके बदले उसे करीब 36,000 मिले। एक शख्स रोमांस और फैमिली कंटेंट के लिए अपना चेहरा देने के लिए 1400 रुपये लेता है। सो चीन में एक प्लेटफॉर्म पर 370 डिजिटल एक्टर्स की प्रोफाइल है, और यहाँ फिल्म मॉडलिंग, एनिमेशन और गेम्स के लिए चेहरे जो है वो चुने जाते हैं। अब बात आती है कि चेहरा कहाँ इस्तेमाल होगा, ये भी तो तय करते हैं ना। सो लोग ये तय करते हैं, यानी वो कर सकते हैं खुद से, कि उनका चेहरा कितने वक्त तक और किस तरह के कॉन्टेंट में इस्तेमाल होगा। कोई इंसान हॉरर या कोई भी अपना चेहरा देने से मना कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को अच्छी ना लगे तो उससे मना कर सकता है। सो चेहरे को कंटेंट में इस्तेमाल करने की मंजूरी अलग है, जबकि AI की ट्रेनिंग के लिए उसका इस्तेमाल करने की मंजूरी अलग होती है। सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वक्त से पहले लाइसेंस वापस लेने पर तकरीबन 7.2 लाख का जुर्माना भी है, 7,20,000 रुपये का जुर्माना भी है। सो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि शायद ये बात आपके लिए भी नहीं होगी कि भाई कोई चेहरा किराए पर दे करके लाखों कैसे कमा रहा है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरह से AI में इस्तेमाल हो रहे हैं ये चेहरे, वो भी आपकी परमिशन के साथ, आपकी मतलब चीन के लोगों की बता रहे हैं, और वो ख़ुद तय कर रहे हैं कि किस टाइप की कंटेंट में और कितनी देर तक उनका चेहरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि AI ट्रेनिंग के लिए अलग से परमिशन दी जाती है और कंटेंट क्रिएशन के लिए अलग से परमिशन दी जाती है। एंड आई होप कि ये जानकारी भी आपके लिए काफ़ी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे बस जुगाड़ कर ले चीन जाने तक कितना ही पैसा लगेगा, 1,50,000, 14 लाख कमा के वापस भी तो आ जाएंगे, है ना, है ना। सारा दिमाग अकेले लगा लिया क्या? ऑलराइट, सो कैसी लगी ये अजब गजब कहानी, ज़रा हमको कमेंट करके बताइए। आपने मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

इतनी सारी बातें हो रही है, इसी बातों के बीच मुझे याद आया कि कुछ ऐसा गाना क्यों ना सुना दिया जाए आपको कि आपको एक पूरा का पूरा दौर याद आ जाए और आप कहें कि वाह क्या बात है भाई, मज़ा आ गया इतने वक्त बाद इस सॉन्ग को सुनने के बाद। तो चलिए भाई, अभिजीत सावंत साहब की आवाज़ की तरफ ले चलते हैं आपको और रूबरू कराते हैं उनकी आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सो फिलहाल नगेश्वर आ गए हैं चैट बॉक्स पर और इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। और अरीबा ने बताया हम न्यू है सर, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है आर के श्रीवास्तव गोंडा यूपी आवरी, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड महेंद्र लिखते हैं और यहाँ तो फ्रॉड वाले चेहरा यूज़ करके हमसे ही ले लेते हैं पैसे, या भाई उल्टा इंडिया में सिस्टम जबकि चाइना में आपको 14 लाख रुपए तक मिल रहे हैं एआई ट्रेनिंग के लिए। फिलहाल नगेश्वर ने लिखा हैप्पी राष्ट्रीय चाय दिवस की शुभकामनाएं, ऑफकोर्स आज नेशनल टी डे है। मतलब क्या है, चाय पीना है? नहीं, चाय पीना नहीं मतलब है, चाय की जो इम्पोर्टेंस है, चाय का जो कल्चर इंडिया से ग्लोबली फैला है उसको डेडिकेट करता है आज का ये राष्ट्रीय चाय दिवस। और चाय शाय हो जाए यार आज के दिन तो, स्पेशली कोई चाय कहीं जा करके पीजिएगा, या अगर मौका मिले तो सबसे बेहतर है कि बना करके पीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आ जाएगा। नगेश्वर ने लिखा आने वाले 2050 में कंप्यूटर की जगह एआई ले लेगा, ऑफिस में वर्क्स की जगह रोबोट काम करेंगे, उड़ने वाली कारें आ जाएगी, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक की लाइन लगेगी, कैंसर और एड्स जैसी घातक बीमारियों से मृत्यु दर में कमी आएगी, शादियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और रिश्ते नाम मात्र के रह जाएंगे। इतना सब कुछ देखने को मिला 2050 में, और अच्छी बात है कि 2050 तक मुझे नहीं लगता है कि मैं रहूंगा चलिए, लेकिन बात तो आपने अपने जो सेंस से कही है वो अपने अकॉर्डिंग तो आपने ठीक कही है। एंड यस, फिलहाल आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताने वाले हैं जो महाविनाशकारी तूफानों की 24 घंटे पहले भविष्यवाणी बता दिया जाया करेगा। सो ये ख़ास खोज हुई है और इससे बड़ा फ़ायदा होने की बात सामने आ रही है कि भाई जो विनाशकारी इस तरह से तूफान आ जाते हैं जिसमें जान माल का नुकसान अच्छा खासा हो जाता है, 24 घंटे पहले अगर अलर्ट मिल जाएगा तो काफ़ी सारी जाने और काफ़ी कुछ बचाया जा सकेगा। सो क्या है पूरी बात, ये तो हम आपको आकर ही बताने वाले हैं, लेकिन आपको ये जानकारी जानने के बाद कैसा लगने वाला है आप ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो हम बताने वाले थे कि भैया महाविनाशकारी तूफान अगर आने वाला है तो 24 घंटे पहले अब भविष्यवाणी हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं जान माल के नुकसान को लेकर के जो एक डर बना रहता था उसको लेकर के माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। सो फिलहाल हमने तो कर्मकांड ही ऐसे किया हम इंसानों ने कि फिलहाल अब महाविनाशकारी तूफान तो आने लाजिम है, तो भैया बचा कैसे जाए ये ज़रूर देखा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी पूरी डिटेल्ड।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई अब वैज्ञानिक जो है वो तूफानों के अचानक महाविनाशकारी बनने की सटीक भविष्यवाणी 24 घंटे पहले कर सकेंगे। सो जिससे होगा क्या, जो तटीय इलाके हैं इसमें हज़ारों लोगों की जान चली जाती है जब भी ऐसा कोई तूफान आता है, तो ये जान माल को बचाया जा सकेगा। सो हरिकेन हंटर्स का जो डेटा एनालिसिस हुआ उससे पता चला है कि किसी भी चक्रवात के मजबूत होने से 24 घंटे पहले उसके वर्टिकल अलाइनमेंट में 4 मेन शुरुआती संकेत दिखाई देते हैं। ये संकेत एक मजबूत निचला परिसंचरण, विंड शियर के सापेक्ष अनुकूल झुकाव और तेज़ ऊर्ध्वगामी हवाएं और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। सो अब चक्रवात के अंदर पहुँच करके हंटर्स की टीम तापमान, हवा की रफ्तार, वायुमंडलीय दबाव और नमी का बेहद सटीक एनालिसिस करेगी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी और NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों के जरिए रिसर्च जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च एटमॉस्फेयर में जो है ये पब्लिश हुई है। और इसमें हरिकेन हंटर्स 28 साल यानी 1997 से 2024 में जुटाए गए 1500 से ज़्यादा रडार डेटा का जो एनालिसिस है वो किया गया। सो मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से तूफान के निचले लेवल यानी समुद्र के पास और मध्य स्तर यानी आसमान के ऊपर और इसके चक्रवात केंद्र जब एक सीध में होते हैं तो ये विनाशकारी होता है, और वहीं जब तेज़ हवाएं तूफान को एक तरफ झुकाती हैं तो ये कमज़ोर होने लगता है। सो किन वजहों से ख़ास मानी जा रही है ये खोज, ये भी आपको बता देते हैं। सो पहले तूफान कहाँ आएगा यानी कब कहाँ जाएगा और कब टकराएगा ये पता होता था, अब तूफान अचानक कितना भयानक रूप ले लेगा ये भी पता चल पाएगा। सो वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि तूफान आ रहा है, लेकिन ये सटीक नहीं बता पाते थे कि अगले कुछ घंटों में वो साधारण से अचानक सुपर चक्रवात बनेगा या नहीं, बट अब फिलहाल ये जान पाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खोज मानी जा रही है महाविनाशकारी जो तूफान आते हैं उनसे बचने को लेकर के। इसके अलावा एक ज़रूरी बात है जो कि मुझे लगता है आप तक पहुंचानी चाहिए, वो है अब कफ सिरप की बॉटल्स पर मिलेगी लाल रंग की चेतावनी, क्योंकि बहुत वक्त से आपने कफ सिरप के कई सारे ऐसे मामले इवन गोंडा में पकड़े गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इतनी ख़राब कफ सिरप दी जा रही थी जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसका भांडा फोड़ भी किया गया था और ऐसे कई सारे मामले कई जगह पकड़े गए हैं यानी नकली कफ सिरप के मामले जो हैं। फिलहाल क्या होगी लाल रंग की चेतावनी ये भी हम आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और फिलहाल आइए चलते हैं इस सुपर्ब से गाने की तरफ। वापस से आएंगे और आने के बाद बताने वाले हैं कफ सिरप के बारे में।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: सो देश में बच्चों की सेहत और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अहम कदम उठाया है। यानी इसके तहत अब कफ सिरप की जो बॉटल्स हैं उस पर लाल रंग में ये बहुत क्लियरली चेतावनी लिखी होगी कि ये दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। सो केंद्रीय दवा नियामक ने इसके लिए लेबलिंग नियमों में बदलाव के प्रस्ताव तैयार किया है। कफ सिरप की हर बॉटल पर 65% हिस्से में लाल रंग से ये चेतावनी साफ साफ शब्दों में लिखी जाएगी। इसके अलावा ये भी प्रस्ताव है कि सिरप के लेबल पर स्कूल जाने की उम्र के बच्चों की एक तस्वीर भी लगाई जाए। सो फिलहाल इसलिए है कि भाई उससे छोटे से बच्चों को अगर दिया जाता है तो कई बार ये बहुत नुकसानदेह साबित होता है और हमको ये इस बात का पता ही नहीं होता है कि कितना डोज कितने एज के बच्चों को कब देना चाहिए। से मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस वजह से इस पर डिसीजन लिया जाना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी है। एंड आई होप कि भाई ये चीज़ें वर्क करें और कहीं ना कहीं आगे चले और इसको जो इम्प्लीमेंट करने का सोचा है इसके फ़ायदे भी हमको साफ साफ नज़र आए। वैसे आपका क्या मानना है आप बता सकते हैं, ऑफकोर्स कॉमेंट करके, और कैसे। सो इसी के साथ में नगेश्वर ने कहा, सर जी ऐसा क्या बोलते हैं, हम 2007 तक रहे हैं, मतलब 70 तक फिलहाल मुझे लगता नहीं है अपना, और बहुत ज़्यादा रहने की ख्वाहिश है भी नहीं दरअसल। और दूसरा हमारे धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास से लिखते हैं, अदनान से गुड मॉर्निंग टू यू। एक लव हर्ट घूमते घूमते दो वाले भेजे हैं, एक पेयर में एक फ्लावर भेजा है, साथ में आपने विश किया है, हाय बोला है, क्या बात है, इतनी सारी चीज़ें आपने भेज दी। और नगेश्वर कहते हैं, कैसे पता चलेगा विनाशकारी आपदा आने वाली है, पत्नी रूप तूफान आता है तो फ़ोन करके आता है, इसी प्रकार भूकंप आएगा तो बताएगा ना। अच्छा, वैसे ये जो शादीशुदा नहीं होते ये पत्नियों का मजाक बड़ा उड़ाते हैं। अब फॉर एग्जांपल नगेश्वर को ही देख लिया, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी सारी कथाएं इनकी बदल जाएगी, उसके बाद तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ने वाली। और वैसे भी कई बहुत प्यारे प्यारे पेयर होते हैं जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग एक दूसरे का रखते हैं फैमिली में। तो चलिए फिलहाल आज का शो कैसा लगा हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आरजे अदनान को दीजिए अब इजाज़त अपने इस प्रोग्राम से जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। सो फिलहाल सुनते रहिए अपने बाकी शोज रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। और कैसा लगा शो बता सकते हैं कमेंट करके।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 981 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। हर बार की तरह गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सब मिलकर ला रहे हैं, जिसमें मधुर मधुर गीतों की जो माला है वो पिरोई गई है श्रीमती किरण पांडे की आवाज में। और आप सभी जानते हैं कि जब हम बहराइच चल रहे हैं और अवधि ना बोले तो भाई ये नहीं हो सकता है।
1: का बताई बहनी, बहुत दिन हुई गवा। गवा जब जावा करो ना, तब लस्तगा लाग रहा था यार बार जाए के। अब घर में बैठ जाओ, तब बुताई जाओ।
0: तो सुना आप सभी ने, आइए हम सब मिलकर चलते हैं आज बहराइच। अरे बाप रे, ये देखो श्वेता, कितनी जोर की बारिश होने वाली है।
2: अरे जरा बादल तो देखो, कितने काले काले से घिर आए हैं। बारिश तो अब होके ही रहेगी।
1: क्या बात है, क्यों तुम लोग शोर मचाई पड़ी हो? तब से सुन रही हूँ। चलो चलो, गांव भी चलना है। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और जिम्मी कहाँ है?
3: हाँ किरण दी, मैं तो नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, बस चाय ही पीनी है।
0: जिम्मी कितना पाउडर लगा ली हो तुम? इतनी गोरी हो तुम, तब भी इतना पाउडर लगा ली हो?

0: किरण दी, हम लोग कहाँ चलेंगे? कौन से गांव? और ड्राइवर भैया बाहर आ गए हैं गाड़ी लेके, खड़े हैं और हॉर्न जोर जोर से बजा रहे हैं।
1: चलो सब लोग निकलो।
2: जिम्मी, चाय हम लोग वहीं प्रयागपुर चलकर ही पियेंगे। और श्वेता, हम लोग चल रहे हैं प्रयागपुर दीनू काका के गांव।
3: तब तो किरण दीदी गाना बनता है कोई, उठान गीत ही सुनवा दीजिए ना।
2: अच्छा अच्छा ठीक है भाई।

0: अरे रुको रुको, यही घर है दीनू काका का। और वो देखो जमुना काकी।
1: काका राम राम, काकी राम राम।
2: कैसी हो जमुना काकी? दीनू काका मजे में है? हाँ हाँ, मजे महन, सभे मजे महन। आओ आओ बहनी, तोहरे सब मजे महाओ। आज यहाँ कैसे बिटिया लोग?
3: काकी आयन है तुसे ओ काका से भेटाए।
2: अरे तुहार काका हमार कोनो बात नहीं सुनत है, यको कहा नहीं मानत है। हम कहें कि हमका एक ठो जेवर बनवाए दो, तब कहें कि जेवर का करी हो।

0: काकी गुस्सा ना हुआ करो काका से, काका आपसे बहुत प्यार करते हैं।
1: अरे बहनी हमार करम वे फूट है दादा, का करी।
2: हे काकी कुछ ना करो, तहारी दशा देख के हमें तो एक गाना याद आवत है, करम हमार फूटा सुनो मोरी अम्मा।

0: काकी, सबको प्यार से रहना चाहिए और इतना गुस्सा ना करो। देखो काका सबके लिए चाय बना कर लाए हैं और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी लाए हैं।
1: लगता है भाभी बना रही है। अरे आओ अंदर तो आओ, देखो गांव में कितनी साफ सफाई है, मक्खी मच्छर कुछ दिखाई नहीं दे रहे।
2: बारिश के मौसम में साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। अरे साफ सफाई तो हमेशा रखनी चाहिए, पर बारिश में कुछ ज्यादा ही सफाई करनी चाहिए। इसी मौसम में फंगस वगैरह ज्यादा पड़ती है और इन्फेक्शन तो तुरंत होता है।
1: अरे काका तो काकी को मनाने में ही लगे हैं, वो देखो।
3: गढ़ाई देव दुई झुलनी, गढ़ाई देव दुई झुलनी, हो धना काहे

0: देखो साफ सफाई तो सभी को रखना चाहिए अपने आसपास। लोग क्या करते हैं, खुद का घर तो साफ कर लेते हैं और सारा कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ये बात ठीक नहीं है।
1: सही कहा, कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें ही डालो, सफाई रखो। देखो इस समय डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी रहती है, कोई पेट से परेशान, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार, मच्छर भी गंदगी में ही पैदा होते हैं, तो सफाई जरूरी है भैया।
2: दीनू काका जाइए, काकी को कहीं घुमा लाइए, सिनेमा दिखा लाइए, तो काकी खुश हो जाएगी, है ना जिम्मी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा, अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा। ए राजा, अरे

0: चलो सब लोग बहराइच, शांति चाची के यहाँ भी तो चलना है, नहीं तो शाम हो जाएगी, लौटना भी तो है।
1: शांति चाची के पोता हुआ है, अरे कोई कुछ लाया है देने के लिए?
2: हाँ हाँ, एक ड्रेस मैंने ले लिया था रास्ते में ही, 0 साइज का।
0: चलो थोड़ी मिठाई खरीद लेते हैं।
2: फाइनली पहुँच गए शांति चाची के घर। अरे ये क्या, वहाँ कुछ नाच गाना हो रहा है।

0: गांव में अक्सर लोग किसी फंक्शन में नाच बंधाते हैं। आओ अंदर आओ, नाच देखा जाए।
1: आज बच्चे की छठी है तो सब लोग आए हैं और बच्चे की बुआ मीरा दीदी काजल लगा रही हैं।
2: ओके।
3: अरे हाय, देख।

0: मजा आ गया गांव घूमने में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गांव से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए और यहाँ आकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए।
1: सही कहा किरण दी आपने, हम शहर को निकल जाते हैं और गांव में बड़े बूढ़ों को तो भूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: अरे बहनी, सभी आए हो तो कुछ गा देती हो, हमरे नाती का आज छठी है।
3: हे चाची, मैं किरण बहनी आई है, वहीं से कहती हूँ ना ही सभी मिलके गाय दिए।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 92 9186 9216 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 92 9186 9076। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम वेलकम वेलकम वार्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइफ, जो आपको देता है आपका दिन बना देने वाली इन्फॉर्मेशन और आपको साथ ही साथ में मोटिवेशन और उसके साथ में ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी, जो कि हम देते हैं मूड बदल देने वाला एंटरटेनमेंट भी आपको। स्वागत स्वागत स्वागत, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो ज्ञान असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। जो भी हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो ऐप से सुन रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। तो आइए अब बातों की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है हमारा मंडे। मंडे हमारा होता है काम वाला मंडे। काम वाला मंडे यानी कि हम बात करते हैं काम को लेकर के। ऑफिस स्ट्रेस है तो क्यों है, कैसे उसे दूर किया जा सकता है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे काम को लेकर के जिससे कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज बताएंगे, कुछ इश्यूज़ बताएंगे, उन इश्यूज़ को कैसे ठीक करना है ये भी बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ बातें हम स्टूडेंट्स के एजुकेशन से जुड़ी हुई भी करने वाले हैं। तो वही बातें हैं बहुत सारी और इनकी होने वाली है बहुत ही प्यारी सी शुरुआत, क्योंकि हम करने वाले हैं कुछ नई नई सी बात। तो आज नई सी बात क्या है चलिए बताते हैं। जब भी बात जॉब की आती है, जब भी आप जॉब की बात करते हैं कि हमें जॉब चाहिए, या हम कहते हैं कि आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाने से पहले सभी के हाथ पैर कांपते हैं। सभी को ये लगता है कि अरे इंटरव्यू है, कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हमारे मन में एक चीज़ तो आती ही है ना कि इंटरव्यू है, पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी, मुझसे क्या पूछेंगे, मुझे किन किन सवालों के कैसे कैसे जवाब देने होंगे। कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर फूलते हैं, हमें थोड़ा सा एक डर कह लें या ये कह लें कि नर्वसनेस थोड़ी बहुत होती ही होती है, सभी के साथ होती है। आज कुछ उस पर बात होगी कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे रखना है, और आपके इंटरव्यू में जाते वक्त किन बातों का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आपका जो इम्पैक्ट है वो सामने वाले पर इम्प्रेशन अच्छा हो। सो आइए बात की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताते हैं कुछ इंटरव्यू से जुड़ी हुई बातें कि जब आप जा रहे हैं अपने जॉब का इंटरव्यू देने तो वहाँ आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कभी भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बजाय ये बताना चाहिए कि आप सीखने आए हैं और ढलने और तैयार होने आए हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमें हमारी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए आप गए हैं इंटरव्यू देने के लिए और आपके पास जो भी स्किल्स हैं आपको उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि हाँ मैं आई हूँ और मैं ये चीज़ सीखने आई हूँ। आप इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि अगर हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी खूबियों को अच्छी तरीके से बताएंगे तो इससे हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, यानी कि सामने वाले के सामने जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपनी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं बतानी। ज़्यादा अच्छे से न बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कहते हैं ना कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अगर हमने छोटी सी भी इंटर्नशिप की होती है तो हम बताते हैं अरे मैंने वो इंटर्नशिप की थी, मुझे उसमें ये मिला वो मिला, मैंने इतने अच्छे से काम किया था कि सर मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉई हूँ, आप मुझे एक चांस देकर देखिए, मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूँगी, आप प्लीज़। इस तरह से हम अपनी काम को अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और जब आप इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो वो कॉन्फिडेंस के बदले आपका ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगता है और सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और यही ओवर कॉन्फिडेंस कई बार बहुत लोगों को अपने इंटरव्यू में मुश्किल में डाल देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो शांत मन से उतना बताइए जितना आपसे पूछा जा रहा है। अपनी कामयाबियों को अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उन्हें नहीं बताना है आपको, बस शॉर्ट में आंसर देना है लेकिन सही आंसर देना है। कहते हैं ना शॉर्ट में आंसर दीजिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प, यानी कि हम कम बोलेंगे लेकिन ऐसे बोलेंगे कि सामने वाले पर उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिवली पड़े।
और भी इससे जुड़ी हुई काफ़ी बातें हैं हमारे पास, वो हम आज करेंगे। और आज इंटरव्यू को लेकर के ही काफ़ी चीज़ें बताएंगे कि कैसे कई बार वो कॉन्फिडेंस में आकर, कई बार डर में आकर, नर्वसनेस में आकर हम ऐसी कई सारी गलतियां कर देते हैं जो कि हमारे इंटरव्यू के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो आज इस पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग वेट कर रहा है, उसे सुन लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं, और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे आपसे बहुत सारी बातों को करने के लिए। तब तक सुने और इन्जॉय करें और बने अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सिर्फ

0: दर्पण फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12 गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञानस्ती लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो चलिए अब आते हैं, बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे तो सर सब कुछ आता है, आप मुझे कोई भी काम कोई भी टास्क दे दीजिए मैं सब कर लूँगी। अगर आप भी कभी हम भी जाते हैं और ऐसी बातें होती हैं तो शायद हमें लगता है कि अगर हम इस तरीके के जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो और निखर कर आएगी, सामने वाले के सामने हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होगा। ये सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरीका गलत है। अगर आप अपनी सारी ही चीज़ों को बेहतर से बताएंगे, यानी कि सब हर चीज़ में बस यही कहेंगे हाँ मुझे बहुत अच्छे से करना आता है, हाँ मुझे बहुत अच्छे से करना आता है, मैं सारे काम कर लेती हूँ, मुझे कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे कई सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने काम का या जो चीज़ें आपको आती हैं उनका ज़्यादा दिखावा करना, उन्हें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कभी नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे सामने वाली जो कंपनी आपको जॉब दे रही है कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा इंटरव्यू में इतना अच्छा कर रही है और हर काम के लिए बता रही है कि अगर मैं कर लूँगी तो इसका मतलब है ये सारे कामों को कर सकती हैं या कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अगर आपको वो जॉब मिल जाएगी तो आपको हर टाइम उस जॉब में एक दबाव रहेगा कि मैंने तो इंटरव्यू में कह दिया था ना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब में परफेक्ट हूँ और मैं सब कर सकती हूँ, तो अब तो मुझे सारा कुछ करके देना ही होगा। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी कि जो आपको सीखनी पड़े, हो सकता है आपको नहीं आता हो, लेकिन जो कि आपने इंटरव्यू में कह चुके हैं आप कि आप परफेक्ट हैं, आपको सब कुछ आता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अब तो हमें करना ही है, कैसे करेंगे, और फिर वो ज़्यादातर काम हमारे ऊपर बढ़ भी जाता है और दबाव भी बनाता है। इसीलिए आप अगर जाएँ तो हमेशा ये थिंकिंग लेकर के जाएँ कि आपको कुछ चीज़ें वहाँ से सीखनी हैं और फिर ही उन पर बात करनी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, और जो कि हमारा अगला पॉइंट है कि आपको अपनी कहीं ना कहीं बिहेवियर को चेंज करना होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने ऐसा शुरू क्यों किया, ऐसा करना ये कोई ऐसी आदत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि अपनी चीज़ों के बारे में हम कहीं ना कहीं लॉयल नहीं हो पाते हैं। कहते हैं ना कि जब भी बात आपकी अपनी हो तो हमेशा ईमानदारी से चीज़ों को बताना चाहिए, लेकिन कई बार हम ईमानदारी से चीज़ों को नहीं बताना चाहते। हमें लगता है कि अगर मैं ईमानदारी से बताएंगे, मान लीजिए आप अपना पहला इंटरव्यू देने गए हैं पहली जॉब का, तो आपको लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगी कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता है, मुझे कम आता है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं, आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी इमेज गिरेगी और सामने वाले को लगेगा कि इन्हें तो कुछ नहीं आता है तो इन्हें जॉब कैसे दी जाए। इसलिए हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि हाँ हाँ मुझे सब होगा, मैं सब कर पाऊँगी, आप मुझे जो काम देंगे सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा खुद के साथ जब भी आप इंटरव्यू देने जाइए उन सवालों के साथ लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको आता है उसमें आप कह दीजिए कि हाँ मुझे आता है, जो आपको नहीं आता है उसमें आपको शालीनता के साथ मना कर देना है कि सर नहीं मुझे इसका जवाब नहीं आता है। इससे क्या होगा, इससे सामने वाले को ये लगेगा कि भले ही आपके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है या आपकी फर्स्ट जॉब है, आपने अभी ज़्यादा नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी आप लॉयल हैं, आप जानबूझ कर ये नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो सब आ रहा है मैं तो सब कर लूँगी, ऐसे नहीं। इससे सामने वाले के सामने इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है कि हाँ ठीक है ये फ्रेशर हैं, सीखना चाहती हैं, पहली जॉब है, लेकिन फिर भी अभी इनमें सीखने की ललक है और इन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं ईमानदारी जो है, एक लॉयल्टी जो है वो उनके अंदर है, और यही इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को आजकल इंटरव्यू

में सबसे ज़्यादा कैप्चर किया जाता है। जो आपके सामने आपका इंटरव्यू लेने के लिए कमेटी बैठी होती है, वो आपके कपड़ों को, आपके मेकअप को, आपके स्टाइल को, आपके बोलने के तरीके को, इन सबको शायद एक बार के लिए नोटिस ना भी करे, लेकिन आप कंपनी के लिए, जिस भी संस्था में आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप कितने लॉयल हैं, आप में सीखने की कितनी अच्छी इच्छा है, अपने काम को करने की कितनी ललक है, और साथ ही साथ में आप अपना कितना बेस्ट देना चाहते हैं उस संस्था के लिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर देखी जाती हैं। इसलिए अपनी हार्ड स्किल्स पर मेहनत करने के बजाय अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर मेहनत करनी चाहिए। अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की बजाय आपके पास जो भी छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, छोटे मोटे अनुभव हैं, छोटे मोटे स्किल्स हैं, उन्हें सीधी तरीके से, अच्छी तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से बताएं और हमेशा अपने इंटरव्यू में अपने बॉस से, अपनी कमेटी से सच ही बोलें। सच बोलने का मतलब है कि जो आपको आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। ये नहीं कहना है कि मुझे हाँ मुझे आता है, मैं सब कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उन्हें सामने से कहिए कि हाँ सर मुझे सीखना है और अभी तो मैंने काफ़ी कम एक्सपीरियंस किया है, बट हाँ मुझे अभी और एक्सपीरियंस करना है, आप लोगों से और सीखना है। कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल जो बिहेवियर है वो हमें ध्यान रखना है, कि हमें इस पर जोर देना है कि हाँ मुझे अभी और लर्निंग करनी है और मैं सीख कर और बेहतर हो जाऊँगी, अगर मुझ में कुछ कमियाँ भी हैं तो मैं उन्हें बेहतर कर लूँगी। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर आपको बात करनी है। दूसरी चीज़ है कि बात करने का तरीका भी बहुत सही होना चाहिए, कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसके बारे में बात करने के तरीके को बदल कर उस सिचुएशन को ठीक से समझ सकते हैं। सीधे तौर पर ये कहने के बजाय कि झूठ बोला है, आप कुछ इस तरीके से बातों को कह सकते हैं, मुझे लगता था कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ लेकिन अब मुझे पता चला कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट मुझे लगता था कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। ये क्या है, ये आपको दूर रहने में मदद करता है। यानी कि कई बार जब हम फंस जाते हैं, मान लीजिए हमने किसी काम को लेकर के कहा कि हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन बाद में जब आपको जॉब मिली और आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, आप फंस गए, तो सीधा ये बोलने की बजाय कि मैंने झूठ बोला था या मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, ये नहीं कहना है आपको। उस तरीके को बदलना है और कहना है कि मुझे लगा था कि मैं ये बेटर कर सकती हूँ, बट अभी तो इसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। कहीं ना कहीं बात करने के तरीके को बदलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपको जॉब मिल चुकी है तो आपको बेहतर करने के लिए सीखने पर जोर देना होगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतने ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं। आपको ध्यान जो होना चाहिए, फोकस जो होना चाहिए, वो सीखने पर और बेहतर बनने पर होना चाहिए। ऐसे चीज़ें भी हैं जहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इससे दूसरों को समझने में मदद मिलती है कि आप सीखने के लिए, कहीं ना कहीं आप में वो लगन है कि आप सीखना चाहते हैं। विश्वास को फिर से बनाने का एक तरीका दूसरों की चीज़ों को समझना कहीं ना कहीं होता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों की चीज़ों को, उनकी क्षमताओं को समझें, उनसे सीखें और कहीं ना कहीं उनकी कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करे, मान लीजिए वो आपसे जूनियर ही आपका कलीग है, लेकिन आप उसकी भी चीज़ों से, उसकी स्किल्स से सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं कि वाह यार तुम तो इस काम को इतनी अच्छी तरह कर लेती हो, मुझे तो भी नहीं आता बट कोई नहीं मैं सीख लूँगी। कहीं ना कहीं अपने आसपास के माहौल से सीखना, हमेशा खुद को बेहतर बनाना। अगर आप अपनी किसी बोले हुए झूठ में या गलत तरीके से की गई बातों में फंस चुके हैं तो तरीका बदल कर बात करना और अपने इंटरव्यूज़ में हमेशा अट्रैक्टिव वे में जवाब देना, यानी कि सही और सीधा जवाब देना। हम कहते हैं ना कि कम शब्दों में सही बातें बोलें, कम शब्द बोलें, शब्द भले आपके नपे तुले हुए हों लेकिन जो बात आपकी हो वो हमेशा टॉपिक पर हो, पॉइंट्स पर हो और सही ही हो। ये कुछ चीज़ें थी जिन पर कि आपको ध्यान देना है अपने इंटरव्यू में, और साथ ही साथ इंटरव्यू के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है ये भी हमने आपको बताया। और आज का हमारा जो टॉपिक इसको लेकर था वो यही था कि अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल्स का ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू टाइम में उन्हें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए, खुद को हमेशा ये नहीं बताना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे सब कुछ आता है। अगर आप खुद को एक लर्नर की तरह पेश करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए लिसनर्स अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका की नाम है ज्ञान हस्ती लाइव, जो आपको देता है मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन और उसी के साथ एंटरटेनमेंट भी। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अनुष्का, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने बात की इंटरव्यू को लेकर के कि कुछ पॉइंट्स कैसे हैं और किन पर हमें काम करना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कुछ ऐसी कोर्सेज के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ वोकेशनल कोर्सेज की बात करेंगे जिनका कि फ़ायदा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिलता है, उन्हें इनमें ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज आखिर होते क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूल और कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए चलाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज ऐसे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिनका कि जो एम होता है वो स्टूडेंट्स को इस तरीके का कहीं ना कहीं एक स्किल देना होता है, एक ट्रेनिंग कराना होता है, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रैक्टिकल कुछ भी आपको आता है, आपके अंदर कोई भी स्किल है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी चाहिए, और इसी बात को सरकार ने भी समझते हुए अब कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज को सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में सिलेबस के साथ जोड़ दिया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। वोकेशनल कोर्सेज सीधे आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ ही एक ऐसी चीज़ें उपलब्ध कहीं ना कहीं आपको मिलती हैं जिनकी वजह से आप बेहतर बनते हैं। इन कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्हें पूरा करने के बाद में आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और अब वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो अलग अलग कई सारे कहीं ना कहीं ग्रुप्स में, कई सारी चीज़ों में मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज को लेकर के। वोकेशनल कोर्सेज में आप बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ वोकेशनल कोर्सेज की, जो कि कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले जिस वोकेशनल कोर्स की बात करेंगे, वोकेशनल कोर्स है हेल्थ केयर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा अगर आप चाहें तो आप कुछ ऐसी टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगर हम बात करें कि टेक्निक से जुड़े हुए कौन से कोर्सेज होते हैं, तो टेक्निक से जुड़े हुए भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इन्हें हर कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीखा जा सकता है। मान लीजिए 10th से कम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी रुचि के अनुसार भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। कोर्सेज की माने तो कोर्सेज हमेशा अलग अलग होते हैं। 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं वो इन वोकेशनल कोर्सेज को सीख सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज में आपको बहुत सारी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर हम बात करें हमारे ज्ञान हस्तली की, तो हमारे यहाँ भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे कि ब्यूटीशियन, रेडियो जॉकी, सिलाई कढ़ाई, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी बातें। देखिए, वोकेशनल कोर्सेज को हम समझ लेते हैं कि हमारी सिलेबस के साथ में सिर्फ ये लगे हुए हैं और हमें इन्हें कम्प्लीट करना है, और हमें 6 महीने पढ़ना है, साल भर पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, और हमें आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इन वोकेशनल कोर्सेज की कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर हम इन वोकेशनल कोर्सेज को अच्छे से कर लेते हैं और हमारे सर्टिफिकेट्स हमें अच्छे से मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए जॉब का रास्ता खोलते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, मान लीजिए 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, तो ये वोकेशनल कोर्सेज जो हैं ये आपको आपकी इंटरेस्ट रेट की तरफ ले जाते हैं, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट ब्यूटीशियन में है, किसी का सिलाई कढ़ाई में है, किसी का साइकोलॉजी में है, किसी का रेडियो जॉकी में है, किसी अलग अलग चीज़ों में है। जैसे कि अभी हमने इसमें बताया ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया,
तो कहीं ना कहीं इन सब में अलग अलग कई सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। किसी को हेल्थ में होगा, किसी को ग्राफिक में होगा, किसी को ऑडियो में होगा, किसी को किसी में होगा, सबको अलग अलग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये वोकेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स को आज हेल्प करती हैं न सिर्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, बल्कि अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी पसंद की जॉब में जाने के लिए भी हेल्प करती हैं। मान लीजिए आपने हेल्थ को चुना है, हो सकता है आगे जाकर आप NM, GNM कुछ भी करें तो वो आपकी हेल्थ को लेकर के ही आगे आपके काम आएगा। मान लीजिए आपने फूड टेक्नोलॉजी को चुना है, आगे आप फूड डिपार्टमेंट पे जाएंगे तो वो आपके काम आएगा। आपने सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन चुना है, आगे आप ब्यूटिशियन में जाएंगे तो आपने जो भी कोर्स किया है उससे जो कुछ भी सीखा है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। इसलिए कहते हैं कि कभी भी वोकेशनल कोर्सेज को बस एक्स्ट्रा नहीं समझना चाहिए। स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं ये एक चीज़ बन चुकी है कि वो वोकेशनल कोर्सेज को एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कि अरे हमारे सिलेबस के साथ वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है तो हमें उसको कंप्लीट करना है। बट ऐसा नहीं है, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाने में, आपकी सोच को आगे बढ़ाने में, आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ आपको बेहतर बनने में भी मदद करता है। इसलिए हमेशा हमें हमारी वोकेशनल कोर्सेज की तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितनी हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की तरफ देते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप उन्हें बेहतरी से कर लेते हैं तो वो आप ही के लिए कैरियर के अलग अलग रास्तों को खोलता है। इसलिए अपने वोकेशनल कोर्सेज पर भी उतनी ही मेहनत करें जितना आप अपने सिलेबस पर मेहनत करते हैं, क्योंकि वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है जिस पर आपने मेहनत की हो, जो आपको अच्छे से आता हो, आगे जाकर आप उसी में अपना कैरियर एक बेहतर तरीके से बना पाएं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहते हैं ना कि सरकार ने अगर कुछ शुरू किया है, कोई नई पहल की है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही होती है। अगर 8 या 7 या 9 या 10 कहीं ना कहीं सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ा गया है तो कुछ सोचकर ही जोड़ा गया है, हमारी ही बेहतरी के लिए जोड़ा गया है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स पढ़कर निकले, ग्रेजुएशन कर पोस्ट ग्रेजुएशन करके, उनके पास कुछ तो चीज़ें हो, कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिससे कि उन्हें लगे कि वो आगे जाकर इसमें अपना कैरियर सेट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन सके। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम लापरवाही में ध्यान नहीं देते। इसलिए अब से आप अपने वोकेशनल कोर्सेज पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप अपनी पढ़ाई पर देते हैं, और हमेशा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उनका फ़ायदा आगे जाकर हमें ही मिलता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उबाऊ मन से कि अरे नहीं मुझे तो बस पूरा करना है ना, बस हो जाए किसी तरीके से। ये कभी नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उनमें हमेशा अपना 100% देने की और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आगे जाकर वो आपको कहाँ ले जाएगा और कहाँ सेट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जितनी भी एक्सपीरियंस मिल सकें, जो भी नॉलेज मिल सके, उन्हें हमेशा गेन करते रहें, क्योंकि वो हमें हमेशा बेहतर की तरफ ही ले करके जाते हैं। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, इसे सुन लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए। आप सभी बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9876 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम वेलकम वेलकम करती हूँ आपके अपने वाले शो में। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम टाइम की ओर पहुँच चुके हैं, और अब आपका टाइम है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम यानी हमारी आज की जो स्टोरी होने वाली है वो हमारी थीम से ही जुड़ी हुई होने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसी स्टोरी बताएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी आपको कैरियर को लेकर के मोटिवेट करेगी, क्योंकि मोटिवेशनल देना, मोटिवेशन देना और कुछ ना कुछ आपको हर दिन मोटिवेशनल बताना, ये तो हमारी ज्ञान असली लाइफ की खासियत है। हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, और उसके साथ आपको एंटरटेनमेंट भी ज़रूर देते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की स्टोरी की। आज की जो हमारी स्टोरी है वो छोटे से गांव में रहने वाले एक मूर्तिकार की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि कैरियर और काम की आखिर असली जो परिभाषा होती है यानी कि डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। एक मूर्तिकार हमेशा पत्थर को तराशने में इतना खो जाता है कि उसे दिन और रात का होश ही नहीं रहता है। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतनी कड़ी मेहनत कैसे कर लेते हो, कभी थकते क्यों नहीं हो, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहा बल्कि इस बेजान पत्थर के भीतर छुपी हुई एक सुंदर सी मूरत को आज़ाद कर रहा हूँ। यही नज़रिया हमें हमारे कैरियर के लिए सबसे ज़रूरी है। जब हम अपने काम को सिर्फ एक बोझ या रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया न मानकर खुद को बेहतर बनाने और समाज के लिए कुछ नया करने का कहीं ना कहीं एक समझते हैं कि हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो थकान जो होती है वो गायब हो जाती है। इसलिए अगर आप भी अपने कैरियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भी उस मूर्तिकार की तरह सोचना होगा कि एक एक छेनी जो है, जो वो मारता है, वो उसकी काबिलियत को कहीं ना कहीं तराशना है। जहाँ हर चुनौती जो होती है, जो चैलेंज होते हैं, वो आपको एक खूबसूरत भविष्य की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि लिसनर्स, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ नई चीज़ों को करते हैं, तो हमेशा हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम अपने इसी काम के ज़रिए न सिर्फ खुद का बल्कि कुछ समाज का भी अच्छा कर रहे हैं, उस संस्था का भी अच्छा कर रहे हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, और हमारा काम हमारे लिए बोझ ना हो, तो वो और बेहतर बन जाता है। और यही बताता है कि कैरियर को सफल बनाने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि काम के प्रति कहीं ना कहीं डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा डेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने करियर की शुरुआत रातों दिन मेहनत करके की। उन्होंने हर छोटे बड़े काम को ईमानदारी और लगन के साथ पूरा किया। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो हर रोज़ खुद को कल से बेहतर पाते हैं। अगर हम खुद को कल से बेहतर पाना चाहते हैं तो हमें हमारे काम से प्यार होना चाहिए, उसके प्रति पूरी पूरी डेडिकेशन होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये सोच होनी चाहिए कि हम कभी भी हमारे काम को पीछे नहीं जाने देंगे, हमेशा उसे बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएंगे और बेहतर बनाएंगे। याद रखिए कि आपकी आज की मेहनत आपके कल और सुनहरे भविष्य को और भी बेहतर बनाती है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी पढ़ाई करते हैं, जितनी भी अपनी जो भी हमारे अंदर स्किल्स होती हैं उन्हें निखारते हैं, उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि हमें आगे जाकर अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कुछ करना है, खुद को कहीं ना कहीं बेहतर बनाना है। और खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो मेहनत होती है। अगर आप लगन से, मन से, सच्चे दिल से, लॉयल रहकर मेहनत करेंगे तो वो आप ही के बेहतर भविष्य की एक नींव रखती है। हमें कभी बहाने नहीं बनाने चाहिए। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि अपने काम को लेकर कभी बहाने नहीं बनाने चाहिए कि ये होता तो ये हो जाता, वो होता तो वो हो जाता, मेरे पास टाइम नहीं था वरना ये काम हो जाता। बहाने नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी समझे, डेडिकेशन समझे, अपनी लॉयल्टी समझे, और अपने काम को अच्छे से करें। और हर दिन छोटे छोटे कदम अपनी गोल की तरफ, अपने काम की तरफ बढ़ाने चाहिए। यहाँ छोटे छोटे कदम बढ़ाने से मतलब ये है लिसनर्स कि जब कोई फ्रेशर किसी जॉब के लिए आता है, कोई काम करता है, या हम एक फ्रेशर की तरह मान लीजिए कॉलेज से निकल करके अपनी कॉलेज को पूरा करके अपने काम की तरफ जाते हैं, तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं नए माहौल में ढलने में, नए लोगों के साथ काम करने में, उनके साथ काम करने में जिनको कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें हैंडल करना पड़ता है। लेकिन उन्हें अगर हम बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही सबसे अच्छा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा एक लर्नर की तरह हर दिन कुछ ना कुछ सीखें, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाएं। और एक दिन आएगा जब परफेक्ट तो नहीं, लेकिन आप 100% उन चीज़ों को सीखकर अपने काम में इतने बेहतर बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन वो कुछ अचीव करने के लिए हर दिन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी पॉइंट्स के साथ हमें मेहनत करती रहनी होगी और एक लर्नर की तरह हमेशा सीखते भी रहना होगा। तो आइए, मुझे लगता है कि अब टाइम जो है वो काफ़ी कम हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले आइए लिसनर्स, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि कब से आपका वेट कर रहा है और मुझसे कह रहा है मुझे कब प्ले करने वाली हो, इतनी सारी बातें करती हो कि मुझे तो प्ले ही नहीं किया। तो आइए इसकी जो प्रॉब्लम है, जो शिकायत है, उसे दूर कर देते हैं और इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को प्ले कर देते हैं। आऊँगी इस सॉन्ग के मिड में आपसे बाय-बाय करने के लिए, तब तक सुने और इसे इंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को आज के लिए इजाजत दीजिए। लिसनर्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ज्ञान असली लाइव मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे सुन सहेली में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्हा मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती कभी कभी भारी पड़ सकती है, तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी। वे हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए, साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही क्या है?
4: दीदी जी, सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, यही बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया है। घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई।
3: अच्छा।
4: और डॉक्टर साहब की सलाह मानी, उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज इसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और ना उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए, ना शहद, ना घुट्टी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी। बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में ही है।
3: बात तो बिल्कुल पते की कही आपने भाभी। भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डिब्बा बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है?
4: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं, तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को ना तो डिब्बा बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का होता है। और एक बात खास ध्यान रखें, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना पिलाएं। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
3: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है आखिर?
4: देखिए, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है। क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चों को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा ये है कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षा महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्त स्राव कम हो जाता है और सेहत जल्दी संभलती है। साथ ही शोध से साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद या एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुल मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
3: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
4: दीदी, इसमें वो सब कुछ होता है जिसके नवजात शिशु को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन होता है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चों को बीमारियों से बचाती है। मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कह सकते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी।
3: अच्छा भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
4: बच्चा जब भी चाहे, चाहे दिन हो या रात, माँ को उसे बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता देता है कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय में दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है यानी 2.5 किलो से कम का है तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं ले पा रहा है तो माँ अपना दूध निकालकर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह जाएगा, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी और उससे बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
3: भाभी, कैसे समझे कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर भी रहा है?
4: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझो कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा हो।
3: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकाल कर बच्चे को पिलाना पड़ता है। लेकिन ये काम कैसे किया जाए, और कई माँ इसे लेकर बहुत घबराती भी हैं।
4: दीदी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा माँ का स्तनपान नहीं करना चाहता है, तो उस स्थिति में माँ को ऐसा करना चाहिए कि वो अपने दूध को किसी छोटे बर्तन में निकाल ले और फिर उस दूध को बच्चे को कप या छोटे चम्मच से पिला दे, और अगर तुरंत नहीं पिला रहे हैं तो दूध को ढक कर रख दे। ये करीब 6 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है।
3: जी भाभी, और कई बार नई माँ सोचती है कि शिशु को गोद में कैसे पकड़ें और किस तरह दूध पिलाएं, सही तरीका क्या है स्तनपान कराने का, ये भी बता दें।
4: दीदी, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन भी जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा होता है तो गटकने की हल्की सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। और भाभी, कई बार मैंने सुना है कि नई माँ को दूध पिलाते समय स्तन में सूजन, दर्द या सक्ति जैसी परेशानियाँ हो जाती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से उसे सेकना चाहिए, इससे आराम मिलता है।
3: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म सेक काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
4: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए और शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ है तो थोड़ा सा दूध पहले से निकाल लेना चाहिए, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ सकेगा।
3: जी भाभी, कहते हैं कि दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
4: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे प्लेसेंटा भी जल्दी बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
3: ये तो बड़े पते की बात की आपने भाभी। अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
4: हर दिन कम से कम 5 तरह की चीजें तो जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियाँ, दूध दही, फल और अनाज। तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
3: तो दोस्तों, आज की बात से साफ है कि माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है, बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेरों फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर और भी अहम बातें करेंगे। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
5: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
5: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
5: साफ सफाई और स्वच्छता का
1: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
5: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
2: रेडियो 89.6

0: शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूं आरजे अंशिका।
6: तो आपके बेहद पसंदीदा शो शो शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
5: सुन सहेली।
6: तो भाई, सुन सहेली में हम दोनों लोग आ गए हैं। कल बहुत ही ज्यादा वाली व्यस्तता के बाद में संडे, नाम केवल संडे होता है लेकिन घर का काम, व्यस्तता इतनी ज्यादा होती है कि मुझे तो लगता है अंशिका बाकी नॉर्मल डेज हम लोग के लिए ज्यादा बेटर होते हैं। मतलब मंडे टू सैटरडे मुझे लगता है कि वो ज्यादा रिलैक्सेबल होता है अकॉर्डिंग टू संडे। क्यों?
7: बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब संडे को वाकई में ऐसे लगता है कि आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हर संडे होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता है कि वो बिल्कुल, ट्रेन देखी है आपने लिसनर्स, जब ट्रेन चलती है तो कैसे ऐसे आवाज होती है और धक्के से चलती है,
6: आराम हराम।
7: हाँ, वैसी वाली कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल ट्रेन वाली कंडीशन हो जाती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता ही रहता है, क्योंकि
6: हाँ
7: पूरे वीक का फिर हो जाता है ना कि जितने भी पूरे वीक के इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो संडे को,
6: वो संडे को ही होता है। मतलब अगर मार्केट जाना है अपने लिए, कोई अगर शॉपिंग करनी है, अपनी अपनी सेवा करनी है कुछ भी, तो वो भी एक संडे मिलता है हम लोगों को। मतलब लगता है कि संडे ऐसा, और संडे के तीन ऐसे बज जाते हैं जैसे लगता है कि सुबह के 11 बज रहे हों केवल, क्योंकि उसका एक प्रमाण होता है कि हम लोग उठते देर से, खाना देर से, नाश्ता देर से और हर मस्ती देर से। तो फिर उसका कारण सिर्फ ये हो जाता है कि अगर देर से हम सब चीज़ देर से, तो फिर नहाना भी देर से नहीं, लेकिन मैं जल्दी नहा लेती हूँ। मतलब मेरी एक हैबिट है कि मैं उठते ही पहले नहा लेती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये काम एक निपट जाएगा तो बाकी काम तो वो होते ही रहेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की प्यारी सी पोयम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मंडे, लजीज मंडे,
7: यानी कि हमारा खाना खजाना वाला दिन, और खाने खजाने वाले दिन हमारी जो पोइट्री होगी वो भी होगी खाने खजाने पे ही। लेकिन चलिए इससे पहले कविता की ओर चलें, कुछ हम रास्ता दे देते हैं।
6: जी बिल्कुल।
7: तो आज का रास्ता

0: वो आपको थोड़ी उदासी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आज क्लाइंट्स भी कुछ वैसी होने वाली हैं। वो नहीं अच्छी लगती हैं उदास, वो नहीं अच्छी लगती हैं उदास, और जब करती हैं कोई सुखी सुखी बात उनके होठों से तो सिर्फ अच्छी लगती है, प्यारी प्यारी और मीठी मीठी ही बात। लेकिन हम क्या करें, कभी कभी हो जाती है ऐसी बात जो कर देती है हमारे मिजाज को थोड़ा खराब। पर कोई बात नहीं, चलिए हम उन्हें हंसाते हैं और उन्हीं के संग मुस्कुराते हैं, और कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी सी पंक्तियाँ उन्हीं की प्यारी प्यारी आवाज़ में सुनते हैं, और अपने साथ कुछ उन्हें भी मुस्कुराने पर यूं ही मजबूर करते हैं।
1: जी, तो चले शुरू करें।
0: जी,
1: आज जैसा कि सभी को पता है कि आज हमारा मंडे होता है, लजीज मंडे। उस दिन हम लेकर के आते हैं खाना खजाना, यानी कि बहुत सारी रेसिपीज को लेकर के। तो आज बता दूं कि आज हमारी मास्टर शेफ स्टूडियो में आकर के ही लाइव करेंगी और बताएंगी आपको बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म रेसिपीज को लेकर के, और उसके बाद बताएंगी अंशिका, फिर बताऊंगी मैं। तो आप सभी का स्वागत है अभिनंदन आपके अपने शो सुन सहेली में। आइए फटाफट एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं इस प्यारी सी दोपहर को।
2: शुभ दोपहरिया।
1: जिंदगी का असली मजा तो अच्छे खाने पीने में है, मसालों की उस भीनी खुशबू को दिल में समेटने से है। सुबह की गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का वो स्वाद हर निवाले साथ लाती है पुरानी कुछ याद। कभी कभी तीखी, कभी पानी पूरी, तो कभी चाट का चटकारा है। मिठाइयों की महक ने तो हर दिल को ही हारा है। दोस्तों के संग बैठकर वो समोसे और कचौड़ी खाना, हंसते मुस्कुराते हुए हर गम को भूल जाना। घर की बनी दाल चावल में जो सुकून और प्यार है, उसके सामने तो फीका दुनिया का हर बाजार है। माँ के हाथों के जादू का कोई तोड़ नहीं होता, उस तृप्ति के आगे दुनिया का कोई मोल नहीं होता। सेहत और स्वाद का जब होता है हसीन संगम, दूर हो जाता है जीवन का हर तनाव और हर गम। तो खाइए पीजिए और मुस्कुराइए, जिंदगी बिताइए हर एक जायके के साथ, दिल से लुफ्त उठाइए।
0: वाह, बहुत ही प्यारी। मतलब कचौरी भी थी, समोसा भी था, गोलगप्पे भी थे। इसे कहते हैं टेस्टी एक पूरी, मतलब
1: पूरी एक अच्छी वाली प्लेट। हाँ, जिसमें प्लेट। ट्रे होती है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वाली ट्रे थी जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे। तो इस आइटम्स को हम करते हैं जब तक फिनिश, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: बिल्कुल, आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है लिसनर्स, वो ये है कि किसी को भी उसकी गलती बताने और उसकी गलती पर समझाने का हमेशा एक सही समय होता है और सही सिचुएशन होती है। अगर आप सही सिचुएशन में किसी को उसकी गलती रियलाइज़ करवाते हैं तो उसे समझ में आ जाता है, लेकिन कभी भी गलत सिचुएशन में अगर आप किसी को उसकी गलती भी बताते हैं तो उसे ये लगता है कि वही सही है। सिचुएशंस डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई बहुत गुस्से में है और आप उसके सामने ज्ञान दिए जा रहे हैं, उसे बताए जा रहे हैं, थोड़े समझ में आएगा, क्योंकि उस वक्त उसका वो माइंडसेट नहीं है कि वो समझ सके। लेकिन वही बात मान लीजिए इंसान शांत बैठा है, किसी दिन बहुत खुशी मूड में वो शांत बैठा हुआ है, आप गए और आपने कहा उस दिन आपने ये किया था, आपको ये ऐसे नहीं, आपको ये ऐसे करना चाहिए था, इसका ये इफेक्ट है, तो वो सुनेगा भी और समझेगा। इसीलिए अगर किसी को उसकी गलती भी समझानी है तो सही सिचुएशन देखकर फिर ही समझानी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से गाने को।
0: आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आरएस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता,
7: मैं हूँ RJ अंश।
6: तो आइए फटाफट खाना खजाना में देर न लगाते हुए आज की रेसिपी को लेके चलते हैं, जो कि बताएंगी आपको आपकी RJ अंशिका, एंड उसके बाद में आएंगी सीधे सीधे मास्टर शेफ। तो आइए सुनते हैं सबसे पहली रेसिपी अंशिका।
7: आज मैं आपको बताऊंगी मलाई पेड़े। घर में ही आसानी से कैसे आप सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ मलाई पेड़े बना सकते हैं। क्योंकि भाई क्या होता है ना कि घर में जब भी कोई गेस्ट आते हैं या कुछ भी होता है तो हमारे मन में एक चीज़ ये होती है कि कुछ मीठा अगर घर में रखा हुआ हो, मान लीजिए बिस्किट नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो हम सोचते हैं कि मिठाई कोई भी रखी हो, या रात में अगर आपको भी खाने के बाद मिठाई की क्रेविंग होती है तो इसके लिए ये पेड़े बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्ग्रीडियंट्स हमें क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए 250 ग्राम पनीर, पनीर ले लेना है आपको, मिल्क पाउडर ले लेना है 1.5 कप, दूध आपको ले लेना है 1 कप, और उसके साथ पिसी हुई चीनी या फिर मिश्री ले लेनी है आपको 5 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर ले लेना है 1 छोटा चम्मच, और उसी के साथ कुछ टुकड़े आपको पिस्ते के ले लेने हैं करीबन 1 चम्मच उसको डेकोरेट करने के लिए।
6: ओके।
7: और साथ ही साथ में हमें ड्राई फ्रूट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो है काजू और बादाम।
6: यानी आज कुछ खिलाया जा रहा है मीठा।
7: यस मैम, आज मैं खिलाऊंगी मलाई पेड़े। तो आइए अब बात कर देंगे इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाना काफी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पैन ले लेना है, उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर और मिल्क पाउडर और जो दूध आपने रखा था वो आपको डाल देना है। इन सबको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि 3 से 4 मिनट तक हमें धीमी आंच पर इन्हें पकाना है, जब तक कि ये चलाते हुए एक पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए, थिक ना हो जाए, तब तक आपको इसे चलाते रहना है
6: जी।
7: उसके बाद में हमें क्या करना है कि अब इसमें हमें चीनी मिलानी है।
6: ओके।
7: मैंने आपसे मिश्री रखवाई थी, तो आपने सोचा होगा कि मिश्री का क्या काम है, तो मैं बता दूं कि जिनके भी घर में शुगर पेशेंट है वो चीनी अवॉइड करते हैं कि हमें चीनी ना डालनी पड़े। अगर आपके घर में भी शुगर पेशेंट है तो आप मिश्री के पेड़े बनाइए
6: जी,
7: चीनी की जगह मिश्री डाल दीजिए, क्योंकि उसमें मिठास कम होती है, खाने में टेस्ट वैसा ही आएगा लेकिन उससे आपका शुगर बढ़ेगा नहीं
6: जी।
7: क्योंकि मेरे घर पे भी ऐसे ही है मैम कि पापा को शुगर है, तो जब भी कुछ मीठा बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूट चीजें ढूंढनी पड़ती है जिनकी वजह से चीनी ना डालनी पड़े। ये हो गया। अब आपको बताते हैं कि क्या करना है। आपने उसमें पिसी हुई चीनी, मिश्री या इलायची पाउडर जो भी है वो डाल देना है। इसको डालने के बाद में आपको इसे धीमी आंच पर कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना है। जब आप इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे और चलाते रहेंगे, ध्यान ये रखिएगा कि आप इसे रेगुलर चलाते रहिए, ये बिल्कुल भी नीचे पैन में नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें दूध और पनीर है, दूध और पनीर दोनों बहुत हल्के होते हैं, अगर आप इसे गैस पे 2 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो वो तुरंत से नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। अगर जल जाएगा तो फिर पेड़े में वो टेस्ट नहीं आएगा, आपके पेड़े करछाने लगते हैं, मतलब जला जला सा उसमें टेस्ट आने लगता है। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको चलाते हुए रहना है। जब आप इसे 5 मिनट तक रेगुलर चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है कि ये पूरा एक डो बनकर तैयार हो जाता है। जैसे हम आटे को वो करते हैं ना तो उसका डो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक वैसे ही। जब आप देखें कि इसका डो बन चुका है तो आपको इसे एक बोल या किसी भी प्लेट पे निकाल कर ठंडा होने देना है। 10 से 12 मिनट तक आराम से आपको इसे ठंडा होने देना है, लेकिन जो कि इस मिनट तक आराम से आपको इसे ठंडा होने देना है लेकिन जो कि इस पर ये सूख ना जाए। कई बार क्या होता है जैसे आटा वगैरह जो गूंथते हैं तो सूख जाता है, पपड़ी बन जाती है, हम कहते हैं ना पपड़ी बन गई, तो अगर ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आपको इसे जो है एक कपड़े से बंद करके रख देना है ताकि ये सॉफ्ट रहे। 10 मिनट के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे हम पूरी की छोटी छोटी लोई वगैरह बनाते हैं वैसे हमें छोटी छोटी लोई ले लेनी है और हाथों से इसको गोल करके और फिर आपको अंगूठे से उसमें थोड़ा सा गोल
6: जैसे नहीं बीच पे टैप करके कुछ भी लगाने के जैसे पिस्ता हो गया फिर काजू हो गया वो टैप करके ना बीच में स्पेस बना लेनी है।
7: बीच में स्पेस बना लेना है, ये पूरा एक पेड़े के तरीके से हो जाएगा। जैसे कि मैम ने बताया बीच में आप बादाम काजू और पिस्ते रख सकते हैं, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं किसी में बादाम रख दीजिए, किसी में काजू रख दीजिए, किसी में पिस्ता रख दीजिए और अब आपके ये पेड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें अच्छे से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करें, बीच में आपको जो भी रखना है रखें और ऊपर से कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रख दीजिए, आपके पेड़े तैयार हैं। इंस्टेंट खाएं, खिलाएं और बहुत सी तारीफें पाएं।
6: तो भाई ये इंस्टेंट जो पेड़े बनाए हैं अंशिका ने, और आई थिंक जैसे मार्केट में जाओ तो आजकल मिठाइयां भी बहुत महंगी मिल रही हैं, तो और सबसे मेन पॉइंट हो जाता है अंशिका कि हाइजीन का भी एक बड़ा पॉइंट हो जाता है, एक बड़ा मसला हो जाता है। तो भाई आप घर में बनाएं और भरपेट सबको खिलाएं, क्योंकि देखिए मार्केट से लेके आएंगे तो क्वांटिटी जो होती है वो तो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना मिनिमम होती है
7: जी।
6: और आप घर पे बनाएंगे तो अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे और भरपेट खाएंगे, तो क्यों नहीं, चलो हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं अंशिका, और ब्रेक के बाद सीधे सीधे लिसनर्स को ले चलेंगे मास्टर शेफ के पास, क्योंकि हमारी मास्टर शेफ हमारे स्टूडियो में आ गई हैं। तो बस हम यूं गए यूं आए, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
9: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा और पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। और आज है हमारा लजीज वाला मंडे और लजीज वाले मंडे में लजीज लजीज रेसिपीज जानने का टाइम आ गया, क्योंकि हमारे साथ आकर हमारे स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं हमारी मास्टर शेफ। तो आइए सबसे पहले उनका वेलकम कर लेते हैं और उनसे करते हैं कुछ बातें और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं।
10: नमस्कार मेरे श्रोताओं,
9: वेलकम मैम।
10: बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन से कुछ ना कुछ, कभी मीठा बनाया, कभी बन सिखाया, पर आज मैं सोच रही हूँ नॉन वेज की कुछ डिश बता दूँ।
9: ओ वाव,
10: इसलिए ना क्योंकि फिर इसके बाद पितृ श्राद्ध होने लग जाएगी जी, फिर नवरात हो जाएगा, फिर दशहरा आ जाएगा, उसके बाद ही तो 2-3 दिन है। बहुत अच्छी डिश है, बहुत हल्की फुल्की हैं और आप लोग बनाइए। आपको मालूम है कि मैं जो हूँ कोई बाहर का सामान ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, घर के सामान से ही सिखाती हूँ, बहुत सरल ढंग से सिखाती हूँ। चाहे आप वेज बनाइए चाहे नॉन वेज बनाइए, बहुत ही अच्छा से। चलिए तो आज मैं चिकन का नगेट्स कह लो या टिकिया कह लो या जो भी आप नाम देना चाहें, ये मेरी सेल्फ बनाई हुई है और बहुत अच्छी है। तो चलिए सामान लिख लीजिए।
9: जी मैम,
10: सबसे पहले आप चिकन के मांस वाले पीस लेंगे। अगर आपके घर में पूरा चिकन आया है तो आप ऊपर से काट लीजिए और उसको पतली पतली करके स्ट्रिप में काट के चौकोर चौकोर कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ पूरा कटा हुआ मुर्गा आया है तो आप जो मांस वाले पीस हैं वो अलग कर लीजिए और उसको धो लीजिए। धोने के बाद आप उसको जो मांस वाले टुकड़े हैं उसको आप मिक्सी में डाल दीजिए और ये लगभग 300 ग्राम, दो चाय के प्याले भर भर के या आप 300-350 ग्राम आप बस इसको तौला लीजिए और इसको अलग से आप मिक्सी में, आप इसको हमें कीमा नहीं करना है, इस बात को आप जान लीजिए कि हमें कीमा नहीं करना है। हमने डाला, एक बार चर्न करा, हल्के से घुमाया, फिर चम्मच से पूरा घुमा दिया, फिर हल्का सा करा, बस। अब आप देखिएगा कि वो टूट गया होगा क्योंकि जो चिकन के रेशे होते हैं वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं
9: जी मैम,
10: और बकरे का जो मांस होता है उसके रेशे नहीं अलग होते,
9: उसमें टाइम लगता है।
10: और इसमें आप देखिएगा अगर कोई कड़ा भी हो तो आप हाथ से तोड़ दीजिएगा, नहीं चाकू से काट लीजिएगा। अब आप इसको क्या करेंगी, एक बाउल में निकाल लीजिए, जो भी आपका बड़ा बाउल हो, छोटे में मत लीजिएगा। अब उसमें 300 ग्राम में आप 3 अंडे डाल दीजिए फोड़ के, पूरे सफ़ेदी सहित। ये नहीं है कि सफ़ेदी अलग कर लें पीला अलग, पूरे अंडे आप उसमें फोड़ करके डाल दीजिए। अब उसमें एक चम्मच चाय का जो है वो अदरक डालेंगी पेस्ट, एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए आप जब भी चिकन बनाती हो, लहसुन अदरक का पेस्ट तो आपको डालना ही डालना है
9: जी मैम।
10: इससे क्या होता है कि जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो चीज़ आप बना रही हैं उसका अलग से स्वाद निखर आता है। अब उसमें एक चम्मच चाय का चम्मच आप भुना हुआ जीरा डालें, एक चाय का चम्मच आप उसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दीजिए और एक से डेढ़ चाय का चम्मच या एक टेबल स्पून बड़ा ही होता है तो आप उसमें कुटा हुआ मिर्चा मतलब मोटा दरदरा
9: या घर चिली, की जो लाल हाँ, मिर्च होती है मैं।
10: या चिली फ्लेक्स है ना जिसे हम कहते हैं
9: जी जी।
10: हम तो घर में बनाते हैं तो हम थोड़ा दरदरा पीस के एक भर के रखे हुए
9: जी,
10: क्योंकि ये बहुत नॉन वेज में खड़ा हुआ मिर्चा बहुत अच्छा लगता है जब बीजे आते हैं, तो आप उसको एक टेबल स्पून डाल लीजिए। उसके बाद आप 4-5 हरी मिर्च है और हरा धनिया है ये आप महीन महीन काट करके इसमें डाल देंगे, जो आप में बाउल में अंडे डालें वहीं पे डाल दीजिएगा। नमक अंदाज से डाल दीजिए, एक चाय का चम्मच बराबर करके लग जाएगा, इससे ज़्यादा आपको डालना है। अब अंदाज तो होगा ही आपको कि हमें इतना डालना है। एक चीज़ तपका के देख लीजिएगा बना

0: जैसे मैदा ऐदा रहेगा तो मोयनीज अलग से चिपक जाएगी
1: जी मैम।
0: लेकिन अगर हम मैदा पहले से फेटे हुए हैं सब है, तब मोयनीज उसमें निखर के आ जाएगी। और दो चीज़ क्यूब है या मोज़रेला चीज़ जो भी हो, आप कद्दूकस करके, अगर आपके पास चीज़ क्यूब है तो आप दो स्लाइस ले लीजिए, उसको अच्छे से कद्दूकस करिए, उसको भी इसके अंदर आप मिला देंगी। मिला करके खूब अच्छे से मिला लेंगी चम्मच से। अब आप रिफाइंड ऑयल या तेल जो भी आप यूज़ करती हैं उसको आप पैन में रखिए और चढ़ा दीजिए गरम होने। जब वो गरम हो जाए तब उसकी आंच आप धीमी कर दीजिए, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। उसके बाद जैसे आप पकौड़ी डालते हैं वैसा ये बैटर तैयार हो जाएगा, पर पकौड़ी उठी उठी गोल गोल डालते हैं
1: जी,
0: इसको हम चपटा कर करके डालेंगे। जब हम डालेंगे, क्योंकि आंच मेरी धीमी है
1: जी मैम,
0: और हम इसको चम्मच से उठा के ऐसे डाल करके इसको चपटा कर लेंगे
1: टिक्की के तरीके से,
0: टिकिया जैसे आलू की टिकिया रहती है वैसे हम पतला पतला, और आंच हम मध्यम रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। फिर हम चाहे पैन से या जिससे भी चाहे धीरे धीरे, हमारे अगर आपके पास चौकोर काटा है या चौकोर चम्मच है तो आप उससे एक एक टिकिया पलट देंगी, पलट के गोल्डन ब्राउन रेड रेड सा कर लीजिए। अब आप इसको मोयनीज सॉस के संग चटनी बना खाइए। अब मोयनीज सॉस की चटनी कैसे बनेगी, आप हरी धनिए की कोई चटनी पीस लीजिए, या आप लहसुन नमक मिर्चा, हम तो पीस के रखे हुए हैं क्योंकि आजकल भुट्टा जो बहुत आ रहा है, मक्का भून करके जब भी खाओ तो उसमें नमक मिर्चा लहसुन ही अच्छा लगता है। तो आप क्या करिए, मोयनीज एक छोटी कटोरी में ले लीजिए, एक टेबल स्पून लीजिए। अगर आपके पास हरी धनिए वाली चटनी है टमाटर तो वो घोल दीजिए उसमें, नहीं है तो आधा चम्मच आप लहसुन नमक मिर्चा उसी मोयनीज में घोल दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी कितनी ज़बरदस्त चटनी बन गई है। उसके संग आप ये चिकन नगेट्स ज़रूर खाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें सामान भी ज़्यादा नहीं लगता है, और गरम गरम आप हैं, बच्चे हैं, सबको खाने में ये बहुत अच्छा लगता। एक बार खाइए और देखिए, इसमें कोई भी ब्रेड रेड क्रम्स नहीं डालने की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा और कुरकुरा चाहिए आप एक चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं
1: जी मैम,
0: अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे बनाइए ज़रूर।
1: वाह, मतलब मुझे तो ये सुन के बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और यही मन हो रहा है लिसनर्स कि अभी जाऊं और अभी बनाऊं, लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं बना सकती हूं, फिलहाल तो मुझे घर जाना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास टाइम है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी किचन के पास से ही हमें सुन रहे हो, तो फटाफट से किचन में जाएं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ज़रूर इसे बनाइए और ट्राई करिए। फिलहाल आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, बस यूँ गए और यूँ आए। स्टे ट्यून्ड।

0: लाखों अरमा और आंखों में है सपने भाई, हमारी आंखों में भी सपने हैं, और वो सपने हैं कुछ अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाने के। और अभी आपने जो सुना, मतलब मैंने तो सुना और मुझे लग रहा था कि मैं इंस्टेंट बनाऊं, पर ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन आइए अब चलते हैं सीधे हमारी मास्टर शेफ़ की तरफ और उनसे दूसरी डिश जान लेते हैं कि वो हमें अब क्या बताने वाली हैं।
1: देखिए, अभी तो हमने आपको चिकन का सिखाया, लेकिन अब हम मटन का कोफ्ता सिखाते हैं।
0: मटन के कोफ्ते,
1: बिल्कुल। सब लोग कबाब तो बहुत खाते हैं, कि टुंडे के कबाब है
0: जी।
1: तो कोई गलावन का कबाब कहता है, कोई सीख का कबाब कहता है, पर आपने कोफ्ता नहीं खाया है। जो पुराने हैं उन्होंने खाया होगा। तो चलिए आज मैं आपको मटन का कोफ्ता सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बस, अब आजकल घर में 3 या 4 लोग रहते हैं, उसी के अनुसार आप 250 ग्राम आप कीमा ले लीजिए मीट का। अगर आपके घर 2-3 लोग ज़्यादा हैं, चलिए तो आधा किलो मटन आप ले लीजिए, और ऐसा लीजिए जो कीमे वाला हो
0: जी मैम।
1: उससे आप कीमे वाला कटा के लाइए, उसमें चर्बी और जर्दी नहीं, वो बाहर जो होता है ना लिबलिबा पदार्थ
0: जी, जी।
1: वो नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मटन ही उनसे लीजिए, और वो तो मोटा कूट के देते हैं, आप मोटा ही ले आइए। उसके बाद अब आप क्या करेंगी, उसको कीमे को आप धो लीजिए क्योंकि बाहर से आया है, और उसको टेढ़ा रख दीजिए कि उसका सब पानी निकल जाए। अब आप इसको क्या करेंगी, मिक्सी में डाल दीजिए, जो कीमा है आप उसको मिक्सी में डाल दीजिए
0: जी मैम।
1: मिक्सी में डाल करके आप इसको चला लीजिए। तो चलाने का मतलब है कि ये महीन खूब हो जाएगा। दुकानदार ने तो कोई कीमा कोट का देता है, लेकिन वो बहुत महीन नहीं होता है
0: जी।
1: लेकिन जब हम मिक्सी में चलाते हैं तो महीन हो जाता है। अब आप मिक्सी से इस कीमे को बाहर निकाल लीजिए, एक बाउल में रख लीजिए। बाउल में रख करके अब आप इसके अंदर 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, नमक अंदाज से डाल दीजिए, हरा मिर्च, हरा धनिया खूब बारीक काट करके इसमें। अब आप हरी धनिया के जो डंठल होते हैं इस समय कितने अच्छे आ रहे हैं, खूब मुलायम मुलायम, खूब महीन महीन करके आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद 1 टेबल स्पून सरसों का कच्चा तेल इसी कीमे में आप डाल देंगे। सब सामान आपने डाला, कीमा आपने मिक्सी से निकाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हरा मिर्च हरा धनिया डाला, और अब उसमें नमक डाला, और 1 टेबल स्पून टेबल स्पून बड़ा है
0: जी,
1: तो आप 1 टेबल स्पून चमचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेबल स्पून की बात, आप उसमें कच्चा सरसों का तेल डाल दीजिए। उधर आप क्या करिए, कढ़ाई में या भगोने में जिसमें भी, आप पानी उबलने चढ़ दीजिए, गर्म होने रख दीजिए। जब खूब पानी खौलने लग जाए तब आप गोले बनाइए हाथ से, जो आपके पास कीमा है उससे आप हाथ से अपने, बहुत बड़े नहीं ना बहुत छोटे, जैसे हम लोग लौकी के कोफ्ते ओफ्ते घर में
0: जी
1: बनाते हैं
0: वैसे मीडियम साइज़
1: के, बस उसी साइज़ के आप गोले बनाइए, बनाती जाइए, और उसी खोलते हुए पानी में आप डालती जाइए
0: जी।
1: आप देखेंगे कोई भी नहीं फूट रहा है, लेकिन बहुत सारे एक संग नहीं डालिएगा, डालती चलिएगा और वो होता चलेगा, एक एक आप उसको निकालती चलिएगा। आप उसको छू करके देख सकती हैं, थोड़ा सा खा करके भी आप देख सकती हैं, नमक अमक कम ज़्यादा हो वो आप अपने अंदाज से डाल लीजिएगा, ठीक है
0: जी।
1: जब सब उबल जाए, आप इधर उबलते जाए, दूसरी तरफ आप गैस पे कढ़ाई चढ़ा लीजिए, या भगोना पतीली कुकर जिसमें भी बनाना है वो बर्तन आप चढ़ा दीजिए। अब उसमें आप क्या करेंगी कि 1 मध्यम आँच का आकार का प्याज मीडियम साइज़ का लेंगी, उसको पीस लीजिएगा काट के, उसी में अदरक लहसुन का 1-1 चम्मच पेस्ट लीजिएगा, वो डाल करके आप सरसों उसमें कुकर में तेल डालिएगा। तेल डालने के बाद 2 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 छोटी इलायची, इतनी चीज़ डाल दीजिए और तड़का दे दीजिए। तड़का देने के बाद आप ये पिसा हुआ प्याज लहसुन अदरक डाल देंगी और इसको भूनना शुरू करेंगी। जब इसमें और कुछ मसाला ज़्यादा है नहीं तो ये बहुत जल्दी तेल छोड़ने लगेगा। जब ये तेल छोड़ने लगे इस समय आप क्या करेंगी कि इसमें 1/2 चाय का चम्मच हल्दी का, 1 पिसा अच्छा मिर्चा कैच का, खूब अच्छा महीन पिसा, वो आप इसमें डाल देंगी। अगर आप थोड़ा चटपटा खाती हैं तो आप थोड़ा मिर्चा और बढ़ा लीजिए। और धनिया, धनिया दो चाय के चम्मच भर भर के इसमें डाल दीजिएगा। और एक से डेढ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसको रंग देगी, उसको आप डाल दीजिएगा। और भुनने, थोड़ा पानी डाल के भुनने दीजिए मसालों को, क्योंकि हल्दी धनिया मिर्चा थोड़ा फूलेगा, फूलेगा तो तेज़ आँच में जलने लगेगा, धीमी आँच में भूनिए। अब इसके बाद आप जो हैं दो टमाटर ले लीजिए, खूब अच्छे लाल लाल पके पके, उनको खूब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और इसको काट करके आप, आपका मसाला अब लगभग भुन ही गया है, आप उसमें डाल दीजिए, डाल दीजिए। फिर पानी का छींटा डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए, नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। अब आप इसको धीमे पकने दीजिए, तेज आंच में मत पकाइएगा, जितना अच्छा धीमा आंच रखेंगी उतना ही अच्छा मसाला आपका भुनेगा। अब आप इसको भून लीजिए, देखिएगा टमाटर एकदम गल गया है, सब मसाला एक सार हो गया है। अब आप क्या करेंगी कि आधा प्याला दही चख लीजिएगा, खट्टा अगर है तो और कम कर दीजिएगा, तीन मतलब तीन एक हिस्सा रखिएगा एक चौथाई का। अगर ताज़ा दही है तो आप एक प्याले पूरा आधा प्याला भर करके फेंट लीजिएगा चम्मच से, और तब इस मसाले में डाल दीजिएगा और चलने और खूब अच्छे से चला के भून दीजिएगा, खूब अच्छे से भूनने दीजिए। जब भून जाए तब आप इसमें जो आपने कोफ्ते बनाए हुए हैं, चाहे तो अलग से तेल में डाल के आप फ्राई कर लीजिए, फ्राई करने से थोड़ा और अच्छा स्वाद आता है। डीप नहीं तलना है, थोड़ा सा तेल डाल करके हल्का लाल लाल साफ कर लीजिए, फिर इसको निकालिए और आप इसको मसाले में डाल दीजिए। मसाले में भी नमक डाल दीजिए और घर का पिसा गरम मसाला डालिए, अगर नहीं है तो बाज़ार का भी आप डाल सकती हैं, ऐसी कोई बंधन नहीं है। एक चाय का चम्मच भर के उसमें डाल दीजिए और इसको धीरे धीरे चलाइए। और जो आपने फ्राइंग पैन में तेल डाल के इसको लाल किया था उसमें थोड़ा तेल लगा होगा, तो आप करिए क्या, उसमें ज़रा सा पानी डाल के उसको गर्म कर लीजिए और इसी कोफ्ते में वापस डाल दीजिए। इस कोफ्ते में डाल के आप चलाइए, आप देखिए कि कितना अच्छा आपका ये कोफ्ता बनता है। मटन कोफ्ता देखने में भी बहुत सुंदर और खाने में तो लाजवाब। अब आप कहेंगी कि जो भगोने में पानी था डाला है तो मीट का तो सत उसमें आ ही गया है, ठीक है ना
0: जी मैम,
1: और ऐसे फेंकेंगी तो ख़राब लगेगा। अब आप क्या करेंगी, उसमें एक प्याज काट के डाल दीजिए, तीन तार जवा लहसुन डाल दीजिए उसमें खड़ा, और गरम मसाला खड़ा दरर के डाल दीजिए, दरर के आप पीस के रखे करिए। जैसे थोड़ी सी एक चम्मच काली मिर्च है, दो चम्मच जीरा है, चार पांच लौंग है, और क्या कहते हैं दालचीनी का एक इंच का टुकड़ा है, जावित्री है, थोड़ी सी सौंफ है, और थोड़ी सी खड़ा धनिया है, और थोड़ा सा खड़ा लाल मिर्च है। इसको आप हमेशा पीस के रखिए रहिए, मिर्च चाहे ना डालिए, मिर्च तो आपके पास अलग से ही है सीड्स वाला, तो आप इनको उस गरम मसाले में डाल दीजिए जो आपका पानी है, और उसको धीमी आंच करके खोलने दीजिए। जैसे ज़्यादा पानी है तो आधा कर लीजिए। अब आप उसमें काली मिर्च डाल करके गरम गरम सर्व करिए, खुद भी पीजिए, सबको पिलाइए। तो देखिए ये आपके लिए एक अच्छी सी अखनी बन के तैयार हो गई, पर हाँ पाए नहीं है उसकी कोई बात नहीं, पर मीट की जो ताकत है वो इस रसे में है। आप खुद भी पीजिए और मजबूत बनिए, शरीर को स्वस्थ रखिए।
0: वाह, मतलब इसे कहते हैं कि हमारे इंडियन किचन में क्या होता है ना मैम, कि हम हमेशा कहते हैं कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता,
1: वेस्ट
0: है,
1: नहीं,
0: आप सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं,
1: और वो हमारे शरीर को सब पोषण देती हैं
0: जी मैम,
1: क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी हैं। खाओ, एक तो जो चीज़ अच्छी होती है तो उस तरफ खाने का मन भी करता है। हमें भूख नहीं होती है तो भी हम कहते हैं लो अच्छा एक रोटी खा ले, अच्छा लगा अगर कोफ्ता तो हम डेढ़ रोटी खा लेंगे।
0: बिल्कुल सही
1: है ना। और ये अखनी अखनी चीजें हैं, बाजार का ये सूप बना के पीने से जो रखे आते हैं 10-10 रुपए पैकेट, उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलना है। तो श्रोताओं मेरा समय हो गया है, अब आप बनाइए खाइए खिलाइए और बना के बताइएगा, कमेंट जरूर दिया करिए कि कैसे लगी ये डिश। तो चलिए आपको मेरा नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच मैम। और भाई मैम ने तो बहुत ही अच्छी सी डिश बता दी लिसनर्स, तो आइए इन्हीं डिश के अच्छे से स्वाद के साथ एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, और अभी आपने सुना मास्टर शेफ से कुछ नॉनवेज जो डिशेस को सुना, एंड जो लोग नॉनवेज डिशेस खाते हैं उनके लिए तो आज बहुत ही बल्ले बल्ले हो गई होगी। बट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, इसीलिए मैं पीछे बैठी थी और मैं सुन रही थी कि किस तरीके से मैम बताती हैं। बट अंशिका खाती हैं, वो भी बहुत ही शौक से, तो मैंने कहा अंशिका आप मास्टर शेफ के साथ बैठो, क्योंकि मैं जब खाती नहीं हूँ ना तो मुझे सुन के भी थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो अंशिका जानती है कि क्या क्यों अंशिका।
6: बिल्कुल मैम, एक्चुअली होता है
5: तो मुँह में जाता है, जब बनता है तो भी मुँह में जाता है, तो सोचो कि जब बनते समय मुँह में जाता है तो मैं कैसे सुन सकती हूँ उसको। खैर कोई नहीं, आप सभी का स्वागत है, प्रीति जी, नागेश्वर जी, महेंद्र जी एंड अंबुज पांडे। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने बताई, मतलब रेसिपीज को लिया, आप लोगों ने दो दो रेसिपीज को लिया एंड एक मीठे को लिया, और अब बारी है हमारे कुछ किचन टिप्स की। तो किचन टिप्स में सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि क्रिस्पी पकौड़े जो होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और क्या ऐसी उसकी कुछ ऐसी टिप्स हैं। तो पकौड़ों के लिए बैटर या घोल बनाते समय हमेशा 1 से 2 चम्मच चावल का आटा अगर आपके पास है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक मतलब जब भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि पकौड़े तल के रख लो तो वो मेसी हो जाते हैं, बट अगर आपने उसको 2 घंटे तक भी रख लिए ना फॉइल में तो ये बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी रहते हैं। समझ में आया?
6: अगर आप चावल का आटा डालेंगे तभी।
5: हाँ, चावल का आटा डालेंगे तभी। और दूसरा आता है कि राजमा और छोले, अगर हम जैसे आज हमारा खाने का मन है और हमको लगता है कि आज हमने उबाले आज हमने उसको भिगोए नहीं थे रात में, तो कैसे होगा, मतलब किस तरीके से जल्दी अगर बनाना हो तो क्या उसके लिए किचन टिप्स हो सकता है। अगर आप राजमा, छोले या काले चने, ठीक है, ये तीनों चीज़ ऐसी होती है कि हमको रात में भिगोने पड़ते हैं
6: जी मैम,
5: वरना वो उबलते ठीक से नहीं है। लेकिन अगर आपको मन कर जाए इंस्टेंट खाने का तो उबलते समय एक चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और क्रीमी उबलते हैं।
6: ओके,
5: मतलब जल्दी अगर आपको चाहिए कि मानो कि आज हमको शाम को खाना है, मतलब आज हमको शाम को राजमा चावल खाने या फिर काले चने खाने, तो हमें एटलीस्ट दिन में तो याद आएगा ही, सुबह तो याद आएगा कि अरे हमने तो रात में भिगोना हम भूल गए थे। तो कोई नहीं है, आपने 2 से 3 घंटे के लिए आपने गर्म पानी में उसको क्या कहते हैं उसको गर्म पानी में उसको भिगो के रख देना है, और शाम को जब आप बनाने चलें तो इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा और 1 चम्मच आपने क्या डाल देना है, बटर, जिससे वो बहुत सॉफ्ट भी उबलेंगे और एक क्रीमिश वाला इसमें स्वाद आता है। दूसरा है कि नींबू से ज़्यादा रस निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे अमित सॉरी सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश ना कजरे की धार, सुनील शेट्टी पर फिल्माया गया। सुनील जी ने अपने ही नाम से एक गाना फरमाइश कर ली थी। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए फ्रॉम MP और आपका स्वागत करते हैं। आपने लिखा है, आर्जुनती मैम नमस्ते। नमस्ते टू यू, कैसे हैं आप? उस्मान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून आज मैम, गुड आफ्टरनून टू यू उस्मान जी। आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम कॉलेज गोंडा में। महेंद्र दीपन फ्रॉम राजस्थान और लिखा है, गुड आफ्टरनून नमस्ते आर्जुनती मैम जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया झकास बिंदास जबरदस्त। अब आप बताइए आप कैसे हैं। और आइए एंजॉय करते हैं हमारा अगला गाना। अगला गाना है सुपनानी फिल्म से समरीन जी की फरमाइश, माहिरू दे सुकून। सुनते रहिए।

अब जैसा कि मोहब्बत के बाद कहीं ना कहीं दूरी आती है, दिल में थोड़ा सा इंसान बीमार होता है, दिमाग ख़राब होता है, उदास होता है, और ऐसे हमारे गाने की लाइंस भी चल रही है, क्योंकि अभी तक आप इंजॉय कर रहे थे बेहद ही रोमांटिक, बेहद ही प्यारे से प्यार भरे नगमे। लेकिन अब भैया अगली फरमाइश जो है वो थोड़ा सा आपके दिल को दर्द देने वाली है, और ये वो गाना है जिसको सुनकर आपने मस्ती बहुत ज़्यादा की है। हालांकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप इसको सुनकर सैड होने लग जाते हो, वो अलग बात है, लेकिन जब आप छोटे थे ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे क्योंकि हम बड़े मस्ती खोर थे। फिलहाल हम आपको बता दें अगली फरमाइश हमारे पास है देवी प्रसाद जी की, और अभी आप सुन रहे थे हमारे समरीन जी की फरमाइश श्रेया और दर्शन राठौड़ की आवाज़ में। संजीव चतुर्वेदी ने लिखे थे इसके बोल और संजीव दर्शन ने दिया था इसको संगीत। सुपर नानी से आप एंजॉय कर रहे थे, एंड हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप से हैं, और सीतापुर से प्रेम मौर्या जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गई रीना शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर और गाते हैं तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। ये उन लोगों के लिए डेडिकेट करते हैं हम जो अभी तक चैट बॉक्स में नहीं आए हैं, ये जानते हुए कि उनकी आरजी उन्नति 3 से 4 आ जाती है, पता नहीं वो कहाँ है, बताइए बताइए, जल्दी आइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, हाजिरी लगाइए, अपनी फरमाइशें भेजिए, क्योंकि ये है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा में। तो राजनीति 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली पर।

और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। उदित नारायण, अलका जी और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ में आप इंजॉय कर रहे थे। जतिन ललित का संगीत समीर साहब के लिखे हुए बोल थे, कुछ कुछ होता है फिल्म से आपने इंजॉय किया है। और ऑफकोर्स महेंद्र जी लिख रहे हैं, ये कौन होते हैं जो इतने सैड सॉन्ग सुनते हैं। या जी ये हमारे बेहद ही ख़ास, बेहद ही प्यारे देवी प्रसाद जी हैं जिन्हें सैड नगमे कुछ ज़्यादा पसंद हैं। और हमारे कुछ और भी लिसनर हैं जिनमें एक हमारे सुरेंद्र यादव जी भी हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा हमसे सैड सॉन्ग की डिमांड की। और सैड सॉन्ग की डिमांड एक ऐसा डिमांड है जो आई थिंक मुझे सब जगह मिलता है, फिर चाहे वो इंस्टा हो, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, सैड सॉन्ग्स की डिमांड बहुत हाई रहती है और जितना पुराना गाना उतना ज़्यादा दिल को छूता है। नाज़िया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और आपने लिखा था भैया हमारे लिए, गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड बाबू अंसारी फ्रॉम बाराबंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम जी, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका स्वागत कर सकते हैं। एनामित जी हम आपसे चाहेंगे माजरत क्योंकि भैया यहाँ पर आप नहीं भेज सकते हैं, इस शो का पहला रूल है कि आपको करना पड़ेगा कॉल क्योंकि ये है कॉल अट्यून गोंडा। एंड इसके बाद हमारे अंबर गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका भी स्वागत करते हैं, पहले मेरा स्वागत करो तब हम जुड़ेंगे। अजी आप जुड़ गए हैं, अब हम स्वागत कर लेते हैं आपका आपके चैट बॉक्स प्लस आपके अपने कॉल ट्यून में। फिलहाल आइए चलते हैं, ट्यून करते हैं हमारे अगले गाने को, अगला सॉन्ग, अगली फरमाइश है हमारे रिजु जी की, तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारी सभी हाजी की फरमाइश को। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे थे रिजु जी की फरमाइश, ये प्रेम मोल लिया। हिमेश रेशमिया का म्यूजिक कुमार साहब के लिखे हुए बोल थे, श्रेया और निहाल की आवाज में आपने एंजॉय किया है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और महेंद्र जी, आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? हम और सैड, दूर दूर तक हमारा नाता ही नहीं है साथ में। फिलहाल मुस्तफा जी जुड़ गए हमारे साथ फ्रॉम साउदी, और आपका स्वागत करते हैं हम कॉल ट्यून गोंडा में। आइए एंजॉय करते हैं एक बेहद ही रोमांटिक गाना अगेन, और गाने का नाम है कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। आए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गाना है, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में है। एंजॉय करते रहिए। समीर साहब ने बोल लिखे हैं, नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया है।

और ये हवाओं में मोहब्बत की जगह पर अफवाहें कहां से उड़ रही हैं कि आरजी उन्नति और सैड रहती हैं। अजी हम 99.99% सिर्फ खामोश रहते हैं क्योंकि मुझे बोलने में बड़ा आलस आता है। जब तक काम ना हो तब तक मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, बस इतनी ही फर्क होता है मेरे अंदर और मेरी खामोशी को। आपने सैडनेस समझ लिया, ये तो बड़ी गलत बात है। फिलहाल आइए चलते हैं, इंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को। अगला गाना हमारे पास आया है MP से, यानी कि मध्य प्रदेश से। एनी आइडिया किसका हो सकता है? आई होप आपने लगा दिया होगा क्योंकि हमारे साथ MP से इस वक्त जुगल किशोर वर्मा जी जुड़े हैं और उन्होंने फरमाइश की है उस गाने की जिसको सुनने के बाद आपका दिल हो जाएगा गार्डन गार्डन, क्योंकि आवाज है आपकी अपने पसंदीदा सिंगर की। लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगी वो सिंगर कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन गाने का नाम है तेरे चेहरे में वो जादू है। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने की उस बार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: भैया जुगल किशोर जी ने फरमाइश कर दी थी बेहतरीन और उम्दा लगमे की आवाज थी हमारे किशोर दा की, इसीलिए मैंने कहा था आप सबकी पसंदीदा सिंगर की आवाज है। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आया है उत्तराखंड से, उत्तराखंड में हमारी रहती है रीना शर्मा जी और उन्होंने भेज दिया है हमें गाना नैनो वाली ने। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के आपका एक बहुत ही जबरदस्त गाना। लेकिन उससे पहले हमारे अरविंद जी की एंट्री हो चुकी है चैट बॉक्स में और आपका स्वागत करते हैं अरविंद जी। आपका मैसेज मुझे नहीं मिल पाया था, इसके लिए माजरत, माफी चाहेंगे तहे दिल से। आई होप आप मुझे माफ कर देंगे और आइए आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और लगातार आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉलर ट्यून को, एंजॉय करते रहिए। ये फरमाइश हमारी रीना शर्मा जी की।
1: हाय, ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
2: चोरी के शेर है आप तो कुछ यूं कहते।

0: पूरी होंगी उनकी सब फरमाइशें, एक भी हमसे न टाली जाएगी। आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी।
1: प्यार के कैदी जरा संभल जा।

दोस्तों आज है जन्मदिन, यानी कि आप सबको मिलेगा केक। लेकिन केक के लिए जाना कहाँ है ये बता देते हैं। और केक का पहला रूल होता है कि आपको हैप्पी बर्थडे विश करना होता है। तो जरा शुरू हो जाइए चैट बॉक्स के अंदर हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि आज है भैया हमारी अरमान जी के बहन की यानी कि अलीशा जी का जन्मदिन। तो अगर किसी को केक खाने का शौक है या फिर केक खाना पसंद है या आपको चाहिए तो चैट बॉक्स में जरा थोड़े से हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाए। जी हाँ, फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। आप एंजॉय कर रहे थे रीना शर्मा जी की फरमाइश, और अगला गाना हमारे ऑफकोर्स अलीशा जी के लिए ही होने वाला है, बिकॉज आज है उनका बर्थडे। तो रेडियो ज्ञान असली की तरफ से और अपनी आशुति की तरफ से आपको हैप्पी वाला बर्थडे।

और ये बर्थडे वाला सॉन्ग आप एंजॉय कर रहे थे हमारे अरमान जी की फरमाइश पर, क्योंकि भैया आज अलीशा का जन्मदिन है और हम सब की तरफ से आपको हैप्पी वाला बर्थडे। हमारी नाजिया अंसारी जी कह रही थी हम नहीं करेंगे बर्थडे विश क्योंकि उनको कोई विश नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने भी कर दिया है ऐसा मुझे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चार चार आंखें हो चुकी हैं अब तो मेरी, अब तो मुझे दिख ही रहा है। फिलहाल के लिए हमारे महेंद्र दीपन जी ने भी विश किया हैप्पी बर्थडे अलीशा जी और कहा है लाओ अब केक। अरे अलीशा जी को काटने तो दो केक, मेरा बर्थडे थोड़ी ना है जो मैं काट के दे दूं अभी आपको। सबर रखो, तनिक रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अंबर जी लिख रहे हैं हमारी तरफ से भी कोई बोल दो। चलो बोल देते भैया हैप्पी बर्थडे हमारे अंबर जी की तरफ से। बाबू अंसारी जी ने बाराबंकी से आपको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। और हमारी नाजिया जी लिख रही हैं सब केक खाने के चक्कर में आ चुके हैं। चलिए इसी बहाने सही, लेकिन पार्टी तो ऐसी ही होती है बॉस, पार्टी में जब तक लोग ना आए तब तक क्या पार्टी क्या बर्थडे। और इसी के साथ आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग ये वादियाँ ये फिजाएं और ये फरमाइश है हमारे उस्मान खान जी की, तो जरा सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अरविंद जी आप अपना ख्याल रखिए, आप जहां इस वक्त हैं वहां से आपको केक नहीं दिया जा सकता, नहीं तो डॉक्टर हमको भी आपके साथ साथ हॉस्पिटल से बाहर कर देगा, है ना। तो फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए, आपके लिए हम नारियल पानी भिजवाते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे बहुत ही प्यारा सा नगमा, ये वादियां ये फिजाएं। और हम आपको बता दें भैया, ये गाना हमारे उस्मान खान जी की फरमाइश का था, ब्लैक एंड वाइट था लेकिन बेहद ही खूबसूरत था। एंड इसके बाद विकास तिवारी फ्रॉम उन्नाव हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो बरेली वाली मैम जी, कैसी हैं आप? हम भी आ गए आपके शो में, आइए आपका स्वागत करते हैं। और मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड अरविंद जी का कहना, भैया हमको दवा खिला दो, केक नहीं खाना, तो जरा आप आ कीजिए, उसके बाद आपको दवा खिला दी जाएगी और आप आराम कीजिए। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश, जो कि हमारी बाराबंकी से आई है। बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबू अंसारी जी, और ये उनकी फरमाइश है, तो जरा इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, आप सुनते रहिए कॉलर ट्यून को। नाम आपको बता दें भैया कि अलका जी कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल को पेश कर रहे हैं। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। और आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा 89.6 FM रेडियो ज्ञान स्लीपर।

और आप सुन रहे थे बाबू अंसारी जी की फरमाइश। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। वक्त को मद्देनजर रखते हुए एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी की फरमाइश हमारे पास आई है, रघुपति राघव राजा राम। और आप एंजॉय करें क्रिस्पम से, क्रिश 3 से एक्चुअली, प्रियंका और ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया गाना। और हम मिलते हैं इस गाने के उस पर रमेश कुमार रई साहब और हमारी अलीशा जी को हैप्पी बर्थडे विश किया है हमारी रीना शर्मा जी ने फ्रॉम उत्तराखंड। एंड इसके बाद है आपकी अपनी फरमाइशें, गुलाबशाह जी, महेंद्र जी, राजू सलमानी जी, सुरेश जी, अरविंद जी और अनुष्का जी। लेट्स सी इस वक्त चैलेंज कौन जीता है, वक्त या मैं।

हां जी, और आप एंजॉय कर रहे थे रघुपति राघव राजा राम कृष्ण 3 से एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी की फरमाइश पर। और आइए बढ़ते हैं अगले हाई बीट गाने की तरफ, क्योंकि रमेश कुमार जी ने फरमाइश कर दी है मुकाबला मुकाबला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए जैसे आप अभी कर रहे हैं।

अंजी और आप एंजॉय कर रहे हैं मुकाबला, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, फरमाइश में। और आप सुनने जा रहे हैं हमारे रईस साहब की फरमाइश, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। आए हाय हाय हाय, क्या बात है DDLJ से आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया गया गाना लता जी और उदित नारायण की आवाज़।

एंजॉय कर रहे हैं, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। और हमारे महेंद्र जी कह रहे हैं, मैम आपके प्रोग्राम में मेरी फीलिंग भटकती रहती है, लेकिन कहाँ भटक रही है ये, किस खंडर के अंदर है आप बताइए जरा मुझे। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, बेहद ही पसंदीदा गाना है मेरा, तू फिजा है, एंजॉय करते रहिए। बहुत ही प्यारा सा नगमा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, करिश्मा कपूर जिनका नाम है करिश्मा कपूर, उनके ऊपर फिल्माया गया गाना।

ये फरमाइश थी हमारे गुलाब शाह जी की, जैसा प्यारा नाम उतना ही प्यारा गाना की फरमाइश सोनू निगम मलका जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे। और ये गाना बहुत ही कम सुनने को मिलता है, बहुत ही अंडररेटेड गाना था। एंड नाजिया जी लिख रही हैं, मैम कुछ शर्म आ रही है, तो ना शर्माए का बताइए जरा। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग है हमारे पास महेंद्र दीपन जी का, जो कहते हैं दिल फिर भी तुमको दिया जा याद करोगे। चलिए आपका दिल लेते हैं और आपको याद करते हैं, एंजॉय करते हैं कॉलर ट्यून गुंडा में आपकी अपनी फरमाइश को। और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि हमारे राजू सलमानी जी की, सुरेश जी की, अरविंद जी की और अनुष्का जी की बाकी है।

अरे मोरी भैया, हमको कैसे नजर नहीं आएंगी आप रोशनी रावत जी। आप आई, रोशनी आई, बाहर आई, फूल आई, खुशबू आए, और आप एंजॉय कर रहे तुम्हारे महेंद्र जी की फरमाइश को। वक्त को मद्देनजर रखते हुए गाना हमें यहीं रोकना पड़ेगा, माफी चाहेंगे आपसे। लेकिन आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। राजू सलमानी जी की फरमाइश है, तो आप एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा में हमारी अगली फरमाइश को। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार जो कि आपके सुरेश जी की और अरविंद जी की होने वाली है।

और ये गाना था हमारे राजू सलमानी जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। और भैया से बचे हैं 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर प्ले करने हैं 3 गाने। व्हाट अ कॉम्पिटिशन माय बॉस। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए हमारे सुरेश जी की फरमाइश को। हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि अरविंद जी की है। और उन्होंने कहा था कि आप अपनी पसंद का कोई गाना सुना दीजिए, तो हम आपको हॉरर फिल्म से सुनाने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, जो भी कसमें खाई थी हमने। अगर यह आपको गाना पसंद आया है तो थोड़ा चैट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं तो हम गाना चेंज करते हैं।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, जो कि हमारे अरविंद जी की फरमाइश है। और जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको सुनाएंगे जो भी कस्में खाई थी हमने, और ये गाना हमारे अरविंद जी के साथ साथ गया है भैया हमारे विकास तिवारी जी को भी, क्योंकि आज उन्होंने अपने गाने की फरमाइश नहीं की थी और कहा था कि मैं सिर्फ सुनूंगा। तो आइए एंजॉय करते हैं मिल करके इस बढ़िया से गाने को। बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा है। हॉरर फिल्म को गाने वैसे, हॉरर फिल्मों के गाने वैसे भी काफ़ी प्यारे होते हैं, और हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि शब्द कौन सा बोलना था।

और ये फरमाइश थी हमारे अरविंद जी की, और डेडिकेटेड था विकास जी को, अरविंद जी को, सभी लोगों को। फिलहाल आइए चलते हमारे आखिरी फरमाइश की तरफ। अनुष्का जी की फरमाइश हमारे पास आ गई है और इस गाने को हम डेडिकेट करते हैं अपने अंबर गोयल जी को, नागेश्वर धाकर जी को और आप सभी लोगों को जो मेरे साथ पिछले एक घंटे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी फरमाइश हम तक नहीं भेजी थी। ये गाना सभी के लिए डेडिकेटेड है एंड इसी के साथ वक्त ने कर दिया इशारा कि अब आपसे विदा लेने का टाइम हो चुका है, तो मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, कल मुलाकात होगी आपसे आपकी कॉलोनी गोंडा में। सुनना मत भूलिएगा, एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम। आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शाम के 5 बज चुके हैं और घड़ी ने इशारा कर दिया एक बेहतरीन शो की तरफ। नाम है गोधली। इसी गोधली में हम कुंडा की अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं, उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई बातें करते हैं, क्योंकि वो बातें हमारी दैनिक जीवनचर्या में बहुत काम आती है। तो आज एक ऐसे विषय पे बात होने वाली है जिसको एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने के लिए डेडिकेट किया जाता है और इसका रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ज्यादा गहरा नाता जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोषण की, और सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है पोषण में जो इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस टीनएजर्स में, गर्भवती महिलाओं में और बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों में, स्पेशली जो बहुत ज्यादा ऐसे पॉपुलेशन है जो बुजुर्ग हैं, या जैसा कि मैंने बताया गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, इसके अलावा एक आम इंसान में पोषण नहीं है तो ऑफ कोर्स कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, हजारों बीमारियां घर कर लेती हैं, बड़ा खर्चा हो जाता है। इन सभी चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है पोषण की अगर जानकारी होगी तो शायद इन सभी चीजों से बच जाएंगे। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में पोषण विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमा मौर्या मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर से। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में।
2: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: उसके बाद जब मोटापे पे और पतलापे पे बात होती है
2: जी बिल्कुल,
1: कि बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सलूशन मिलने वाला है, और मुझे लगता है कॉमन ये आपकी भी प्रॉब्लम है, ये मेरी भी है
2: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जब सेंस में ये आता है कि सिर्फ जिम जाना या क्रीम अच्छी सी लगा लेना, साफ सुथरे रहना, इतना काफी नहीं, मतलब सबसे बेसिक होता है कि हम ले क्या रहे हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात,
1: करेक्ट, उसमें पोषण क्या है। तो सितंबर बाकायदा साल का ऐसा महीना डेडिकेट किया गया है जिसको पूरे पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ही होता है कि आखिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त सा विवरण आप अपने बारे में, अपना परिचय दे दिए, क्योंकि हमारे श्रोता पहली बार आपको 89.6 FM पर सुन रहा है।
2: जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर रमा मौर्या माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ, और जो मेरा विभाग है वो है होम साइंस एंड कम्युनिटी स्टडीज़, और मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को, और एक विषय विशेषज्ञ के तौर पर भी मैं काम करती हूँ जिसमें मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन से भी डील करती हूँ। तो इस तरीके से मैं लोगों से सीधे जुड़ पाती हूँ और लोगों को न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्व करने में मदद करती हूँ।
1: बचपन में जैसे हम लोग किसी टीचर को देखते थे कि वो मैथ्स वाले टीचर, ये अंग्रेजी वाली मैडम, आपको देख के कोई नहीं कहता पोषण वाली मैडम आ गई?
2: जी बिल्कुल, कहते हैं कि मैम मेरा डाइट प्लान बना दीजिए।
1: डाइट प्लान के लिए, अरे इसके लिए तो लाइन लगी होती होगी।
2: जी सर बिल्कुल, कहते हैं कि मैम मेरा डाइट प्लान बना दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोटे होना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं पतला होना चाहता हूँ। तो हमारा ये ऐसा ही चलता रहता है, हमारा सब्जेक्ट भी है और हम इस चीज को काफी इंजॉय भी करते हैं और आगे काम भी करते हैं हम इस पर।
1: वाओ, तो ये आप एंजॉय करती हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अब जैसा कि मेरा विषय से संबंधित पहला प्रश्न था कि आखिर इतनी इम्पोर्टेंस पोषण को क्यों?
2: पोषण को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम खुश होते हैं, कहते हैं भोजन खा लो। हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे हो गया, हम कहते हैं भोजन बना दो। बाहर से आए, कहते हैं भोजन करना है।
1: करेक्ट,
2: किसी के यहाँ जाते हैं कहते हैं कि अब पानी लाओ, खाना लाओ, चाय लाओ।
1: करेक्ट,
2: तो ये सीधा हमारे, हम कहीं भी पूरी दुनिया घूम ले हम, लेकिन भोजन के ही आसपास घूमते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि लेकिन आज का जो हमारा दौर है वो बहुत बदल गया है, वो बहुत बदल गया है। आज का दौर हमारा बहुत बदल गया है। हम कोई है जो मोटापे से जूझ रहा है, कोई है जो बहुत पतला है, एक ही घर में दोनों वैरायटी देखने को मिलती है। और स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो हमारी किशोरियां हैं, जो दूध पिलाती धात्री महिलाएं हैं, उनको अगर देखते हैं तो उनका अलग प्रॉब्लम होता है। जैसे उन्हें कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, जैसा उनका शरीर पोषित होगा उनका बच्चा भी वैसे ही पोषण पाएगा। और इसीलिए पोषण पर खासतौर से सितंबर के महीने में इसीलिए इस पर जोर दिया गया, क्योंकि जो महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं, जो एनीमिया से जूझ रहे हैं, जो कल आने वाले बच्चों को जन्म देने वाले हैं, तो वो उनसे कैसे निपटें। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जो दूध पिलाती धात्री महिलाएं हैं, वो कैसे योजनाओं का लाभ उठा पाएं, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया 2018 में पोषण सप्ताह। लेकिन इसको उन्होंने जब देखा कि इसका बेनिफिट क्या क्या है, तो उन्होंने इसको पूरे महीने मनाने के लिए आगे बोल दिया। तो हम इसको 1 से 30 तारीख तक मनाते हैं, और इसमें हम पोषण के लिए जितना भी अवेयरनेस होता है वो उसके बारे में बताते हैं। जैसे हम हेल्दी भोजन कैसे लें, हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारी जो किशोरियां हैं, जो जिनको आयरन की स्पेशली कमी है, हर महीने उनको इस प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, और जो हमारे दूध पिलाती और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो कैसे योजनाओं का लाभ ले पाए, उचित पोषण मिल पाए, बच्चे का विकास हो पाए, तो इन सब चीजों के लिए इस पर इतना ज्यादा

0: दिया जा रहा है।
1: तो बड़े अच्छे से आपने बड़े ही सरल शब्दों में बता दिया कि भाई जब प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हुआ कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर हम भारत में बात करें तो ऐसे कई आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले प्लस डराने वाले हैं, जिसको लेकर के लगता है कि इसकी जागरूकता भी और ज्यादा फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी बहुत जरूरी है।
1: और जिस पर आपने कहा कि भाई हफ्ते से बढ़कर के पूरे माह की बात हो गई, पहले सप्ताह के रूप में मनाया जाता था, पूरे माह के रूप में मनाया जाता है, और मुझे लगता है सुनने वालों आपको पूरे साल भर के रूप में मनाना है, इसको हर दिन मनाना है ताकि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल आपको मिल सके। अच्छा, जैसा कि हमारा ये आज का विषय है स्वस्थ पोषण उज्जवल भविष्य, सो पहला जो ख्याल आया मुझे लगता है दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि एक आम इंसान की भाषा में कहें तो आज का जो खान पान है हमारे कल के भविष्य को तय करता है, कैसे ये आपसे जानना है।
0: जैसे हम है ना, देखते हैं अपने आस पास, एक मान लीजिए हमारा शरीर एक इमारत है, तो अगर उस इमारत की नींव कमजोर होगी तो इमारत कितने दिन तक टिकेगी, जैसा उसमें सीमेंट लगेगा, जैसा उसमें ईंट लगेगी उसका वैसा, आपने शुरू में ही बताया था कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा।
1: Correct.
0: और हमारे पहले के लोग कहते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन।
1: wow.
0: अगर इसको देखें तो हम समझते हैं कि आपने पूछा कि क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: हमारा खाना, हमारा पोषण, हमारा न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है कि हम अगर उचित पोषण, अच्छा थाली, रेनबो थाली, कलरफुल थाली जिसमें सब्जियां, फल, दूध, दही, अंडे ये सारे चीज लेंगे तो हमें दवाइयों से हम बचे रहेंगे। हमारा शरीर उसी तरीके से स्वस्थ होगा, और एक स्वस्थ शरीर पूरा परिवार जो होता है। अगर हम आज अपनी थाली में सिर्फ स्वाद ढूंढेंगे, जैसे हम तले भुने चटपटे खाने खाते हैं, और जैसे फास्ट फूड खाते हैं, पैकेट में जो चिप्स कुरकुरे और ये सब बच्चों को पकड़ा देते हैं, ऑब्वियसली वो चटपटी होती हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन तो होता नहीं है कुछ। तो अगर हम वैसे कचरा भरते जाएंगे तो हमारा आउटपुट भी कचरे जैसा ही होगा।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: इसीलिए हमें अपने थाली पर ध्यान देना चाहिए, घर के पारंपरिक भोजन का प्रयोग करें, इससे आने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम बचे रहेंगे। जैसे अगर हम ये सब कचरे, ज्यादा तेल, जो स्पेशली ज्यादा तेल की बात हम रिफाइंड तेल की कर रहे हैं, ज्यादा चीनी, तो ये जल्दी हमें बीमार कर देंगी। और जल्दी बीमार करने का मतलब कि ये एक दो दिन की बात नहीं होती है, ये जल्दी धीरे धीरे शरीर को खत्म करते हैं। जैसे धीरे धीरे नमक ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा, चीनी ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज, आजकल तो बच्चे भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें अपना इस पोषण थाली जो है हमारी उसको मेंटेन करना होगा।
1: यानी आपने सिद्ध कर दिया कि भाई आज का जो खान पान है हमारे कल का भविष्य है, जैसा इनपुट आज हम कर रहे हैं वैसा आउटपुट हमको
0: कल मिलने वाला है।
1: कल मिलने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम चाहते हैं एक अच्छा मन, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा करियर, तो शायद जब शरीर साथ देगा तो मन साथ देगा, मन खुश होगा तो हर पल हम खुलकर जिएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हम सभी जो है पोषण पर जोर दे रहे हैं, जिसको आपने बता भी दिया। अच्छा, अगर मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बच्चे के जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं यानी गर्भावस्था से 2 साल तक का मान लीजिए, सबसे जरूरी माने जाते हैं। इस दौरान जो है पोषण की कमी आखिर भविष्य पर उसका क्या असर डालती है, मैं ये जानना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल सर, जो हम देखते हैं ना कि माता है एक, और वो अगर कुपोषित है, जो एक गर्भवती माता है और वो कुपोषित है, तो उसका बच्चा स्वस्थ नहीं पैदा होगा। उसमें जरूर उसकी डिलीवरी पहले हो जाएगी माँ की, और बच्चा लो बर्थ वेट हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम से उसे जूझना ही पड़ेगा। इसीलिए पोषण माह पर इतना ज्यादा जोर भी दिया गया कि कम से कम जो हमारी किशोरियां और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लोग स्वस्थ रहें और एक आने वाले स्वस्थ भविष्य को तैयार कर सकें। तो अगर हम देखें तो हमारा चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि जो बच्चे का जन्म लेने से पहले, यानी जब माँ गर्भवती है, उससे शुरुआत से जन्म तक का जो 1000 का दिन होता है उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं।
1: ओके।
0: मतलब कि जो, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समय होता है, इसमें 1000 दिन, इसमें बच्चे का 85% 85% दिमाग जो होता है वो डेवलप होता है। जो रेस्ट का बचा हुआ वो पूरा जीवन चलता रहेगा, लेकिन मेजोरिटी जो होती है बच्चे के दिमाग के विकास की वो 85% इसी ड्यूरेशन में होती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है, और बच्चे की लंबाई, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके सीखने समझने की क्षमता, इस सब की नींव इसी में पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और वह खूब पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करे, तो हमें पोषण की शुरुआत माँ के गर्भ से ही करनी होगी। और हम 3 महीने में जब चेकअप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। महिलाएं उसको ले तो आती हैं सर, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करती हैं। और जो वो फोलिक एसिड बेसिकली वो दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है, न्यूरॉन्स बनते हैं उस समय, चीजें तैयार हो रही होती हैं, तो महिलाएं उस समय लापरवाही बिल्कुल ना करें। वहीं से बच्चे के भविष्य की नींव पड़ रही है। फोलिक एसिड आयरन जरूर लें अपने डाइट में, संतुलित भोजन करें, और माताएं जो जन्म दे चुकी हैं बच्चे को 6 माह तक स्तनपान जरूर कराएं। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमारे कम्युनिटी साइंस की भाषा में। तो क्योंकि हम कम्युनिटी साइंस को डील कर रहे हैं, तो ये हमारे कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आज आपके बीच में इन चीजों को साझा भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें उज्जवल भविष्य की शुरुआत करनी होगी।
1: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही आपने कि इससे हमको अब शुरुआत करनी होगी, और ये हमारी कम्युनिटी की, हमारे समुदाय की प्रॉब्लम है। और इसी के साथ में, अच्छा ये बात छोटे बच्चों की होगी, अगर मान लीजिए कोई 4-5 साल का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, अक्सर हमने अपने घर में देखा, मेरा खुद का भी ये था मसला कि नहीं खाना है घर का खाना, बाहर के चिप्स ही पसंद आ रहे हैं, टकाटक ही पसंद आ रहा है, और न जाने क्या क्या
0: ऐसा होता है बच्चों को, क्योंकि वो इतनी टेम्पटिंग चीजें बनाई ही जाती हैं कि बच्चे उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Correct. और एडवर्टाइजिंग भी इतनी हाईली होती है उनकी कि उसको बच्चे देख के तुरंत उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पापा मुझे ये दिला दीजिए, मामा मुझे ये दिला दीजिए। Correct. और पेरेंट्स उनके लाड प्यार में हम दिला भी देते हैं बच्चों को।
1: मतलब आपका भी क्या सुझाव है, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि ऐसे में मदर या फादर जो भी उनके लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ चॉकलेट्स मिला सकते हैं, कुछ रंग बिरंगा हेल्दी जो फूड आइटम्स होते हैं उसको डाल सकते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा उससे भी अट्रैक्ट किया जा सके।
0: जी बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे चॉकलेट तो हमारा पारंपरिक कुछ था नहीं, मतलब चॉकलेट को तो हम बाद में इंट्रोड्यूस किए, लेकिन अगर हम देखें कि बच्चों को, आपने कहा रंग बिरंगा, तो हम बच्चे हमारे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं खाने में, लेकिन अगर हम उसको क्यूट प्रिपरेशन करें, जैसे सब्जियों को थोड़ा क्यूट काट दें, मतलब उसकी कटिंग थोड़ा अट्रैक्टिव बना दें,
1: आपका नाक बना दे,
0: आपका नाक बना दे, और उनको बोले कि आप खा लो इसको, ये बहुत मजा आएगा खाने में, तो वो डेफिनेटली खाएंगे। और जैसे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उसका दूसरा रूप बना करके, मतलब साग नहीं खाएंगे बच्चे, तो उसको आप साग को चॉप करके और उसको आटे में गूंथ करके और बच्चों को उसको रोटी के थ्रू खिला दो आप। तो बहुत सारी ऐसी अल्टरनेटिव चीजें हैं जो हमें बच्चों को सप्लीमेंट लेने से बचाएंगी। हमारे जो बच्चे हैं आज, वो हमारा भारत एक्चुअली 2 चीजों से डील कर रहा है, एक तो कुपोषण से डील कर रहा है, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन से डील कर रहा है, और इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को चाहिए चटपटी चीजें, तो बच्चे उसी की तरफ भागते रहते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी बात है आपने कही कि ऑल्टरनेट्स हमको देने होंगे, और मुझे लगता है रंग बिरंगी सब्जियों से ज्यादा और क्या बेहतरीन होगा, पीले में भी आ रहा है और लाल में भी है, टमाटर भी है, मतलब जैसे मैंने देखा है कई बार ऐसे, शायद आपने भी स्क्रॉल करते हुए रील्स में भी देखा होगा, कई माएं ऐसे बड़े क्रिएटिवली बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा क्यूट प्रिपरेशन,
0: क्यूट प्रिपरेशन करके बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से उसको खिलाया जा सकता है, फलों को भी इंटरेस्टिंग तरीके से खिलाया जा सकता है। जैसे हम आइसक्रीम बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली दिला देते हैं, बच्चा रो रहा है, ठीक है बेटा हम आइसक्रीम दिला देते हैं, लेकिन उसमें जो प्रिजर्वेटिव, जो कलर पड़े होते हैं, वो कितने हार्मफुल होते हैं, और एम्प्टी कैलोरी, वो पूरा शुगर होता है। तो क्योंकि अवेयर होना पड़ेगा, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, और हमारे बच्चे के भविष्य की बात है, और हमारा पहले के जैसा लाइफस्टाइल तो रह नहीं गया है, और हमारे बच्चों का तो बिल्कुल नहीं रह गया है, तो इन सब सारी चीजों को हमें ध्यान देनी होगी। हाँ, रंग बिरंगे फलों को आप उसे क्यूट सा काट करके दे दीजिए, जैसे पपीता है तो उसको स्टार में काट के दे दीजिए, बच्चों को स्टिक में लगा कर दे दीजिए कि आप इसको खेल खेल के भी खा सकते हैं, तो वो बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से वो खा भी लेगा,
1: खा लेगा, करेक्ट,
0: और उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, इस तरीके से वो सप्लीमेंट लेने से भी बच जाएगा, उसको सप्लीमेंट नहीं देना पड़ेगा।
1: बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत बेहतरीन। ये बात रही बच्चों की, लेकिन बात एक आती एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन

0: बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इस पे कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी से जुड़ा प्रश्न ये है कि पोषण की कमी अगर सिर्फ बच्चों में तो होती नहीं है बल्कि गर्भवती महिलाएं हो गई, किशोरियां हैं, इनको भी प्रभावित करती हैं। सो एनीमिया की जब बात करते हैं मैम, तो एनीमिया से बचने के लिए उन्हें अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए?
1: स्पेशली हमारी किशोरियों की अगर हम बात करें तो एक तो उनके माहवारी का समय, वो उतना ब्लड लॉस जाता है, वो तो जाना ही है, वो तो नेचर का प्रोसेस है, वो तो होना ही है।
0: करेक्ट।
1: लेकिन हम इसको सही कर सकते हैं, हम एक खान पान से सही कर सकते हैं इसको हमारे। और एक बात ये है कि हम बोलते हैं ना कि हम सप्लीमेंट ले लेंगे, लेकिन सप्लीमेंट तो एक अदर ऑप्शन है कि आपको जब हो गई कमी तो वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सप्लीमेंट ना लेना पड़े। हम पहले से ही जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: करेक्ट।
1: तो अगर हम उस चीज से बचे ही रहे तो हमें वो सप्लीमेंट और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो जितना भी हमारे लोकल में सब्जियां हैं, स्पेशली इधर का जो हमारे बेल्ट है, जो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, ये सब तो ज्यादातर वेजिटेरियन है। तो अगर वो वेजिटेरियन में देखें तो अपने पूरक आहार में वो शामिल कर सकते हैं, जैसे मोटे अनाज, उसमें भी आयरन होता है, भुना चना और गुड़ को एक साथ करके खा सकते हैं।
0: okay.
1: हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया और मेथी हो गया, इन सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। और वो जो है उसके साथ साथ विटामिन सी का जरूर सेवन करें, जैसे आंवला ले लें, किसी दिन संतरा, किसी दिन मौसमी और किसी दिन वो अमरूद ले लें। तो इससे क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो आयरन के अवशोषण की क्षमता को 70% बढ़ा देता है। और एक चीज जो बहुत अवॉइड करने वाली है कि खाना किसी को भी, मेल हो, फीमेल हो, किशोरियां हो, माताएं हो या हम आप जो भी हो, किसी को भी चाय या कॉफी आधे घंटे पहले खाना खाने के और आधे घंटे बाद के बाद ही लेना चाहिए, नहीं तो आयरन के जो अवशोषण, जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसको वो रोक देता है।
0: तो मतलब ये बड़ी छोटी छोटी सी लेकिन जरूरी बात है,
1: जरूरी बातें हैं। और कोशिश करें कि सप्लीमेंट से बचें और लोकल के फूड खाएं। यकीन करें जो हमारा लोकल का फूड है ना, हमारे प्रकृति ने ऐसा डिजाइन किया है कि वहाँ की लोकलिटी के लिए जो फूड होगा ना वो उनके लिए पर्याप्त होता है, उनको नहीं जरूरत होती है सप्लीमेंट की। लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते हैं ना तभी ये जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट की।
0: तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी और का सपोर्ट लेने का क्या मतलब है जब आप अपने आप में सक्षम है, सीधी सी बात। तो जब फूड आप अकेले ले रहे हैं तो अगर अच्छा फूडिंग आपकी तरफ है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम सप्लीमेंट की तरफ रुख करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। भांति भांति के फल, भांति भांति की सब्जियां खाएं, लेकिन लोकल हो।
0: हाँ बिल्कुल, लोकल हो। जैसे यहाँ पे भाषाएं इतनी बदलती है, बोलियां बदल जाती हैं, कदम कदम पे कहते हैं, उसी तरह सब्जियां भी बदल जाती हैं।
1: और सारी वैरायटी है जो लोकल सब्जियां हैं, जो लोकल फल हैं, एक तो उनमें कोई प्रिजर्वेटिव मिला करके उनको देर तक संरक्षित करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो वो केमिकल फ्री है, वो ताजी है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है, उसमें ज्यादा पोषक तत्व है और वो सस्ती भी है। तो हम कहते हैं हमारे मिडिल क्लास के लोग क्या खाएं, हमेशा हमें कमी ही बनी रहती है। तो इस चीज से हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो लोकल चीजें हमारे लिए सस्ती भी हैं एज वेल एज वो न्यूट्रिशियस भी हैं।
0: ओके, लेकिन यही सवाल जैसे आपने कहा वो मेरा अगला सवाल भी होने वाला था कि भाई एक आम इंसान की बात करें तो कहता है कि पौष्टिक डाइट हमेशा महंगी होती है। सो जो हम रहने वाले लोग हैं वो अपने कम बजट में कैसे अपनी फूड में ऐसे अप्लाई करें कि भाई हमको सारे न्यूट्रिशन मिल जाए, क्योंकि अगर वो किसी एक्ट्रेस एक्टर को देखते हैं तो बड़े जूसेस पी रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के उनके पास बोल होते हैं जिसमें बहुत सारा काजू बादाम ये सब भरा होता है, तो ये सब देखकर इंसान को लगता है कि शायद ये हमारे बस की चीज़ है ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो पहला जो एक इमेज आती है। लेकिन बतौर चूंकि आप इस विषय की एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं और जो किसी मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं, जैसे मैं खुद ही रखता हूं, तो हमारे लिए, आप जैसे लोगों के लिए किन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने डाइट में पोषण बढ़ा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, हमारे श्रोताओं को ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, खासतौर से तब जब सोशल मीडिया का दौर हो। आपने बोला ना कि जो हम देखते हैं वो बोल भर के अपना काजू बादाम, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स और चिया पुडिंग और ये सब बना रहे होते हैं और हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे इसमें तो फाइबर है। फाइबर खाना, आप एक अमरूद खा लीजिए।
0: सही बात है।
1: आप एक पपीता, आधा पपीता खा लीजिए, आप पालक ले लीजिए,

0: आपको उतना ही फाइबर मिल जाएगा बिना किसी डेकोरेटिव आइटम के, बिना किसी महंगे पैसे वेस्ट किए हुए आपको। तो हमारा जो समाज का सबसे बड़ा भ्रम है, आपने कहा कि मतलब जो हेल्दी चीजें हैं वो महंगी हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो हेल्दी चीजें हैं वो महंगी हैं। क्योंकि अगर हम ना, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एक्चुअली, तो उसमें ये था कि किचन गार्डन का, तो अगर हम अपना एक किचन गार्डन बना लें, हालांकि ये एक दिन में तय नहीं होगा, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप उठाएं, जैसे सीजनल की सब्जियां उगा लें, सीजनल के फल उगा लें, तो उससे हम बहुत आसानी से कम बजट में चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो पारंपरिक थाल होती थी, जो हमारा मोटा अनाज होता था, जो हमारे दालें होती थी लोकल में, वो टोफू और ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए जो हम जापानीज से सीख रहे हैं कि जापानीज लॉन्गेविटी की तरफ जाते हैं, वो इतने लंबा जीते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है, तो हम उनको अपनाएं, नहीं, इसको करने के बजाय हम अपने लोकल फूड पे डिपेंड होकर के हम वैसा ही पा सकते हैं स्वास्थ्य। तो हम किचन गार्डन पर थे कि हम किचन गार्डन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप उठाएं, अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, एटलीस्ट सलाद के लिए तो वहां से तैयार करें। एक दिन में नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। हमारा स्वास्थ्य का खजाना जो है ना, हमारे न्यूट्री गार्डन में ही शुरू हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस अगर हम, जैसे नहीं, हमारे पास उतनी जमीन नहीं है, हम शहर में रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि जब हम बाय करने जाते हैं, जब हम खरीदने जाते हैं, तो हम ये ना देखें, अरे ये फल बहुत अट्रैक्टिव है तो हम इसको खरीद लें, पर वो जो अट्रैक्टिव है वो महंगा भी होगा। लेकिन वो जो महंगा होगा उसके बजाय उसका दूसरा अल्टरनेटिव आपको मिल सकता है। जैसे आपको पपीता थोड़ा महंगा लग रहा है, तो आप गाजर खरीद लीजिए, या आप गाजर, आप किसी गाजर को तो आप किसी लोकल वेंडर से भी ले सकते हैं। पपीता चलिए फल वाला थोड़ा महंगा दे रहा है, तो हर चीज का अल्टरनेटिव है। आपको अमरूद महंगा लग रहा है तो आप आंवला खरीद लीजिए, आंवले से अच्छा कोई विटामिन सी का सोर्स है ही नहीं।
1: करेक्ट।
0: तो आप ये सारी चीजों को करके हम ड्राई फ्रूट्स पे आते हैं। ड्राई फ्रूट्स पे अगर हम देखते हैं ना कि बादाम खा लो, काजू खा लो, अखरोट खा लो, चलो ठीक है हम खाते हैं उसको, लेकिन जो चीजें बादाम में है वही चीजें मूंगफली में मिल जाती है।
1: करेक्ट।
0: वही जो काजू में है वही सेम चीजें मिल जाती हैं मूंगफली में, जो चीजें अखरोट में है वो चीजें अलसी में मिल जाती हैं। तो उन चीजों का हम, जो हम चिया पुडिंग की तरफ भागते हैं ना कि चिया सीड ले लो, इतना चिया सीड का, सर जब हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो इतना क्रेज है चिया सीड का कि चिया पुडिंग खा लो, चिया पुडिंग खा लो, अलसी के पाउडर बना करके भी आप ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए महंगे ही भोजन के तरफ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूध, दही, पनीर, अंडा, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके घर में मिलने वाला चीज ही आपके सेहत का खजाना है।
1: वाओ, क्या बात है, ये एक टर्म यूज किया कि आपके घर में मिलने वाला ही जो है वो आपकी सेहत का खजाना है। और इसी खजाने पर हम थोड़ा सा चर्चा और करेंगे, चूंकि आपने बताया था भाई एक मिशन के बारे में, मिशन पोषण 2.0 जो कि प्रधानमंत्री का विजन भी है। सो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन लेंगे उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञान स्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9876 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग चौक। आरजे अदनान आज इवनिंग में हैं और शो लेकर आए हैं गोधुले, वो शो जिसमें हम अलग अलग पर्सनालिटीज से अलग अलग कार्यों के बारे में अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। और आज का जो विषय है भाई, वो हमने आपको बता ही दिया है। और आज का विषय स्वस्थ पोषण उज्ज्वल भविष्य है, जिस पर आज बतौर एक्सपर्ट हमसे बात कर रही है डॉक्टर रमा मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस एंड कम्युनिटी स्टडीज, माँ पाटेश्वर यूनिवर्सिटी, बलरामपुर। जाने से पहले मैंने आपसे कहा था एक प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए कि जो माताएं या बहनें ये कार्यक्रम सुन रही हैं, वो सरकार की मिशन पोषण 2.0 या फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है, इसका फायदा कैसे उठा सकती हैं? मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी नीडी महिलाएं हैं जिनको इन दोनों योजनाओं की जरूरत है, वो कैसे इसका फायदा उठा सकती हैं?
4: बहुत अच्छा और बहुत जानकारी वाला प्रश्न आपने पूछा है सर, और हम श्रोताओं से बताना चाहेंगे कि आपके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है और सरकार ने इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाना बहुत ही आसान बना दिया है और इसको डिजिटल भी कर दिया है, ताकि इसका कोई आपको इसका ड्रॉबैक ना झेलना, मतलब क्योंकि हम जाते थे हमारा साइन नहीं मैच हो रहा है हमारा ये सब, तो इन सब चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया,
3: आपको स्कैन,
4: हाँ, बायोमेट्रिक कर दिया गया है, तो प्रोसेस आसान हो गई है। पहला कदम कि इसका लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ें, महिलाएं स्पेशली जो गर्भवती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलें, बायोमेट्रिक आधारित जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद गर्भवती और जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, जो धात्री महिलाएं हैं, वो जो 6 महीने से लेकर के 3 साल के बच्चों को टेक होम राशन मिलता है, तो ये एक हो गया कि बायोमेट्रिक वहाँ होगी तो उनको राशन मिलेगा, और इसके लिए आपको आंगनबाड़ी के जो है वहाँ पे जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलना होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की, तो इसका लाभ गर्भवती महिलाओं को उनके खाते में सीधे पैसे जाते हैं
3: पोषण के लिए,
4: पोषण के लिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनका एक तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है तो उनका पोषण कहीं से रुकने ना पाए, उनको खाना पीना अच्छा मिले, बच्चे को अच्छा दूध मिले, क्योंकि माता अच्छा खाएगी जबी वो अच्छा दूध दे पाएगी बच्चे को अपने, तो उनको अच्छा पोषण मिल पाए, इसके लिए वय वंदन योजना में एक राशि होती है 5,000 की, वो जाती है। तो इसके लिए बच्चे के पहले जन्म पर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता 2 किश्तों में दी जाती है। पहली किस्त 3,000 की होती है जो गर्भावस्था के शुरुआती 6 महीनों के भीतर पंजीकरण और कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने पर दी जाती है। दूसरी किस्त जो होती है वो 2,000 रुपये की होती है, वो बच्चे के जन्म पंजीकरण और 14 सप्ताह तक आवश्यक टीके लगने के बाद दी जाती है। और अगर इन केस दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो अगर वो लड़की है तो सरकार का इस पर ज्यादा फोकस है कि एक ही बार में एक मुश्त राशि 6,000 रुपए की दी जाती है ताकि बेटियों को बेहतर पोषण मिल सके। इस तरीके से लाभ उठा सकते हैं हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं सर, जो माता बनने वाली हैं या जो माँ बन चुकी हैं, जो धात्री महिलाएं हैं, वो इसका लाभ।
3: दो बड़ी योजनाओं के बारे में बताया और उसका फायदा मुझे लगता उठाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस बारे में चिंतित है कि किस तरह से माताओं को पोषण मिले। क्योंकि यहाँ सिर्फ माता का पोषण की बात तक सीमित बातें नहीं है, जो बच्चा होने वाला है बेटा बेटी वो कैसा पैदा होगा, वो कितना स्वस्थ होगा, वो जाहिर सी बात है हमारे समाज का कल है, भविष्य है। तो भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सारी योजनाएं चलाई जा रही
4: है। बिल्कुल बिल्कुल सर,
3: और ये हमको खुद भी समझना होगा। अच्छा, एक बात जो बहुत जरूरी है कि अक्सर देखा होता है कि पीछे कोई भी आप फूड आइटम लेते हैं तो न्यूट्रिशन लेबल एक होता है।
4: जी,
3: कई अवेयर जो लोग हैं उसको पढ़ते हैं, कई बार हमको भी समझ में नहीं आता था ये क्या, कितने ग्राम क्या लिखा है, मुझे उससे क्या मतलब है, खाना वही चीज है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि न्यूट्रिशन लेबल जो लगा होता है, जो कंपनीज लगाती है, उसको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होता है, उससे क्या फायदा होता है।
4: जी बिल्कुल सर, अगर ये स्पेशली उनके लिए है जो अपने बच्चों को पैकेट पकड़ा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये तो हमें जानना ही चाहिए पैकेट पकड़ाने से पहले या हम जब परचेज करने जाते हैं तो वो पैकेट उठाने से पहले कि वो जो न्यूट्रिशन लेवल लगा हुआ है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू पोषक तत्वों की मात्रा जो है उसमें दी गई है, कितना इसमें सैचुरेटेड फैट है, कितना अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब कि वसा की मात्रा कितनी है, कैलोरी कितना है इसमें, कितना ग्राम प्रोटीन है, कितने इसमें प्रिजर्वेटिव पड़े हैं। प्रिजर्वेटिव जो सर हम कह सकते हैं सीधे वो कैंसर से जुड़े होते हैं। जो कलरिंग एजेंट पड़ा है अगर आप उसको पढ़ेंगे और सर्च करेंगे तो कई सारे ऐसे हैं जो बैंड हैं, लेकिन फिर भी फूड कंपनीज उनको करती हैं क्योंकि उनसे अट्रैक्टिव कलर दिखता है, अट्रैक्टिव फ्लेवर आता है, लोग उसकी तरफ टेम्पटिंग होता है, आकर्षित हो जाते हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर वेज और नॉन वेज का भी मार्क लगा होता है, जैसे ग्रीन ग्रीन हो गया, अगर अंडा पड़ा है तो ब्राउन हो गया, नॉन वेज है तो वो रेड हो गया, ऐसे बहुत सारे उसमें होते हैं, टैग भी होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज हमें आज के दौर में देखने के लिए है, हम फिर कह रहे हैं कि भारत इस समय दोहरा भार उठा रहा है कुपोषण का। एक तो ओवर न्यूट्रिशन का उठा रहा है और दूसरा माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का उठा रहा है। वजन बच्चों का कम है, बौनापन का शिकार है, हिडन हंगर है, बच्चे खा तो रहे हैं, बच्चे हेल्दी चबी चबी दिखते हैं क्यूट क्यूट से, लेकिन उनमें हिडन हंगर है सर। उनमें हिडन हंगर का मतलब होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है, जैसे आयरन की हो गई, कैल्शियम की हो गई, वो उतने मजबूत नहीं है, उनके बाल अच्छे नहीं है, नाखून अच्छे नहीं है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो, और दूसरा है मोटापा। मोटापा यही जो हम पैकेट पकड़ा देते हैं सर, इसी से मोटापा बढ़ता है। पैकेट ना पकड़ा करके उनको पारंपरिक तरीके से डील किया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज जो देखनी चाहिए पैकेट पे, वो शुगर कंटेंट कितना है। किसी भी चीज को खाने से पहले, आज का दौर एटलीस्ट ऐसा हो गया है कि किसी भी पैकेट जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको खाने से पहले देखना चाहिए कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है, उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है। कि जितना सैचुरेटेड फैट हम इंटेक कर रहे हैं ना, ये हाई बीपी और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। और क्योंकि कम्युनिटी स्टडीज से डील करते हैं तो इसके लिए हम जरूर बोलेंगे कि आज से थोड़ा कम, जो हमारे सरकार ने भी लॉन्च किया है आज से थोड़ा कम, तो आज से थोड़ा कम चीनी और आज से थोड़ा कम नमक और आज से थोड़ा कम जो रिफाइंड ऑयल है जो हम खाते हैं उसका प्रयोग कम से कम करें, उसके जगह पर आप घी यूज कर सकते हैं घर के।
3: वाह, मतलब आज से थोड़ा कम, ऐसा आपने एक लाइन बता दी जो काफी इफेक्टिव है कि आज से थोड़ा कम क्या, चीनी नमक और जैसा कि आपने बताया रिफाइंड ऑयल होता है या ऑयल होता है। ये हम सभी को पता है कि भाई हमारी हेल्थ के लिए ये सभी बहुत ज्यादा अगर लेते हैं एक्सेसिव होता है तो ये नुकसानदायक साबित होता है। बहुत प्यारी बात कही आपने, चूंकि मैंने ये कहा था कि भाई न्यूट्रिशन लेबल जो है उसके पढ़ने से संबंधित आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। चूंकि आपने पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि लोग आते हैं आपके पास में और कहते हैं हमारी डाइट चार्ट बना दिए, तो एक डाइट चार्ट से संबंधित एक प्रश्न की एक नॉर्मल इंसान की डाइट चार्ट क्या होनी चाहिए।
4: एक नॉर्मल इंसान के लिए हम डाइट चार्ट में बोलेंगे कि जो एक स्टैंडर्ड होता है,
3: राइट,
4: तो उसको एक 30 ग्राम चावल, 25-25 ग्राम की दो रोटी,
3: ये बनने के बाद वो ग्राम देखना है कि पहले
4: दाल, अच्छा अगर आप मेजर करके खाते हैं, नाप करके खाते हैं,
3: okay.
4: और नहीं तो आप अगर ऐसे खाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका 60% जो भोजन होना चाहिए आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो रंग बिरंगा होना चाहिए, जैसे उसमें सैलेड हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, दाल हो। उसके बाद आप अपने पोर्शन को रोटी और चावल से भर सकते हैं, लेकिन जो आपका 60% होना चाहिए वो वेजिटेबल और फल होने चाहिए। ऐसी हमारी अगर संतुलित थाली होगी तो हम पोषक तत्वों का भरपूर, जैसे हमने बताया हिडन हंगर को, हिडन हंगर से बचने के लिए अभी सर हम और आप यहाँ स्वस्थ बैठे हैं, लेकिन अगर हमारा चेकअप हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसको रिपोर्ट को देख करके कि हमारे अंदर भी हिडन हंगर हो सकता है, जैसे कैल्शियम की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। तो ये सारी चीजों को अगर हमें डील करना है और सप्लीमेंट से बचना है तो अपना जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, बैलेंस्ड थाली है, जो वो हमने बताया था ना कि कलरफुल भांति भांति की सब्जियों और फलों से भर दीजिए उसको, और चावल और रोटी के पोर्शन को थोड़ा कम करके आप दालों को, दूध, दही, अंडा, पनीर, इससे आप उसको भर सकते हैं।
3: तो मुझे लगता है कि भैया बहुत ज्यादा पेट भरने से अच्छा है थाली को भरा जाए और सही चीजों से थाली को भरा जाए। और जैसा कि मैंने पूछा कि भाई एक शख्स के लिए, जो आम इंसान है उसके लिए एक स्टैंडर्ड थाली क्या है, जिसमें आपने बताया कि 60% जो है वो फल और ऑफ कोर्स आपके सैलड आइटम्स होने चाहिए, 40% में आपका खाना होना चाहिए, जबकि करते बिल्कुल उल्टा है, खाना भर लेते हैं और दो ठो गाजर काट के खा लेते हैं, हमको लगता रहे वाह क्या बात है आज तो बहुत बढ़िया खाना खा लिया।
4: ऐसा ही करते
3: तो ये हमारी भी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है आज के टॉक शो से मैं किसी और को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये गारंटी है कि मेरे भी खान पान में काफ़ी चेंज आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इधर मैं ध्यान भी दे रहा था। सो चलिए अब तो फिलहाल चलने का वक्त हो गया, लेकिन चलते चलते एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो सुन रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ मंत्र आपकी तरफ से बतौर एक्सपर्ट क्या होगा?
4: बहुत जरूरी चीज आपने पूछी, सबका एक सार समझते हैं।
3: करेक्ट
4: जी, तो चलते चलते मैं यही कहूंगी कि पहला मंत्र, लोकल खाइए, सीजनल खाइए, जो सीजन में नहीं है प्रिजर्वेटिव वाली चीजें मत लीजिए, वो नुकसान देने के बजाय आपको न्यूट्रिशन नहीं देंगी। दूसरा मंत्र है, थाली की पौष्टिकता संतुलित खाने में है। तो अभी सर ने पूछा था ना कि एक हमारी जो थाली है वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें मैंने बताया तो पौष्टिकता संतुलित भोजन खाने में है, संतुलन बना करके खाइए। तीसरा है, मंत्र की शुरुआती के जो 1000 के दिन होते हैं, 1000 दिन, उनका सम्मान कीजिए। जो 1000 दिन है शुरुआती बच्चों के, और उनका सम्मान कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, जो भी योजनाएं चलाई जा रही उनका लाभ उठाइए और बच्चों को हेल्दी जीवन दीजिए, क्योंकि वो बच्चे हमारे भविष्य हैं।
3: भविष्य है, करेक्ट।
4: चौथा और सबसे बड़ा मंत्र, पोषण एक जन आंदोलन है, डॉक्टरों, अस्पतालों और आंगनबाड़ियों की अकेले की जिम्मेदारी मानने के बजाय खुद को आगे लाने की जरूरत है।
3: वाओ,
4: हमें खुद आगे आना चाहिए, खुद आगे आएं, सेहत का ख्याल रखें और आइए आज से ही अपने घर के सही पोषण की शुरुआत करें और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। याद रखिएगा, सही पोषण, देश रोशन।
3: क्या बात है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छे नोट के साथ आपने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया है, और ये मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स जो सुन रहे थे उनको जरूर आज समझ में आएगा कि न्यूट्रिशन आखिर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आज से ही आप इस जन आंदोलन का हिस्सा खुद को मान रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप खुद तो बेहतर होंगे, आपका बच्चा, आपका भविष्य और ये देश सब कुछ बेहतर होगा। कैसा लगा टॉक शो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, अगले बार हम फिर हाजिर होंगे किसी अगले विषय, किसी अगले एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बापूजी ने उन्होंने मना का तो करता।
4: केड़ी गल तो?
3: साडे गोंड तो घरे भी तो असि गोनिया ही आ।
4: ऐ तो तुसी घरे चुन्नी भी नहीं लैंदियां, पर जदों बाहर जानी हो उदों सिर ते चुन्नी लैनी हो।

हायो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कैसी हमारी परवाज हो गई। हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260-9976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब
10: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
11: अरे सुना
13: क्या?
11: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
11: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
14: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
15: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

सो चलिए आप सभी का स्वागत इस पॉजिटिव से गाने के साथ हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज की शाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम करने वाले हैं हम लोग जिसने संगीत को संगीत बनाया। वैसे संगीत की बात करें तो हर शाम संगीत से शुरुआत होती है हमारी। जी हाँ, सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। वैसे ये बताइए कि मौसम को क्या हो गया है, इतनी गर्मी कैसे? मतलब जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम बदलना चाहिए, वहाँ उसके विपरीत मौसम इतना गर्मी वाला कैसे हो गया है? समझ नहीं आ रहा। फिलहाल जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन दैट वी हैव टू डू। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसके अलावा हम कितना भी डिनाय करें, एक्सेप्ट करने से कोई चीज़ बदलने वाली तो नहीं है ज़िंदगी में। जो चीज़ जैसे है वही वैसे ही रहेगी, हम चाह के भी उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमारे साथ आ चुके हैं अरीबा, रोशनी, विकास, नाजिया, अरविंद, बाय बाय नाम से जैसे लगता है कि मैसेज इतना बोल्ड दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि नाम की जगह बाय बाय नाम है। रोशनी, रावत, विकास, सबका स्वागत है। विकास तो काफ़ी दिनों बाद आप दिख रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। फिलहाल आज की शाम को करेंगे मुकम्मल किसी एक नाम के लिए, और आज कॉलिंग वाला डे भी है तो मैं चाहूँगी सारे लोग अपना 6393 वाला नंबर डायल करके अपनी जो धुन है वो मेरे नाम से सुरीली कर लें। और आज करेंगे हम कुछ लोकगीतों की भी बात। सो हेलो, गुड इवनिंग मैम, हम न्यू हैं, हमें कोई नहीं जानता, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा यहाँ पे। अरे बट डोंट वरी, फ्रेंड हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह अपनी पहचान नहीं बना सकते। एक बार अपनी पहचान बनाने के बाद पूरी की पूरी कम्युनिटी हमारी फ्रेंड बन जाती है, बस अपना दिल से प्रयास करना चाहिए। एंड वैसे मैं आपको बता दूं, आज कॉलिंग डे है और आज आप सभी को अपने मन से कुछ भी अच्छा सा सुनाना होता है, वट एवर यू प्रिपेयर, ओपन माइक की तरह ही होता है, लेकिन आप ऑन एयर आके कॉल करके सुनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जिसको जो जो मौका मिले उसको यूटिलाइज़ करे और कुछ बेहतर सा करके दिखाए। और मैं एक संगीत की दुनिया के नायाब हीरे का नाम भी आज लूँगी, जिन्होंने ना सिर्फ पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कंपोजिशन से अपने भर दिया, बल्कि यहाँ भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, हर जगह अपना जो कहते हैं ना कि परचम लहरा दिया। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ उस शख्सियत की जिसका नाम है चरणजीत आहूजा, एक नाम जिसने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में धमाल कमाल कर दिए। तो क्यों ना उनके कंपोजिशन से बने गानों की बात आज हम करें और जानें कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक भाषा में या एक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरी दुनिया को अपना बना के दुनिया में पहचान बना सकते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं पंजाबी इंडस्ट्री के पहले गाने और फिर जानेंगे आपसे कि ये कंपोजिशन कैसा है। और यही कंपोजिशन करने वाला इंसान अगर भोजपुरी गानों में कंपोजिशन करेगा तो क्या वो बेहतर

अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सीधे पंजाबी से सीधे ये गाना, ओ माय गॉड ये कहाँ, और वो भी इतने लो टोन का गाना। जी हाँ, हम आपसे उन शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक म्यूजिशियन, कंपोज़र और एक सेशन आर्टिस्ट का काम किया, बल्कि बॉलीवुड के गोल्डन एरा से लेके, चाहे वो बेस बजाना हो, चाहे वो कीबोर्ड्स पे अपनी उंगलियों को नचाना हो, उन्होंने सब कुछ अपने बेहतरीन ढंग से किया। उन्होंने काम किया आर डी बर्मन के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, और उन्होंने इतने मेमोरेबल इंस्ट्रूमेंटल और सैक्साफोन और ऑर्केस्ट्रा को बॉलीवुड की दुनिया में एक छाप बना के रखा, जैसे लगता था कि उन्होंने उस पूरे के पूरे दौर को एक नई पहचान दे दी हो। तो कंपोजिशन की जब बात होती है तो एक म्यूजिशियन तभी बेस्ट कंपोज़र बनता है जब वो लिरिक्स को अपने साथ घोल देता है, और ये गाना भी उसी का एक उदाहरण है।

बिल्कुल, उड़ते पंछी का ठिकाना कहाँ होगा कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं इस जिंदगी में अगर हमने अपनी पहचान नहीं बनाई तो वाकई में हमारी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं है। समय रहते हमें अपने समय को यूटिलाइज करके ऐसी महान हस्तियों की तरह अपनी पहचान बनानी चाहिए जिससे इतिहास का एक पन्ना हमारे नाम भी दर्ज हो जाए। एक दिग्गज भारतीय पंजाबी संगीतकार चरणजीत सिंह, चरणजीत आहूजा निर्माता मार्गदर्शक थे, संगीत के सम्राट भी उन्हें पंजाबी जगत का कहा जाता था। जन्म हुआ उनका 29 नवंबर 1953 को और दुनिया से अलविदा कहा 21 सितंबर 2025 में। उन्होंने एलपी और कैसेट के दौर से लेकर आधुनिक डिजिटल रिकॉर्डिंग तक के सफर में पंजाबी संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उन्होंने महान लोक गायक अमर सिंह चमकीला के करियर को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी संगीता और 4 बेटे हैं। उनके बेटों में सचिन आहूजा भी एक जाने माने संगीत निर्देशक हैं। संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि कंपटीशन काफी अच्छा खासा होता है, पर उस कंपटीशन को बीट करके अपने पैर जमाए रखना यह हर किसी की बात नहीं। जीवन का जो कहते हैं ना दौर है, वो हमें हर दिन हर क्षण ये सिखाता है कि हम किस पल को कितना यूटिलाइज कर पाते हैं। मोहाली में उन्होंने अपना एक स्टूडियो भी बना रखा था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने उस स्टूडियो में काम तो किया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे घर पे शिफ्ट कर लिया क्योंकि वो रोजाना वहां जा नहीं पाते थे। फिर कोरोना काल आया, जब उन्हें लगा कि उन्हें अपने स्टूडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अपने बेटे सचिन आहूजा को भी उसी समय उन्होंने समाज सेवा में सक्रिय किया। उनके बनाए हुए गाने 1980 से 1990 के दशक में लोगों के मुंह पे चढ़े हुए थे। बड़े म्यूजिशियंस की बात करें, बड़े सिंगर्स की बात करें, सुरजीत, बिंद्रखिया, कुलदीप माणक, गुरदास मान, चमकीला, गुरकृपाल सुरासुरी, सतविंदर बग्गा, ये सभी पंजाबी गायकों ने इनके म्यूजिक को अपना बनाया। कई गायकों ने उनके संगीत के साथ अपने करियर की तो शुरुआत भी की और कुछ उसी संगीत के साथ सुपरस्टार भी बन गए। तो ये वो नाम हैं जिनको हमें ना सिर्फ जानना चाहिए बल्कि जान के इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने संगीत ट्रैक पहुंचा पाना हर म्यूजिशियंस के बस की बात नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कोई साहित्य का टीचर है लेकिन वो हिंदी साहित्य का है, तो वो अंग्रेजी साहित्य के बारे में भी अगर बहुत ज्यादा जानकारी रखता है तो मतलब वो दिग्गज है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बॉलीवुड में भी पंजाबी के साथ साथ अपने पैर जमा लिए थे।

आज उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी कुछ फेमस सुपरहिट रचनाओं की बात भी कर लेते हैं। की बनू दुनिया दा बड़ा प्यारा गाना था, 1986 में आया था। फिर गबरू पंजाब दा 1986 में आया। दुश्मनी जट्टा दी 1993 में आया। तूफान सिंह 2017 से संगीत जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले आहूजा ने अपने कदम रोके नहीं। बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई, पर कहते हैं ना कि सेहत जब साथ छोड़ती है तो इंसान को घुटने टेक देने पड़ते हैं अपने सपनों के आगे, अपने भविष्य के आगे। और कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो चलिए, हम आगे आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कौन सा गाना आप लोग सुनाने वाले हैं। और मैं एक और गाना प्ले कर देती हूँ, आहूजा जी की कंपोजिशन, और आप लोग बताइए कि ये गाना आपको कितना पसंद आया। जैसे पंजाबी गाने तो बहुत सारे आप सुन चुके हैं, लेकिन अभी बात है बॉलीवुड गानों की, तो मैं चाहूंगी कि आपको बॉलीवुड गाने ही सुनाए जाएं आहूजा जी के।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ फ्रॉम सारेगामा।
1: अब आप सोच रहे होंगे मैं ये गाना क्यों सुना रही हूँ। जी हाँ, ये भी कंपोजिशन है आपके चरणजीत सिंह आहूजा की।
2: ना दे दिल परदेसी नू तेनू नितदार होना पै जाऊगा, नाल रह जे ते जोगी दे तेनू जोगन होना पै जाऊगा।

तो ये वो गाने थे जिनको सुन के उस दौर में लोगों के अंदर दीवानियत आ जाती थी। फिलहाल मेरे दीवानी जो वो लिसनर्स हैं वो कहाँ चले गए हैं। उदालक गुड इवनिंग, शिल्पी जी गुड इवनिंग, उदाल जुगल जी गुड इवनिंग, अरिवा गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एंड यस 6393316429 नंबर आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप कहाँ सो रहे हैं तो फटाफट से डायल करिए, वो आपकी आवाज़ सुनने की बारी आ गई। ये सब गाने सुन के तो हमने आहूजा जी की आवाज़ को तो बहुत याद कर लिया, पर अब बारी है आप लोगों से दिल मिलाने की। दिल ना मिला, दिल ना दिया, तो बोलो बोलो क्या किया। यस yes.

0: तो इन बेहतरीन सी जो बहती हुई हवाओं सी कॉम्पोजिशंस थी वो आज भी सुन के ऐसा लगा कि यार ताज़ी हवा लग गई। तो मतलब आज एक डेडिकेटेड डे की बात करने के बाद अब वापस से आते हैं आप लोग के पास थोड़ी ट्रैक वाली बातें करने कि ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जिसको कंपोजिशन में इंटरेस्ट हो। वैसे बहुत सारे मेरे ऐसे लिसनर्स हैं जो बहुत अच्छा मतलब गाना लिखते भी हैं और कंपोज भी करते हैं, और उसमें एक नाम है श्रद्धा का। जी हाँ, एक मेरी लिसनर है जो बहुत ही बेहतरीन से गाने लिखती है और उन गानों को कंपोज भी करती है। तो इसी को कंपोजिशन करते हैं। बस अपने अंदर के हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो कंपोजिशन है, और अगर आप इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको बादल पे अपने पाँव लेके जाने चाहिए, ना कि वहीं के वहीं बैठे रहना चाहिए। क्योंकि अपनी पहचान बनाने के लिए मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है। क्यों, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? सोने वाले सो गए मुझे लग रहा है। वैसे शिल्पी जी, आपकी आवाज़ में तो गाना सुनने का इंतज़ार कर रही थी मैं, लेकिन अभी आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ तो सबके पास होती है। मान लीजिए मैं भी बहुत अच्छा गा सकती हूँ या आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, सब गाते हैं, लेकिन अगर एक कंपोज़र बेहतरीन ना हो हमारे देश में हमारे पास, तो शायद वो शब्द सिर्फ एक कविता बन के रह जाते। क्या कहते हैं आप, इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? मैं तो फुल करती हूँ कि अगर हमारे पास उन शब्दों को संगीत देने वाला कोई ना हो तो हमारे गाने सिर्फ शब्द मात्र हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको अगली आवाज़ जो कॉल कर रहे हैं पहले लिसनर, तो आवाज़ सुन के बताते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो। सो जब तो कॉल आ जाती है तो कॉल के बाद कनेक्ट हो पाना ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, चलिए ये सारी बातें तो चलती रही, आप लोग बताइए क्या आपको नहीं लगता है कि शब्द शब्द होते अगर उन्हें कोई कंपोज नहीं करता? मुझे तो यही लगता है, लेकिन चलिए शब्द कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं या नहीं ये तो आप लोग को बताना होगा। फिलहाल मैं कॉलर को ऑन एयर करती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। मैं तो पहचानने की कोशिश करूँ, आप अगर नाम बता दें तो लिसनर्स भी पहचान जाएं। निशा जी,
1: मैं निशा हूँ। निशा,
0: निशा को जुखाम हुआ है। निशा कैसी हैं आप?
1: अच्छी।
0: आप अच्छी हैं? अच्छी तो आप हैं ही, मैं बता रही हूँ, पूछ रही हूँ हालचाल आपका कैसा है। तो ये बताइए निशा, आप आज क्या सुनाएंगी?
1: गाना सुनाना है।
0: जी हाँ, आज मंडे है तो आज गाना सुनाना है। गाना क्या, कुछ भी सुना सकती हैं?
1: मुझे मंडे है, मुझे पता है। तो शुरू करें?
0: बिल्कुल। निशा फोन के थोड़ा करीब आके बोले। वैसे निशा का मुझे लग रहा है फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है। एनीवे, कोई बात नहीं, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो कॉल फिर से लग जाएगी। लेकिन मुझे अच्छा लगा गाना गाना। गाने के बोल तो आप लोगों ने भी समझ लिए होंगे। क्या तुम्हें पता है दिलबर, मेरे दिलबर आने वाले गुलशन, सॉरी मैं दिलबर बता रही हूँ, दिलबर से ही पूछ रही हूँ कि मेरे दिलबर आने वाले हैं। वैसे कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। चलिए एक और गाना आपको सुनाती हूँ जिसको सुन के दिल आपका हो जाएगा गार्डन। गार्डन नहीं, गार्डन नहीं करूँगी, तो थोड़े लेटेस्ट वाले गाने। और मतलब अगर इवनिंग का टाइम हो और आवारापन टू का एक भी गाना ना बजे तो मतलब इवनिंग अधूरी है। तो चलिए सुनते हैं ये तेरा मेरा मिलना, नहीं नहीं नहीं नहीं, तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम आवारापन टू।

0: गाना भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल और, चलिए देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो, गुड इवनिंग।
1: हेलो मैम, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या, कैसी हैं प्रीति जी, क्या हाल है?
1: ठीक ठाक, मस्त। मैम अपना बताइए हालचाल।
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस उम्मीद कर रही थी कि कोई कॉल करने वाला होगा, तो इंतजार फाइनली इंतजार आपके कॉल का खत्म हुआ। तो आज आप क्या सुनाएंगी, कुछ लिखा हुआ या कुछ गुनगुनाना चाहती हैं?
1: मैं एक भजन सुनाएंगी, इस समय बहुत चल रहा है, नया नया है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है।
0: नया नया है, चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, स्वागत।

मुझे राम दे दो, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उड़न में हर एक

उन्हें कोई जाके ये पैगाम दे दो।

0: का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, मेरी जिंदगी राम को थाम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, जिन्हें राम चाहिए, जिन्हें राम प्यारा, उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो।
1: क्या बात है, और आपने सच में मतलब जो ट्रेंडिंग भजन है उसको एकदम सच में एकदम साकार कर दिया, क्या बात है।
2: मैम लिखा है, कविता बहुत लिखी है, सुनाएंगे एक एक करके धीरे धीरे अगले नेक्स्ट टर्न।
1: बिल्कुल एक्टिवेट हो जाइए, अपनी जो ऊर्जा है उसको एक्टिवेट कर लीजिए, कुछ दिनों से आपकी ऊर्जा कहीं गायब चल रही थी। थैंक यू सो
2: जी।
1: तो भाई एक ऐसा भजन सुना जैसे सुन के मतलब इंसान को सोचना पड़ेगा कि हाँ, जिसे दाम चाहिए उसे दाम दे दो, लेकिन मुझे राम चाहिए, मुझे राम दे दो। सुन के मजा आ गया। और गुड इवनिंग, कैसे हैं प्रमुख, क्या हाल है? जानी पहचानी आवाज़ है तो बिल्कुल जाने पहचाने लोग भी होंगे, बस आप आते नहीं हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा दूरी महसूस होती है। तो हम गाने पे थे तेरा मेरा रिश्ता आवारापन टू से, तो चलिए सुन लेते हैं, और बीच में अगर कॉल आता है तो उससे बात भी कर लेंगे। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: है पुराना, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 3 साल तो हो ही चुके हैं। फिलहाल चौथा साल शुरू हो गया और अगले कॉल से बात करके बताते हैं उनसे हमारा रिश्ता कितना पुराना है। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं आशु जी? आपका स्वागत है इस रिली सी संध्या में। फिलहाल ये बताइए, आपका और हमारा रिश्ता कितना पुराना है? गाना तो हमने सुन लिया।
1: बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है।
0: नहीं, कितना पुराना है, कितने साल हो गए हमारे रिश्ते को?
1: मैम हो गए 3 साल तो हो गए।
0: 3 साल कैसे पता नहीं, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं?
1: मैम भोले बाबा को पर सुनाऊंगी। बिल्कुल मैम।
0: चलिए, स्वागत है आपकी आवाज का।
1: बिल्कुल मैम। भोले बाबा फरमान कर बैठे, गोरा मैया से प्यार कर बैठे। भोले बाबा कमाल कर बैठे, गोरा मैया से प्यार कर बैठे। मैं तो लाई जले का लोटा, वो तो गंगा से प्यार कर बैठे। मैं तो लाई गंगा जल का लोटा, वो तो गंगा से प्यार कर बैठे। भोले बाबा कमाल कर बैठे, गोरा मैया से प्यार कर बैठे। मैं तो लाई घिस घिस के चंदन, मैं तो लाई घिस घिस के चंदन, वो तो चंदन से प्यार कर बैठे। भोले बाबा कमाल कर बैठे, वो तो चंदन से प्यार कर बैठे। मैं तो लाई फूलों की माला, मैं तो लाई फूलों की माला, वो तो नागों से प्यार कर बैठे। वो तो नागों से प्यार कर बैठे। भोले बाबा कमाल कर बैठे, वो तो नागों से प्यार कर बैठे। मैं तो लाई और मिश्री, वो तो भंगियों से प्यार कर बैठे। मैं तो लाई मेवा और मिश्री, वो तो भांगों से प्यार कर बैठे। भोले बाबा कमाल कर बैठे, वो तो भांगों से प्यार कर बैठे।
0: क्या बात है, और मजा आ गया सुन के। मतलब आपने मतलब गाना नहीं सुना है, लेकिन हाँ ऐसा सुना दिया भजन जो कि सबको रियलाइज करवा रहा है कि हाँ सच में हमारे शिव जी, हम लोग जो भी कर लाते हैं पॉजिटिव वाली चीजें उसके विपरीत हैं। परंतु जितने भी हैं, जैसे भी हैं, भोले भाले हैं, उनको बहुत महंगी मिठाइयाँ, महंगे फ्रूट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो साधारण सी चीजों में जो कि आसानी से अवेलेबल है, उसी में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखा जाए तो भांग, धतूर, ये सारी चीजें हमारे आसपास वाइल्ड स्पीशीज में आती हैं। इन्हें जंगली पौधों की कैटेगरी में रखते हो, नहीं आसानी से सड़क किनारे कहीं भी आपको मिल जाएंगी।
1: तो
0: कम एक्सपेंस में जल्दी खुश होने भगवान में इनको गिना जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया सुन के। दोनों बहनें आज सोच के आई थी कि आज एकदम पहले मतलब हम लोग पॉजिटिव शुरुआत कर देंगे। क्या बात है, थैंक यू। तो चलिए, आशु जी ने एक गाना सुना दिया जिसे सुन के दिल खुश हो गया, क्या बात है। तो चलिए, अब बारी है, जैसा कि मैंने क्या कहा था कि आज आप लोगों से सुनूंगी गाने, लेकिन आप लोग तो जैसे कहते हैं ना कि आज कुछ नया नया ही सुना रहे हैं, तो अच्छा लगता है मुझे आप लोग की नई नई खोज सुन के। और एक गाना जो कि इंतज़ार कर रहे हैं पूरा होने का, तो उसको पूरा कर दिया जाए। तेरा मेरा पुराना। सो लिसनर्स, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना और मेरा, यानी कि 89.6 FM का रिश्ता कितना पुराना है, चैट रूम में लिख के बताइए। जैसे अभी तक तो मुझे 2-3 लिसनर जो भी सुनाई दिए, 3-4 साल बता रहे, 4 साल हो ही गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि 4 सालों से लगातार हम लोग एक साथ हैं। तो बाकियों से जानना चाहती हूँ, किसी का 2 मिनट पुराना भी है तो वो भी चैट रूम में लिख के जरूर बताइए कि अभी बस ज्वाइन किया है, तो जानना है किसका रिश्ता कितना पुराना है फिलहाल इस गाने के साथ।

0: तो चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है और उसका रिश्ता हमसे कितना पुराना है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम। ओ रईस जी, कैसे हैं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे लगता है कि पिछले मंडे आपसे बात नहीं हुई थी, क्या बात है, आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं।
1: दरअसल मैं सॉन्ग गाने वाले था, लेकिन कुछ दोस्त लोग
0: बिजी हो गई इसलिए नहीं सुना पाए। कोई बात नहीं, वो चीज आज मुकम्मल कर दीजिए और आज अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए बेहतरीन सा। आप ठीक है? बिल्कुल, कुछ परेशान से लग रहे हैं आवाज से।
1: ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं।
0: चलिए, स्वागत है आपकी आवाज का।
1: बहुत सोचना है मेरी जान, मुझको बहुत सोचना है, कहाँ से मिलो अगर रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा, बस एक ही मिल्कियत है, तो बस मैं ही दे सकूंगा, पहले मेरी जान मुझको बहुत है, तुम्हें अपनी साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, आगे वफात
0: क्या बात है, मतलब इतना याद कम याद था क्या, बहुत अच्छा गाना आपने चुना सुनाने के लिए, और उम्मीद करूंगी इस गाने से इंस्पायर होके आपके साथ कोई घूमने के लिए तैयार भी हो जाए। क्या बात है, बहुत प्यारा गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई रईस जी ने गाना सुना दिया, ना बंगला ना गाड़ी, लेकिन फिर भी दिल में अगर प्यार हो और ऐसी आवाज़ हो और इतना प्यारा गाना जिसको आता हो उसके पास, तो समझ लो सब कुछ ही है। तो धन्यवाद रईस जी, बहुत प्यारा गाना सुनाया। और भाई मुशीब जी कैसे हैं, क्या हाल है, बाराबंकी से हमारे लिसनर। और वैसे रईस जी से तो मैं पूछना ही भूल गई कि इनका और हमारा रिश्ता यानी 89.6 FM का रिश्ता कितना पुराना है, बाकी लोगों से भी जान लेते हैं कौन कितने साल पुराना हमसे जुड़ा हुआ है। कुमार, गुड इवनिंग, कैसे हैं? तो चलिए उस गाने की, देखिए बहुत दिन हो गए मैंने सुनाया भी नहीं, तो चलिए बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो चलिए अब मेरी बारी भी आ गई है, चलिए मैं ही सुना देती हूँ गाना। अब रईस जी के बाद मेरी बारी आ गई है, मैंने सोचा कि अब चैटरूम में मुझसे कहा गया है तो एक गाना सुनाने के लिए तो मुझे नहीं ज़्यादा रिक्वेस्ट करानी चाहिए, वो भी वो गाना जो मेरा फेवरेट और आप लोग का भी। तो बुदबुदाने की बात हुई है लेकिन मैं बुदबुदाऊँगी नहीं, गुनगुनाऊँगी। तो गाना है आपका और मेरा पसंदीदा, वही पुराने अंदाज वाला नया गाना।

तो भाई मैंने अपनी कोशिश करके पूरा गाना सुना दिया और आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल मैम रिकॉर्डिंग कर रही हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मतलब ये गाना मुझे लगता है कि जब भी मैं गाती हूँ तभी मुझे इस गाने से

अनूप जी और मशीब जी और अनिल शास्त्री जी, शुभ संध्या, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करूंगी आप बिल्कुल अच्छे होंगे और एकदम मतलब स्वस्थ होंगे। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा आपके घर में कोई शायद ट्रेजडी वगैरह कुछ हुई थी, मुझे ऐसी जानकारी मिली, किंतु अभी दिल एकदम खुश है आप लोगों को एक साथ देख के। एक साथ देखना मतलब एक अच्छी चीज़, अच्छी फीलिंग होती है, और ज़िंदगी बहुत अनमोल है, एक मतलब बहुत कीमती है, और एक दूसरे को हम इतना सा टाइम दे रहे हैं और साथ में इतने सालों से हैं, 4 साल तो हो गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर बीइंग माय फैमिली, माय फैमिली। एंड चलिए एक बढ़िया सा गाना, एक गाना जिसको सुन के आप लोग के दिल तो खुश हो ही जाएंगे। फिलहाल ये गाना थोड़ा मस्ती वाला भी है, लेकिन हाँ फीलिंग सेम ही है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें हो गया है कैसा ये हाल, क्या करें। तो चलिए, मुझे तो इस गाने के लिरिक्स नहीं याद है, लेकिन हाँ आप बताइए ये गाना आपको कितना पसंद आता है।

0: फिलहाल इस गाने को हम बाद में सुनेंगे, ऑन एयर कॉल पे बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग।
1: वेरी गुड इवनिंग बीना जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: सबसे पहले आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार, बहुत सारा आपको प्यार आशीर्वाद। आपने मतलब मेरा फेवरेट गाना एक बार फिर से गुनगुनाया। वाह, जो मुझे आपकी आवाज में मतलब लाजवाब, जो कुछ भी कहा जाए मतलब कम है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो छोटी सी कोशिश हमेशा से की और आज भी वही की है।
1: और
0: आप लोग इतना प्यार देते हैं, ये आप लोग का बड़प्पन है।
1: मैं इतना कहूंगा सिर्फ बीना जी की ए टू जेड और आज से लेके ज्ञा तक मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं।
0: अरे बस
1: मजा
0: ज्यादा,
1: मतलब विद म्यूजिक था ना आज, विद म्यूजिक था। आपने हमेशा मतलब ऐसे विदाउट म्यूजिक गुनगुनाया था, वो तो एकदम लाजवाब था, लेकिन आज तो एकदम एक्सीलेंट, मतलब कुछ भी कहूँ, एलिगेंट कहूँ, एक्सेलेंट कहूँ या कुछ भी कहूँ, सब कम है।
0: अच्छा बस मुझे लगता है डिक्शनरी के शब्द ढूंढने पड़ेंगे और बहुत हो गया, बस थोड़ा ज़्यादा ही आप चढ़ा रहे हैं मुझे। बहरहाल आप लोगों के से ही मैंने सीखा है बहुत कुछ, आप लोगों के सिलेक्शन गाने के, आप लोग का अंदाज, आप लोग का ठहराव, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से मुझे सीखने को मिली है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट आप ही लोग को जाता है, तो आप आज आप क्या सुनाएंगे? वैसे तो आपके पास लंबी चौड़ी डायरी, लेकिन हाँ गाना मैं चाहूँगी कि आप ऐसा सुना देंगी, मतलब पुराने गानों में से ही कोई हो लेकिन ऐसा हो जिसको सुन के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए।
1: मैम दो हैं, एक तो राज मूवी का है अकेले हैं चले आओ जहां हो।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: और दूसरा है एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
0: क्या बात है।
1: अब आप जो कहें, जो
0: आप चाहेंगे कि दोनों का मुखड़ा आप सुना दें, एटलीस्ट मुखड़ा तो सुना ही दें और किसी एक का स्टैंजा भी सुना दें।
1: ठीक है मैम, मैं फिर अकेले हैं चले आऊं से शुरू करता हूं।
0: जी स्वागत है।

0: चले आओ जहां हो। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, फिलहाल इस गाने को सुन के बहुत अच्छी और मतलब स्वीट वाइब आई, एकदम सूदिंग वाली वाइब आई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: जो दूसरा है उसका मैं आपको एक मतलब पहला मुखड़ा और चार लाइनें, उसकी जो पहला स्टैंजा सुना देता हूँ मैं आपको।

0: बनेगी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही गाने, मतलब एक स्लो टोन एक हाई टोन, दोनों ही अपने मतलब पूरक बन के आज सामने आए। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो सो सो मच अनूप जी, मजा आ गया। दोनों ही गाने आपने बेस्ट एंड बेस्ट चुन के सुनाए, जैसे कहते ना कि सिलेक्शन करना।
0: एक्चुअली मैम आज मैं लाइव गाने वाला था आके, बट बीच में एक गेस्ट आ गए, वो नीचे बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं रेडियो पर, वो भी मतलब हाथ से इशारा कर रहे हैं कि हाँ बहुत खूब।
1: हाँ मतलब आप गेस्ट को खिलाने पिलाने लग गए और आपने सोचा कि आरजे बीना को लाइव खिला देंगे तो मतलब
0: मरना नहीं है ना, अभी अभी ड्यूटी पे है वो, तो इसीलिए करना पड़ता है।
1: अरे वाह क्या बात है, नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल किया इसी के लिए, इतना मतलब ये भी बहुत मुश्किल काम होता है गेस्ट के साथ ऑन एयर भी आ जाना। मतलब इंसान रेडियो साथ में सुन सकता है, पर उसमें भी टाइम निकाल के ऑन एयर आना बहुत कॉन्फिडेंस की बात है और बहुत मतलब धैर्य की बात है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू मैम,
1: शुभकामनाएं। तो भाई अनूप जी ने आके दो गाने ऐसे सुना दिए, मुझे लगता है इसमें से एक दो गाने आपके भी फेवरेट होंगे। और बाकी लोग जो सोच रहे हैं अरे मैं भी करूं क्या फ़ोन, तो वो सोचे नहीं, डायल करें। फिलहाल चार पांच बार मतलब ये क्या, हम समझ नहीं पाए आपकी भावनाओं को। एक और कॉल है, चलिए देखते हैं किसका है। हेलो
2: कॉल कर गई थी ना।
1: जी निशा आपकी कॉल तो कट गई थी, आप गाना कौन सा सुना रही थी, आप चाहती हैं तो दोबारा सुना सकती हैं। अब मैं चाहूंगी कि उस गाने की जगह कोई और गाना सुना दे, वो गाना तो हम लोगों ने सुन लिया था।
2: तो मैं दूसरा सुना दे रही। इस जमाने में, इस मोहब्बत में, किया करती
1: निशा आज आपकी आवाज मुझे लग रहा है थोड़ी खराब है, जुकाम हो गया आपको। मैं भावनाओं को समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। तो आपकी लाइंस को मैं पूरा करती हूँ। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिया करते हैं, जाने क्यों लोग। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू। तो निशा ने एक बार नहीं दो बार आके कॉल कर लिया और अपना गाना सुना दिया, ये होते हैं डेडिकेटेड लिसनर्स। चलिए अगला गाना सुन के हम आप लोगों से बात करेंगे, ये गाना आप लोग के लिए है, जरा ध्यान से सुनिए फिर कॉल करिए।

फिलहाल ऐसे गाने सुनने के बाद दिल तो खुश हो ही जाता है। फिलहाल अब बारी है बाकियों की, जिन्होंने अभी तक गाना नहीं सुनाया वो भी जल्दी से सुना दें। और बिना देरी के, क्योंकि जब देरी होगी तो फिर बात होना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप लोगों से मेरी बात अधूरी रह जाएगी। तो देरी को देरी में मुकम्मल करने के बजाय चलिए एक दूसरे से बातें करके बहुत सारी जो यादें हैं उनको और कहते ना कि गुलजार करते हैं।

0: तो चलिए एक और कॉल जिससे बात कर लेते हैं, आवाज सुनते हैं और पहचानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, शुभ संध्या।
1: नमस्कार बीना जी।
0: जी कैसे हैं अनिल जी, स्वागत है आपकी आवाज का, पहचान लिया मैंने आपकी आवाज को,
1: धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स हमारे साथ अनिल जी हैं जो कि हमें गोरखपुर से सुन रहे हैं, स्वागत है अनिल जी आपकी आवाज का। तो वैसे बहुत शॉर्ट टाइम में आपने कॉल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: नहीं मैं तो सुनाऊंगा, उसके पहले मैं ये कहूंगा
0: जी
1: कि आप बहुत बढ़िया गाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार, बस आप लोगों से सीखा है, प्रेरित हुई हूँ आप लोगों से।
1: नहीं मैं इसमें छोटा सा बोलूंगा कि आप बराबर गाइए, यही रियाज है।
0: बस यही कर ही रही हूँ, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी जिंदगी थोड़ा मौका दे पा रही है। हाँ जिंदगी ने चाहा तो मैं कभी कोशिश करूंगी कि मुझे कोई गुरु मिले जिससे मैं सीखूं। पर हाँ बस आप लोग के साथ
1: मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए एक्चुअली क्या ना कि जब आपको स्वयं अच्छा लगे तो दूसरे को अच्छा लगे।
0: क्या बात है।
1: तो मैं हीर राजा का एक गाना है रफी साहब का,
0: जी जी,
1: ये दुनिया ये महफिल, आवाज आ रही है कि नहीं?
0: जी सुन रही हूँ, सुन रही हूँ।
1: ये दुनिया ये महफिल,
0: क्या बात है,
1: थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ।
0: जी जी स्वागत है, स्वागत है।
1: तो शुरू करूँ?
0: जी जी।
1: ये दुनिया ये

मुझको तो बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये

0: दुनिया। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, क्या बात है। आपको किसी ने कभी ये कॉम्प्लीमेंट किया कि आपकी आवाज काफी हद तक सुरेश वादकर से मिलती है?
0: नहीं, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बोला मैम।
1: आपकी आवाज में उनकी झलक मुझे दिखती है, मतलब महसूस होती है।
0: थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने गाने को बिल्कुल दिल से निभाया, शब्दों को जैसे कहते हैं ना, जैसी कंपोजिशन उसके साथ अपनी आवाज मिला के गाना, बहुत बड़ी बात होती है। और आपने उसको बखूबी किया, क्या बात है।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ऐसे ही अपनी आवाज से गुलजार करते रहिए, शाम इंतजार रहेगा।
0: थैंक यू मैम।
1: तो हमारे साथ, जैसे कि मतलब टाइम बहुत कम है और अनिल जी की आवाज़ में हमने गाना सुन लिया, और अब चलने का भी समय हो गया। आपका 7:45 का सफ़र शुरू हो चुका है और मैं देख रही हूँ फरमाइशें भी धीरे धीरे आने लगी हैं। चलते चलते एक नगमा बड़ा प्यारा सा है मेरे दिमाग में, ऐसे ही आ गया। मैंने कहा कई दिन से सोचा था कि कुछ अच्छा सा सुनाऊँगी, तो आप लोग हमेशा अपनी पसंद बता देते हैं तो मैं वही गाना सुना देती हूँ। लेकिन इस गाने के बोल कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं, कहते हैं कितनी

0: तो ये छोटा सा नगमा आप लोग के नाम, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया शब्द जैसे आया तो मेरे दिमाग में ये गाना आ गया, मैंने कहा अब सुना के तो जाना ही जाना है। तो गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग मिस्टर ऑप्टिकल से मिस्ट्रा जी, क्या बात है, कैसे हैं? रवि गोंडा से, रवि आपका भी स्वागत है। महेंद्र जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? उषा कश्यप गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गौरव, मतलब आप आते हैं लेकिन फरमाइश करना, ये गलत बात है जनाब। अनुष्का गुड इवनिंग, ये भी फरमाइश के नाम पे बस दिखती हैं और फिर चली जाती हैं, मतलब ये तो कहो कि मैं आरजे बिना यहाँ पे रुक जाती हूँ। और एक कॉल आ रहा है, चलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई लिसनर ऐसे ही जाए, तो उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो गुड इवनिंग
1: मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं? चंद्रभान जी स्वागत है आपकी आवाज़ का।
1: बहुत बहुत बढ़िया, आप ही की आवाज़ सुन रहे थे, बहुत प्यारा गीत गाया आपने।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप लोगों की देन है। मैं चाहूंगी चलते चलते, क्योंकि फरमाइश शुरू हो चुकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना गाना जल्दी से सुना दें। मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज़ सुनने का तो भाई इंतजार रहता है हम लोग को।
1: चलिए हम भी एक छोटा टूटा हुआ गीत सुना रहे हैं।
0: स्वागत है, स्वागत है।
1: तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर हो के चले मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर रहेगा प्यार मैंने क्या, ना मिटने से मिटेगा फसाना, ये तेरा फसाना, ये तेरा अतराना, ये तेरा मन से रखना नहीं दूर। दिल हो कितना ही मजबूर, हमें याद रखना। वो तेरी दुनिया से दूर आएगी बहार। मैं तो जब नहीं गाएंगे खींचना, गला नहीं चल रहा है।
0: क्या बात है, लेकिन गाना सुना के जैसे कहते हैं ना कि आपने हम लोग को रोक लिया, क्या कहना क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा और पहले कॉल किया करें, जिससे ज्यादा समय मिल पाए आप लोग की आवाज़ सुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई चंद्रभान जी की आवाज़ ने क्या गुलजार की शाम, आज तो सबने भाई दिल खुश कर दिया, मतलब जैसे लग रहा है कि जाऊं ही ना। जैसे कि अभी हमारे गौरव जी लिख रहे हैं कि मेरे लिखा था रहने दीजिए बातों को गोल गोल घुमाना, आपको कितना आता है मुझे 3 सालों से पता है, तो कोई बात नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। मुझे पता है कि ये गाना आपने फरमाइश किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ कि मुझे ये कह रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी फरमाइश प्ले होनी है। देखिए लगातार धड़ल्ले से फरमाइश आ रही है, अभी आपकी फरमाइश ना आती तो मैं सोचती भी कि हाँ मुझे रुकना चाहिए, लेकिन ये फरमाइशें गवाह हैं, सबूत हैं कि मुझे भेजने की तैयारी करी जा रही है। फिलहाल आप लोग अपनी पसंद के गाने सुनिए, मेरी तरफ से ये लास्ट गाना आप लोग के लिए, वारूं फ्रॉम मिर्ज़ापुर द मूवी से। आप कुछ बेहतर सुन रहे थे तो आरजे बीना के साथ शो गुंडा मैसे मसाला, आरजे बीना वाला सुन रहे थे अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 एफएम पर, यह गुंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
2: बता भी नहीं पा रहे हो

आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर माइशी में, आपके अपने और जिस सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली की 9.6 FM गोंडा शहर की तरफ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग। तो ये है मेरी तरफ से आज की पहली फरमाइशी गीत। आप भी अपनी फरमाइशी का पिटारा खोल

और जी हाँ दोस्तों, मेरी बातों में, हर एक मुलाकातों में, हर एक जज्बातों में बस आप और आप हैं। सो क्या हाल चाल है पब्लिक, कैसा रहा गणेश उत्सव आप सभी के लिए? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। और कल तो विसर्जन करने के बाद में इतनी थकान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बप्पा अपने साथ जो एनर्जी लेके आए थे ना, जाते जाते वो एनर्जी अपने साथ लेके चले गए दोस्तों। क्योंकि भाई कल विसर्जन में जितनी एनर्जी हमने डाली है, जितना ही शबाब को एकदम चरम सीमा पे पहुंचाया है, जितना ही एंटरटेनमेंट की बौछार लगाई ही, जितने ही डीजे फ्लोर के बेस को बढ़ाया गया है, जितना ही डांस फ्लोर को ताबड़तोड़ तरीके से एकदम सजाया गया है, उतनी ही हालत आज सुबह से पंचर है दोस्तों। नो डाउट पूरी तरीके से पता चल रहा है, सारे के सारे साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं गणपत बप्पा के जाने के बाद में। लेकिन हाँ, जाते जाते उन्होंने खुशियां हमारे हिस्से में जरूर छोड़ दी हैं। तो आप लोग के हिस्से में कौन सी खुशियां आई हैं मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जग्गू दादा जी एमपी से, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से, राजू सीतापुर से, सोनिया तिवारी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, गौरव इंडिया वाले उषा कश्यप गोंडा से, आवास विकास गोंडा से, रवि मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, आकाश राजपूत गोंडा से, निधि सीतापुर से, नाजिया अंसारी, शिल्पी बनर्जी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, रोशनी रावत उन्नाव से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, सुरेश कुमार जी चौक से, नेबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की दूसरी फरमाइश, विच मीन्स हमारे लिसनर्स की तरफ से पहली फरमाइश, जो कि है जग्गू दादा की। और जग्गू दादा को सुनना है गाना गणपति बप्पा मौर्य। सो एंजॉय करते हैं सुरेश जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आर जी सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर के धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आचार्या जिसने तेरा नाम लिया हमने एंजॉय किया है ये गणपति वंदना सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश है प्रमुख कुमार की लुधियाना से, उनको सुनना है गाना नजरे मिलाई तूने दिल ना मिलाया। अब कितनों से आप दिल मिलाना चाहेंगे प्रमुख जी, आपके पास तो दिल मिलाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ है और बहुत ही प्यारी सी बच्ची भी है। हाँ, अब इतनों का प्यार तो मिल रहा है, संसार भर का प्यार आप ही लेंगे, संसार भर से दिल आप ही लगाएंगे तो हम लोग का क्या होगा।

नजरें मिलाई तूने दिल ना मिलाया, क्यों मेरा प्यार तेरे समझ ना आया। हमने एंजॉय किया है गुड्डी गिलहरी की आवाज में ये बहुत ही फेमस सा सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले गौरव इंडिया वाले का कहना है, इनका कहना है कि इंदौरी साहब ने कहा था कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है, फकीर शेख कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। राहत इंदौरी जी के शेर के साथ आप बताइए आपके हाल चाल क्या क्या हैं, और मैं आ गया हूँ अब तो बताओ इंतजाम क्या क्या है, तो गुलाब ख्वाब दवा जहर जज्बात नाम गीत मैं सब कुछ आपके नाम है, और क्या क्या चाहिए मुझे जरूर बताना। गौरव इंडिया वाले इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी सऊदी से, उस्मान खान गोंडा से आपका भी स्वागत है, शुभ संध्या आपको भी। इंजॉय करते हैं धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश, उनको सुनना है पंजाबी हिट गाना, सो इंजॉय करते हैं तीन पैक सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा, लोगों को तीन पैग ही क्यों चाहिए होते हैं, अगर तीन पैग की जगह छह पैग हो जाए या फिर पूरा क्वार्टर या फिर सीधे नॉन स्टॉप पूरा खंबा हो जाए तो नहीं चलेगा क्या, सिर्फ तीन पैग ही चलेगा। कहते हैं ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा।

0: बताओ।
1: यहाँ लोग प्रोडक्ट स्पॉन्सर करवाते हैं, यहाँ हम अपने कनाडा और अमेरिका के मित्रों से देख रहे हैं क्या क्या ये स्पॉन्सर करवा रहे हैं। फिलहाल अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी प्रायोरिटी, यू नो ना गाइस। सो हमने एंजॉय किया ये पंजाबी सुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग शेरी मन का, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मेरा कॉलेज टाइम का फेवरेट वाला गाना धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश बजो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नागेश्वर धाकड़ आपका स्वागत है, और इनका कहना है कि आपको बड़ा मालूम है इन सब के बारे में, लगता है कि आप तीन पैक तो खुशी खुशी से पी जाती होंगी। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं कहना ये चाहूँगी कि हाँ, तीन पैक क्या, आठ पैक, दस पैक, बारह पैक मैं सब पी सकती हूँ और तब भी ऐसे आराम से बैठी रह सकती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का पैक है। अगर चाय का पैक है तो नॉन स्टॉप आप कितने भी पैक लाते रहो, अगर कॉफ़ी का है तो हाँ एक पॉइंट पे मन भर जाएगा, अगर पानी है तो सिप सिप करते करते भाई मैं 24 घंटे भी आपसे पैक पे पैक मांगती रहूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये नहीं कहने वाली कि बस सो गया। तो मैं चाय, कॉफ़ी और पानी के पैक की बात कर रही थी, आप किसके बात कर रहे थे मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। आई डोंट लाइक थम्स अप, आई डोंट लाइक फिज, आई डोंट लाइक कोका कोला, एंड आई डोंट लाइक रेड बुल, यू नो आई डोंट लाइक एनर्जी ड्रिंक्स, यू नो गाइज। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। जैसे मेरी आवाज़ एकदम खट्टी मीठी कड़वी है, वैसे मेरी चॉइस भी एकदम खट्टी मीठी कड़वी और हॉट वाली है दोस्तों। ठंडी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, जैसे मेरा टेम्परेचर कभी ठंडा नहीं होता है दिमाग का, वैसे मेरे को ठंडी चीज़ें भी नहीं पसंद होती हैं। तो एंजॉय करते हैं मोहित की फरमाइश पर, जो कि मालवे नगर गोंडा से, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, तो कौन है ये भी चैट बॉक्स में बता दो ना। कुमार सानू अनुराधा जी की आवाज में एंजॉय कर लेते हैं हमारे मोहित की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वैसे कौन है आप अभी भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।

अपने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम आश की पिक्चर का ये गाना कुमार सानू अनुराधा की आवाज में हमने एंजॉय किया है। मोहित की फरमाइश बजो की है मालवीय नगर गोंडा से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। आपको देख के सच में दिल गार्डन गार्डन गार्डन गार्डन हो चुका है। सो आपकी फरमाइश गीत का भी आपके आवाज सिंपल नॉट सो सिंपल को है इंतजार। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है कालीचरण पिक्चर का गाना लता जी की आवाज में। सो एंजॉय करते हैं जा रे जा ओ हर जाई पिक्चर गाना लता जी की आवाज में कालीचरण पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

के भी मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी। ओ माय गॉड, हमने एंजॉय किया काली चरण का ये ओल्डिस गोल्ड वाला नगमा। लता जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारे आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइशी गीत हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना। जा जा के कहां मिन्नते फरियाद करोगे, लो मैंने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में ये बेइंतहा खूबसूरत नगमा हमारे महेंद्र की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी दोस्तों। कहना है कि

मुझे भेड़ चाल का रिवाज अच्छा नहीं लगता, जिधर जाए भीड़ उधर जाना अच्छा नहीं लगता। सफर लंबा है तो लंबा ही सही, मगर किसी के पीछे चलना अच्छा नहीं लगता। अपनी उड़ान अपना आसमान है, अपनी उड़ान है अपना आसमान है, किसी के पर कतर कर बढ़ना अच्छा नहीं लगता। अंधेरा कितना भी हो अपनी मशाल काफी है, अंधेरा कितना भी हो अपनी मशाल काफी है, किसी से उधार का उजाला लेना अच्छा नहीं लगता। जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, खैरात में मिला ताज भी मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों सो एंजॉय करते हैं महेंद्र की फरमाइश। आई लव दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।

लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, कुमार सानोल का यानी की आवाज में ये सदाबहार नगमा हमने एंजॉय किया है। महेंद्र की फरमाइश बजो की है राजस्थान से, इनका कहना है कि सिंपल मैम जी मेरा गाना बजाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज और आपका अंदाज हमेशा सुनने का मन करता है। और इनका कहना ये भी है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बहाए नहीं जाते। लोग समझते हैं मुस्कुराना बहुत आसान है, पर कुछ गम दिल में होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। थैंक यू सो मच महेंद्र, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना 2x4। एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की आवाज में, अमित कुमार की आवाज में महासंग्राम पिक्चर का ये गाना राजू की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। पता है जब मैं कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हूँ ना दोस्तों, तो इसका एकदम कबाड़ा कर देती हूँ, हमेशा उल्टा ही होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे उल्टा सोचना चाहिए, इसलिए सब कुछ सीधा होगा। क्यों सही कहा ना मैंने।

चार हुआ रे। वैसे दो दुनी चार हुआ ये तो मुझे समझ में आया कि दो एकम दो, दो दुनी चार, दो त्याय छः, दो चौक आठ, लेकिन दो दुनी चार प्यार हुआ रे, दो दुनी चार का मतलब प्यार हुआ रे, ये किस मैथ में बताया गया है? मुझे आज तक मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। किस स्कूल में पढ़ाया गया है मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना बांसुरिया अब यही पुकारे आ सजना नदिया के किनारे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बलमा पिक्चर का, आशा जी की और कुमार सानू की आवाज में तड़कता भड़कता सा सदा बहार नगमा, हमारी तड़कती भड़कती थी सोनिया तिवारी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

सूर्या अब यही पका रहे आप अलमा नदिया के किनारे। अरे भाई नदिया के किनारे आ जाओ, आर्टिफिशियल एसी फेल है इसके सामने। इतना अच्छा एयर कंडीशनिंग रहेगा कि आपको तुरंत कंबल की जरूरत पड़ेगी। और फिर राधे का गाना है ना कि काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, फिर वही वाला गाना सुनने का मन होगा, याद करने का मन होगा। अगर आपकी सजनी ने आपको बलमा बलमा कह के आपको वहाँ बुला तो लिया नदिया के किनारे, लेकिन खुद नहीं आई तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है। तो फरमाइश थी सोनिया तिवारी की, अगली फरमाइश हमारे पास में अनुष्का की श्रावस्ती से, उनको सुनना है गाना चल छैया छैया। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार सपनावस्थी की आवाज में, मलाइका अरोरा की आवाज में, सुखविंदर सिंह की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड, आए हाय पाँव के नीचे तो ऑलरेडी जन्नत है दोस्तों, अब कब होगी। एवरीवन रॉक द फ्लोर।

वाओ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि श्रावस्ती से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग गोंडा से, उनको सुनना है गाना हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। एंजॉय करते हैं ये गाना इसी फरमाइशी गीत की, उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बचते हैं लेकिन सब सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी खट्टी मीठी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। एंजॉय करते हैं राजेश कुमार की फरमाइश, मिलेंगे सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा करके सीधे 9 बजे अपनी फरमाइशी की महफिल में आ जाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, love you all, take care. Oh, I love this song.

0: ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
7: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
6: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
8: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुँच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापानी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हाल है आप सभी का, आपकी अपनी शुपरमाइशी में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। वाव, नीले नैनो वाला तेरा लकी कबूतर। वैसे मुझे नीली आंखें बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे ब्राउन आईज दे दी है, ब्लू आईज देनी चाहिए थी, फिर कितना सूट करता वो गाना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने। फिलहाल हमने इंजॉय किया है कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर, ये बहुत ही बेहतर इंसान नगमा। नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने के लिए? बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है कि कुछ धुने दिल के बहुत करीब होती हैं, कुछ धुने दिल के बहुत करीब होती हैं, कुछ आवाजें यादों की तस्वीर होती हैं। सिंपल मैम जब गाना बजाती हैं प्यार से, तो रेडियो पर लोगों की फरमाइश भी खास होती है। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की, और आवाज विकास गोंडा से रवि को सुनना है गाना श्याम नगीना बन जाते। सो एंजॉय करते हैं अंकित पांडे का ये अतरंगी सा गाना हमारे अतरंगी से आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। ये बहुत ही तरंगी सा गाना, बढ़ते हमारी आज के लिए फरमाइशी गीत की तरफ। फरमाइशें बहुत है दोस्तों और वक्त बहुत कम है, हमेशा रोज का यही है, लेकिन छेती छेती से बढ़ते हैं, अपनी रेलगाड़ी को फास्ट करते हैं, सुपर फास्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश, उनको सुनना है गाना जाने मन तू खूब है। वाह, अजय मिश्रा की फरमाइश है ये मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बहुत दुख हो गया, हमने एंजॉय किया मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश भाई बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज, विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। सो एंजॉय करते हैं ओरिजिनल गाना किशोर कुमार की आवाज में, लावारिस पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश।

ये तो ऐसा लग रहा है कि ये गाना एकदम मेरे लिए बनाया गया है। सच में मैं कहना कुछ और चाहती हूँ, लोग समझ कुछ और जाते हैं। मैं कहना कुछ अच्छा चाहती हूँ लेकिन लोग बुरा मान जाते हैं। वो क्या है ना कि लोग मेरी शब्दों से ज्यादा मेरे फेशियल एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और दोस्तों वहीं सारा का सारा लोचा हो जाता है, वहीं सब कुछ चौपट हो जाता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रोशनी रावत की उन्नाव से। रोशनी रावत को उन्नाव से सुनना है गाना आंखों में। सो एंजॉय करते हैं ये अतरंगी सा गाना रोशनी रावत की फरमाइश। बस स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गॉड, लोग दीवाना हो जाते हैं तब भी सोचते हैं कि वाह मैं दीवाना हो गया, फिर उसके बाद में कहेंगे हाय मैं दीवाना हो गया। अरे कहीं या तो वाव पे ही टिक जाओ या तो हाय पे ही टिक जाओ। हाँ, वही चीज अच्छी भी हो जाती है लोगों के लिए, वही चीज बुरी भी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो सिक्के के दोनों पहलू को अपने मन के मुताबिक मान लेते हैं। एक बार जब उनका मन होगा सिक्के के पहले पहलू को मान लेंगे, उनका मन होगा सिक्के के पहले दूसरे पहलू को मान लेंगे, उनके मन के मुताबिक पहलू बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या दोस्तों, उनके लिए तो हजारों पहलू भी कम होंगे और एक पहलू भी बहुत ज्यादा होगा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। गौरव इंडिया वालों को, ओहो गौरव इंडिया वाले को सुनना है गाना धूम मचा ले धूम। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा हमारे गौरव इंडिया वाले की फरमाइश। बस स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हाय हाय, काश मुझे भगवान ने एक इंच बड़ा और कर दिया होता दोस्तों, मैं भी R15 और पता नहीं कौन कौन सी बाइक लेके दौड़ती रहती। तब स्कूटी से थोड़ी ना अपने हाथ पैर मुंह फोड़ती, तब तो मैं बाइक से अपने हाथ पैर मुंह फोड़ती। लेकिन भगवान जानते थे, इसीलिए एक इंच छोटा ही कर दिया मुझे कि बेटा तेरे बस की नहीं है।

राजेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे 3 लिसनर्स से जिनको सुनना है मेरा फेवरेट वाला गाना, मोहम्मद मुशीब जी, उस्मान खान जी और नागेश्वर धाकड़ जी, इन तीनों की फरमाइश पर इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इसी के साथ आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना, बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि पूरे हफ्ते आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल आने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है। आपकी फरमाइशी गीतों को बजाएगी, आपकी जज्बातों को सुनेगी और आपके साथ में खूब सारा आनंद करेगी। सो दोस्तों, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी खट्टी मीठी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं ये मेरा फेवरेट वाला नगमा, स्टे ट्यून।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें

0: घबराएं नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9861-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की नहीं बल्कि हमारे और आपके दिलों की भी धड़कन। हमारे साथ गौरव जी हैं। वेलकम मनु जी, बहुत दिन के बाद आपको देख रहा हूँ। गौरव जी, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और हाल दिल आज मुझको कहने दीजिए। अच्छा, तबीयत आपकी ख़राब है तो ठीक है, आप पैरास्टामॉल खाई देवी जी। और बिल्कुल काका जी हैं भाई, शुभ संध्या। मोहम्मद मुशीफ साहब जी हैं, गुड इवनिंग डियर आज मनु भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल होंगे। और जी शुभ संध्या आपको भी। जेके शाह जी हैं जी। और आज आपके बीच जिनको लेकर आए हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हो, हो सकता है हिंदी वासी होने के नाते, हिंदी भाषी होने के नाते हम में से कुछ लोग उनके नाम को न जानते हों। भारतवर्ष में पंजाब का एक ऐसा गायक कलाकार जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन बनाया बल्कि न जाने कितने लोगों को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। आज के ही दिन ठीक एक वर्ष पहले यानी 21 सितंबर को 2025 को गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। वो गोलोकवासी हुए और आज उनकी पुण्यतिथि है। वो एक चिराग जो रोशन था हर किसी के लिए, वो एक चिराग जो रोशन था हर किसी के लिए, जमाना तरसेगा अब उसकी रोशनी के लिए। ये पंक्तियाँ कही जानी चाहिए चरणजीत आहूजा के बारे में, जिन्होंने पंजाबी संगीत उद्योग के एक युग प्रवर्तक संगीतकार, निर्माता और मार्ग निर्देशक की भूमिका निभाई। उन्हें पंजाबी संगीत का सम्राट कहा जाता था। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उनको पंजाबी गीतों का शिल्पकार भी मानते हैं। आज पंजाब का संगीत जहाँ कहीं भी है बहुत ऊंचाई पर है। और उस ऊंचाई के लिए जिस शख्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका नाम स्वर्गीय चरणजीत आहूजा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पारंपरिक पंजाबी लोक संगीत को आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़कर इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई, एक विश्व में एक पहचान दिलाई। अगर उनकी बात करें तो उनका जन्म होता है 19 नवंबर 1953 को। कहा जाता है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार विद्वान के हो चीकने पात। जिन पौधों को आगे बढ़ना होता है उनकी पत्तियां शुरुआत से ही थोड़ी सी चिकनी दिखाई पड़ती हैं। पौधा बता देता है अपने पत्तों के माध्यम से कि उसे कहां तक जाना है। इसी प्रकार से बचपन से ही चरणजीत जी को संगीत का बहुत ही गहरा शौक था और हारमोनियम से उन्होंने बजाने से अपने संगीत के सफर की शुरुआत की। और उस जमाने में जब LP रिकॉर्ड और कैसेट का जमाना था, तब उन्होंने आधुनिक डिजिटल युग तक अपने संगीत का जादू बिखेरा, मतलब एक लंबी जिंदगी जी। अभी पिछले वर्ष वो हमारे बीच नहीं रहे और इंडस्ट्री में लोग कहते थे कि उनके पास बहुत ही पारखी नजर है। और उन्होंने न जाने कितने पंजाबी संगीतकारों को सुपरस्टार में बदल दिया। जिनके गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर बोले, हम उनको जानते हो या न जानते हो, लेकिन उनके बहुत सारे शागिर्द रहे, बहुत सारे उनके शिष्य रहे, जिनके गीत, जिनकी गजलें आप सभी ने सुनी होंगी। और उन्होंने बहुत से गायक कलाकारों को पंजाब का सुपरस्टार बनाया। जी हाँ, कहा जाता है कि गुरु का पद दुनिया में सबसे बड़ा पद होता है। वो स्वयं तो एक बहुत अच्छे संगीतकार थे ही थे, उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने गायकों का भविष्य बनाया, उन्हें संवारा। और वैसे भी कहा जाता है कि जब इंसान खुद से थोड़ी सी मेहनत करने लगता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर आकर उनका साथ देते हैं। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर ही कुछ कारीगर करता है। थोड़ी सी प्रतिभा अगर आप में है तो इस दुनिया में कोई ना कोई मिल जाता है जो आपके हुनर को पहचानता है। और ऐसे ही अब जिनकी यादें हमारे साथ हैं, केवल स्मृति शेष है, वो स्वर्गीय चरणजीत आहूजा। आज का ये बहारे गजल का कार्यक्रम हम श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें अर्पित करते हैं। उन्होंने पंजाबी गीत को एक वैश्विक पहचान दिलाई, जो अपने आप में एक रीजनल लैंग्वेज थी, एक क्षेत्रीय भाषा थी, उसे विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम आसान नहीं था। लेकिन उनको तो तराशने का हुनर आता था साहब, तराश लिए वो। गौज लिखते हैं, आज बहुत दिन बाद मैं शामिल हुआ इस महफिल में, फिर से कुछ जज्बात निकले, कुछ हलचल हुई इस दिल में, कुछ अजब सा कशमकश रहा जिंदगी और मेरे दरमियान, कि वक्त दरिया सी बहती गई और मैं खड़ा रह गया साहिल में। क्या बात है गौरव जी, ये महफिल आप जैसे लोगों की ही तो मुंतजर है, आप जैसे लोगों की ही तो प्रतीक्षा में रहती है। तो आइए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं स्वर्गीय चरणजीत आहूजा जी को इस प्यारे से नगमे के माध्यम से, और आपसे मिलते हैं इस संगीतमय अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गनस्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब तो ये गोंडा से हमारे और आपके दिल की धड़कन भी बन चुकी है। हम ऐसा जेके शाह भी हैं, खैर मकदम करते हैं आपका और आदाब आप कबूल करें। फिलहाल पहले हम एक गीत और एक गज़ल के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर बढ़ाएंगे अपने कार्यक्रम को आगे। फिलहाल एक प्यारा सा नगमा उनकी याद में और एक प्यारी सी गजल उनकी याद में, और इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम यथास्थिति में चलेगा। सुनिए ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठ।

और यही तो पूछते रह जाते हैं हम कि कहाँ तुम चले गए। स्वर्गीय चरणजी ताहूजा, जिन्होंने पंजाबी गीत जो कि एक फोक सॉन्ग था, एक सीमित क्षेत्र में सुना जाने वाला संगीत था, गीत था, उसको वैश्विक स्तर पर लेकर गए। और मुझे यही लगता है कि आपकी कामयाबी, आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, आप कितने कामयाब हैं। शायद इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि आपने कितनों को कामयाब किया। और जहां तक मुझे लगता है कि भारतवर्ष में अगर हम इस परंपरा को देखें तो दो ही पुरुष ऐसे होते हैं जो पुरुष को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पहला पिता होता है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़ें, और दूसरा गुरु होता है जो चाहते हैं कि उसके छात्र उनसे आगे निकले, और उन्हें गर्व होता है। हम जब क्लास 12th में थे तो एक पोएम चलती थी, टू द प्यूपल्स, हेनरी विवियन लुइस डेजियो, बहुत अच्छे कवि। उन्होंने लिखा कि वो एक कवि भी थे और साथ साथ एक अध्यापक भी रहे, तो उन्होंने लिखा कि वाच ज्वाइंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूटिलिटी वेविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, आह देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। अर्थात उन्होंने कहा कि जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आने वाले समय में कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और बहुत से हो चुके हैं, बहुत को होना बाकी है, तो मेरे ऊपर खुशियों की बरसात होती है। और तब मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाया है। अध्यापक अगर हम बने तो हमने किसी को बनाया, और शायद जिंदगी यही है दोस्तों, हम आप माने या ना माने, लेकिन हम में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हम कुछ करने के लायक ही नहीं हैं, तो क्या करें, किसी का क्या हित करें। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आप प्यार के दो शब्द बोल सकते हैं, किसी के दुख में उसके कंधे पर हाथ रख सकते हैं, चिंता मत करो भाई, मैं हूं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। मुझे लगता है शायद जिंदगी में ये अपनापन, ये एहसास शायद जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आप अकेले खाना खा लीजिए, और कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर देखिए जिसने पिछले दो दिन से कुछ न खाया हो, और आपसे कहे और आप कह दें कि ठीक है आइए होटल पर आपको खाना खिलाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ भी, आप यकीन मानिए आपको वो छोटा सा काम करके खुशी मिलेगी। और शायद हम जिंदगी को इस तरह से बदल सकते हैं, हमारे बस का कुछ ना कुछ तो होता ही है साहब। अगर हम ये कहें कि नहीं हम किसी का हित करने के लायक नहीं है, तो शायद इस बात पर मैं असहमत रहूंगा, कुछ ना कुछ करने के लायक ऊपर वाले ने सबको बनाया है। और हम देखते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, कुछ एहसास जिनका कोई मोल नहीं होता। आप दुखी हैं और आपके कंधे पर कोई हाथ रखे कहता है अरे भाई क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, कुछ होगा तो देखा जाएगा। देखिए इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है।
आत्मविश्वास बढ़ता है, दुख में सहारा चाहिए होता है इंसान। श्री स्वर्गीय चरणजीत ताहूजा ने जिन दिग्गज गायकों को पहचान दिलाई उनके नाम मैं बताऊं आपको, आपने भले उनके गीत न सुने हो लेकिन इनमें से जैसे अमर सिंह चमकीला, अगर नहीं नाम सुना है तो आप सभी ने गुरदास मान का नाम सुना होगा, कुलदीप मारक, सुरिंदर शिंदा, शार्दुल सिकंदर, मोहम्मद सादिक और एक और नाम हंसराज हंस, इन सभी को बुलंदी पर पहुंचाने वाले का श्रेय स्वर्गीय चरणजीत आहूजा जी को है। और आपको बताऊं मैं कि चमकीला और सुरिंदर सोनिया का प्रसिद्ध पहला रिकॉर्ड जो था वो तकवे ते तकुआ खड़के, ये उनका पहला रिकॉर्ड था और 1981 में आया था और ये आहूजा साहब के ही संगीत निर्देशन में ही तैयार हुआ था। और ये वो दौर था जिसने पंजाब के संगीत परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आज देखिए पंजाबी गीत आता है तो एक अजब सा ट्रेंड लेकर आता है, ये श्रेय जाता है उनको। आप कितने कामयाब हैं और आपकी वजह से कितने कामयाब हैं। मैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को बहुत पसंद करता हूँ, तो उन्होंने UPSC क्रैक करके फिर जॉब छोड़ी थी, टीचर बने थे। अगर वो व्यक्ति IAS बन जाता, अगर वो बन जाते, DM बन जाते तो शायद वो एक होकर रह जाते, लेकिन उन्होंने जब अपने संस्थान को चलाया तो पता नहीं कितने DM बनाए। ऐसा ही कुछ खान सर ने भी किया, मतलब अध्यापक को जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसके विद्यार्थी उससे ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, वो खुश हो रहा है। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। इस मौके पर मुझे याद आता है कि नज्म याद आती है उनकी, डॉक्टर इकबाल अशर, बहुत ही प्यारी नज्म है। एक पिता का खत अपने बेटे के नाम, जिसको वो वसीयतनामा कहकर सुनाते हैं, मुझे अचानक याद आया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पर खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, बुलंदी की नई तस्वीर लिखो, चाहत की नई तदबीर लिखो, मेरी चाहत है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, बिछड़ने का बहाना चाहता हूं, बिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, पोशीदा मतलब छुपी हुई, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले और उसको गर्व होगा कि यस दैट्स माय सन, और ये होता है साहब। तो चरणजीत आहूजा जी पर इसलिए कार्यक्रम दे रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गए। वास्तव में मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में जो भी आया, जिसने भी सांस ली, किसी कहानी का प्रारंभ भी उसके अंत का प्रतीक होता है। जिंदगी भी एक कहानी है साहब, जिसका अंत कहीं ना कहीं मृत्यु पर होता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ ऐसे काम किए हों तो वो मरते नहीं हैं,
वो सदैव के लिए अविस्मरणीय हो जाते हैं, वो मुकम्मल होते हैं, पूरे होते हैं, वो उनकी मृत्यु नहीं होती। स्वर्गीय चरणजीत आहूजा की मृत्यु नहीं हुई, वो संपूर्ण हो गए। और पंजाबी दुनिया में, पंजाबी गीतों की दुनिया में धूम मचा दी उन्होंने। जी हाँ, और हमेशा सत्या शास्त्री जी हैं। जी हाँ, चरण स्पर्श करते हैं आपको भाभी माँ, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और रवि जी हमारे साथ हैं भाई, और गौरव जी लिखते हैं कभी विदेशी तो कभी हम देशी कराते हैं, जो जैसा चाहता है पीना हम उसे पान वैसी कराते हैं। और हमें लगता था कि आप हिंदी और उर्दू ज़ुबान के उस्ताद हैं, पर हमें सुना था उस दिन कि आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, क्या बात है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और आप लोगों से बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीख करके साहब जो आता है वो कर लेते हैं। और अनिल शास्त्री जी हमारे साथ, दादा चरण स्पर्श करते हैं आपको, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आरजे मनुष्य जी नमस्कार नमस्कार, गज़लों की दुनिया में उपस्थिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे पास जेके शाह जी हैं, जी ये फरमाइशी प्रोग्राम है कैसे जी? जी नहीं, ये बाहर एक गज़ल है, फरमाइशी प्रोग्राम पौने आठ से लेकर साढ़े नौ तक होता है। और हाँ, क्या बात लिखी है आपने, वसीम बरेली साहब ने लिखा कि था कि मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। क्या बात है, बहुत ही मौके पर आपने बहुत ही प्यारी गज़ल लिखी, और बहुत ही प्यारा शेर ये प्रोफेसर वसीम बरेली साहब का है। उन्होंने ये भी कहा था कि कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी को ही तो मिट्टी में दफनाने गए। अगर हम देखें तो पंच तत्व से ये शरीर बना, और अगर इसे हम अग्नि के हवाले करते हैं तो उन्हीं पांच तत्वों में फिर मिल जाता है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, धरती आकाश चित जल पानी पावक अग्नि गगन आसमान समीरा वायु, इन्हीं पांच से मिलकर हम बने साहब। और कहना ये भी चाहता हूं कि ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम सब दास्तां हो जाएंगे। तो हम सब, वसीम बरेली साहब ने कहा था कि रोज नई कहानी कहने वाले लोग, रोज नई कहानी कहने वाले लोग कहते कहते खुद किस्सा हो जाते हैं। जो दूसरों के किस्सों को सुना रहा है कभी उसके किस्से सुनाए जाएंगे, ये शायद धरती का सबसे बड़ा सच है।

कभी ऐसे ही दौर से मैं गुजरा था, मेरे किसी अपने की मतलब देहावसान हुआ तो कविता लिखी थी, याद आ गई, आपको सुना देता हूँ कि पंच तत्व देह का प्राण ही सिंगार है, आदमी की जिंदगी का कौन एतबार है। पांच तत्व से शरीर बना, छल कपट तो ईर्ष्या अंधेरे में डुबोएगी, काम क्रोध मोह लोभ जिंदगी मिटाएगी, प्यार से है जिंदगी और जिंदगी से प्यार है, आदमी की जिंदगी का कौन एतबार है। नहीं साहब, मुझसे कोई पूछता है कि जिंदगी में सबसे बढ़िया टीचर कौन, तो मैं कहता हूं देखो, जो सबसे बेहतरीन टीचर है वो लाइफ है। बच्चे पूछते कैसे, मैं कहता हूं देखो, टीचर और चीटर इन दोनों की स्पेलिंग एक है, कभी लिख कर देखिएगा, TEACHER CHEATER, स्पेलिंग सेम है, लेटर्स केवल इधर के उधर हुए हैं, बाकी सेम स्पेलिंग है। जितने अक्षर टीचर में है उतने ही अक्षर चीटर में है, सेम सब, सेम अक्षर। यानी ये शब्द हमें बताता है कि जो जितना अच्छा टीचर होता है उतना ही खराब चीटर होता है। और साहब, जिंदगी से अच्छा कोई टीचर नहीं होता, आपको जिंदगी से बेहतरीन कोई सिखा नहीं सकता। और जिंदगी कब आपका साथ छोड़ दे, कब हमारा साथ छोड़ दे, ये इस दुनिया का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता। तो लाइफ इज द बेस्ट टीचर एंड द वर्स्ट टीचर, जिंदगी सबसे अच्छी गुरु और सबसे बेवफा दोस्त होती है। आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। भाई हमारे साथ जेके शाह जी हैं और इन्होंने एक गजल भाई कही है कि चुपके चुपके रात दिन। चलिए आपको सुनाते हैं प्यारी सी गजल, लौटते हैं और फिर बात करेंगे उन्हीं की जिनसे हमने कार्यक्रम शुरू किया है, स्वर्गीय चरणजीत आहूजा। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, एक दिन हंसाए तो 100 दिन रुलाए। और शायद ये सत्य भी है, लेकिन हम जाने अनजाने उस धोखे में आ ही जाते हैं। आज जिनकी बात कर रहे हैं उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो चरणजीत आहूजा जी का पूरा परिवार संगीत से जुड़ा है। उनकी धर्मपत्नी है, उनका नाम है संगीता आहूजा। और आपको बताते चलें कि उनका जो बेटा है सचिन आहूजा, इस समय भी वो पंजाबी गीतों के एक बेहद प्रसिद्ध और जाने माने संगीत निर्देशक और प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ, मतलब जिस रास्ते पर पिता चले उस रास्ते पर बेटा भी चल पड़ा है। और मुझको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो इंसान विरासत में उसको मिलती हैं। शायद यही वजह है कि उनके बेटे ने अपने पिताजी की पसंद को देखा और सोचा कि नहीं नहीं, आई हैव टू मेक माई करियर हियर, यहाँ पर मुझको अपना करियर बनाना है। और उन्होंने शुरुआत कर दी। अब जिंदगी है और मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई आपका अपना इस दुनिया से जाए तो हाय हाय करने से अच्छा है हरी हरी किया जाए, शायद इससे दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त होती है। आगे कहाँ तक सच है मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जो पढ़ा वो। और जी हमारे साथ मोहम्मद मुशीफ जी हैं, वेरी नाइस गज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपको। और खाया है मैंने धोखे तुझसे मोहब्बत का, खुदा करे ये धोखा तू भी किसी से खाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी बात कही आपने जेके शाह जी। और नीना टू और साथ हमको लगता है हमारी नेहा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपका आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बाहर है गज़ल में। और उम्मीद भी करते हैं कि बुधवार को आपकी प्यारी सी आवाज़ हमको सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी हमने आपको एक गज़ल सुनाई और वो गज़ल रफ़ी साहब ने गाई थी। और अगर हम गज़लों की बात करें तो एक गज़ल ऐसी है जिसको किशोर कुमार ने गाया है। हम जिंदगी से जब कभी मायूस हो जाएं, आप मायूस हों हम हों, क्योंकि जीवन है साहब तो सुख और दुख ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको कोई रोक नहीं पाया है ना रोक पाएगा, लेकिन संगीत आपकी आत्मा को सुकून देता है, यकीन मानिए। तो आइए अब आपको एक गज़ल ऐसी सुनाते हैं जब आप बहुत दुखी हो और अपने मन को समझाना हो तो ये गज़ल मैं आपको रेडियो गणेश 89.6 FM से सुना रहा हूँ। और हो सकता है ये शायद आपके दिल को छू जाए, उस एहसासात को छू जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ऐसा फील करेंगे। और अगर आप महसूस कीजिएगा इस एहसास को तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि किस पंक्ति ने, इस गज़ल की किस पंक्ति ने आपके दिल को बड़े प्यार से छुआ और सहला कर आगे निकल गई। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

कहां तक ये अंधेरे मन को छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बिल्कुल, और अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये भी पढ़ा कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, अगर पतझड़ आया है तो बसंत को आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जिंदगी से कभी मायूस हो, कभी गम से आप रूबरू हो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्यारी सी गजल आपको देगी सुकून। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 9:30 पर आप ही के कार्यक्रम बाहर गजल में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी ग्रहण। कल से ही उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। रात को मारे एक्साइटमेंट के नींद ही नहीं आई थी। इस पल की कितनी प्रतीक्षा की थी उसने। रात जब खाने के बाद ऋतिक उसके कमरे में आया था तो उसे लगा था कि शायद उसे कुछ चाहिए। उसके पूछने पर ऋतिक ने अपनी दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। नहीं माँ, मुझे कुछ बताना था आपको। शर्म से गुलाबी हो आए उसके गोरे मुखड़े को देखकर उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान तैर गई। तो तुझे मेरी बहू मिल गई, अगर आप स्वीकार करेंगी तो, ऋतिक ने कहा था। कौन है वो जिसने मेरे बेटे के दिल की घंटी बजाई है? बेटे के गाल पर प्यार की चपत लगाते हुए उन्होंने पूछा। माँ, प्रिया नाम है उसका, मेरे साथ MBA किया है उसने। हम 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और पसंद भी करते हैं। उसको भी अपने शहर में ही अच्छी जॉब मिल गई है, ऋतिक बोला। कब मिलवाओगे, उनका सीधा सा प्रश्न था। माँ, कल सुबह नाश्ते पर बुला लूं, ऋतिक ने पूछा। बुला नहीं लेता हूँ, जाकर लेकर आना उसे। अब जाओ सो जाओ। पूरी रात वो करवटें बदलती रहीं। सुबह 4 बजे ही उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया और रसोई में घुस गईं। मन करता ये भी बना लें वो भी बना लें। सुबह 7 बजे तक उनकी रसोई तरह तरह के पकवानों से महकने लगी थी। माँ, क्या क्या बना लिया आपने, पूरा घर महक रहा है, आप क्या रात भर बनाती रही हैं? आश्चर्य और प्यार दोनों ऋतिक के स्वर में था। मेरी बहू पहली बार आ रही है, ये दिन एक बार ही आता है, तुम चाय पियो मैं नहा कर आती हूँ, माँ ने कहा। ऋतिक के जाने के बाद उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, मोती की माला और कानों में टॉप्स पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गईं और अपने कटे हुए बालों में ब्रश करने लगीं। आज कितने सालों बाद श्रृंगार करने का मन हुआ था उनका। माँ, माँ, ऋतिक की आवाज सुनकर वो चौंक गईं। माँ, प्रिया आ गई। ऋतिक उनके सामने खड़ा था। अरे, दरवाजा किसने खोला, वो बोली। खुला था माँ, शायद आप बंद करना ही भूल गई थी, ऋतिक बोला। यही हुआ होगा, माँ ने कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ग्रहण। अब तक आपने सुना ऋतिक ने माँ से परमिशन ली थी उनको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने की। माँ ने कहा अगले दिन ही सुबह उसको लेकर आए और उसके आने की खुशी में माँ ने ढेरों पकवान बनाए थे और सच धज कर उसका इंतजार करने लगी थी। अब आगे बैठक में घुसते ही प्रिया से उनकी नजरें मिली तो वो दोनों ही जैसे जड़ हो गईं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा है। खुद को संभालना मुश्किल हो गया। ऋतिक ने सहारा देकर उन्हें बैठाया। माँ क्या हुआ आपको? ऋतिक परेशानी से बोला। वो चेतना शून्य होती जा रही थी। बंद होती आंखों से देखा ऋतिक और प्रिया दोनों उनके ऊपर झुके हुए थे और उन्हें पुकार रहे थे। उन्हें उनकी आवाजें दूर से आती प्रतीत हो रही थी। जब होश आया तो देखा वो अपने पलंग पर लेटी हुई थी। ऋतिक और प्रिया के साथ साथ डॉक्टर रजत भी उनके कमरे में बैठे हुए थे। माँ क्या हुआ आपको? परेशान ऋतिक की आंखें डबडबाई हुई थी। उसका हाथ उनके हाथों में था। बेटा मैं ठीक हूं, माँ बोली। डॉक्टर रागिनी, आप दोस्त को तो डॉक्टर मानती ही नहीं है। मैंने कितनी दफा आपसे कहा कि थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, मगर डॉक्टर रजत फिर से उठकर डॉक्टर रागिनी का ब्लड प्रेशर नापने लगे। मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, पर अंकल मम्मी ने तो कुछ भी कभी बताया ही नहीं, क्या हुआ है उन्हें? ऋतिक परेशान हो उठा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे रजत अंकल ऐसे ही बोलते रहते हैं, उन्होंने बेटे का हाथ प्यार से दबाते हुए कहा। कोई यूं ही बेहोश नहीं हो जाता मम्मी, अंकल आप बताइए ना, ऋतिक बोला। ऋतिक बहुत परेशान था और इस परेशानी में प्रिया को भी भूल गया था, जो पास ही चुपचाप बैठी हुई थी और मुश्किल से अपने आंसुओं को संभाले थी। परेशान होने वाली भी बात नहीं है ऋतिक, तुम्हारी मम्मी को थोड़ा आराम करने की जरूरत है, बहुत थका देती हैं खुद को। वैसे पूरा चेकअप करा लेना हमेशा अच्छा होता है, मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, करा लेना। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ना ठीक बात नहीं है, ऋतिक की पीठ थपथपाकर रजत बोले। जी अंकल। डॉक्टर रजत जाने लगे तो ऋतिक बोला, अरे अंकल चाय? मम्मी को ठीक होने दो, फिर साथ में पीते हैं, डॉक्टर रजत बोले। प्रिया मम्मी का ध्यान रखना, मैं अंकल को छोड़कर आता हूँ, कहते हुए ऋतिक कमरे से बाहर चला गया। सॉरी आंटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऋतिक आपका बेटा है, उसकी आंखें अब बरसने लगी थीं। प्रिया मेरे पास आओ, उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ग्रहण। अब तक आपने सुना, ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को माँ से मिलवाने लाया था, पर उसे देखते ही माँ का इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर रजत को बुलाया गया, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे। अब आगे, आंटी नहीं प्रिया, माँ बोलो। वो फफक फफक कर रोने लगी और अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। इसने से उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अतीत उन पर हावी होता जा रहा था। लगभग 12 साल पहले का वो दिन उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। वो क्लिनिक में मरीज देख रही थी। एक दंपत्ति अपनी 13-14 साल की बेटी के साथ क्लिनिक पर आए। बच्ची दर्द में थी और एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे नहीं जीना है। रोते हुए उसके पिता ने बताया कि वो लोग एक रिश्तेदार के घर गृह प्रवेश में गए थे। बेटी का 10वीं का बोर्ड था तो वो अपनी टीचर के इंतजार में घर पर ही रुक गई थी। हम सब जब शाम को लौटे तो बेटी इस हाल में मिली। वो टीचर दरिंदा निकला। वो हाथ जोड़ कर खड़े थे, बोले, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते डॉक्टर, उसका तो कुछ नहीं होगा पर हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी, हम इसकी परीक्षा के बाद ये शहर छोड़ देंगे, हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा। उनकी जेठ की बेटी भी इसी तरह के हादसे से गुजरी थी। जेठ जी खुद पुलिस में थे, पर क्या लाभ हुआ पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन सब का तनाव और समाज की हिकारत भरी नजर। वो बेचारी नहीं झेल पाई और साल पूरा होते होते पंखे से लटक कर मर गई। वो बच्ची के इलाज के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करने लगी। वो जब घबराती अपनी माँ के साथ उनके पास चली आती, फिर धीरे धीरे अकेले आने लगी। दूसरे शहर जाकर भी वो फोन से संपर्क में रही। एक दिन उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, तुम 12th में आ गई हो और अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम इस घटना को भूल जाओ, इसके लिए तुम्हें मुझे भी भूलना होगा। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है पर ये नई जिंदगी आपकी दी हुई है, वो कांपती हुई आवाज में बोली। माँ कह रही हो तो माँ की बात मानो, सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी जियो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ग्रहण। अब तक आपने सुना डॉक्टर रागिनी का बेटा ऋतिक उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलवाने लाया। प्रिया को देखते ही उनके तो होश फाकता हो गए। ये वही लड़की थी जो अपने बचपने में मॉलेस्टेशन का शिकार हुई थी और उन्होंने ही उसका इलाज किया था। अब आगे डॉक्टर रागिनी ने उससे कहा था, जब शादी करोगी तो मुझे जरूर बताना, मैं आऊंगी। शादी? मैं मुझसे कौन शादी करेगा? प्रिया ने कहा था। क्यों, तुमने कौन सा पाप किया है? ये पाप पुण्य का पाठ हम औरतों को जबरन सिखाया गया है ताकि हम कभी भी आजादी से ना जी सकें। तुम शादी करोगी और एक आम जिंदगी जियोगी। बस इस दुर्घटना का जिक्र किसी से कभी नहीं करना। मैंने अपनी मेडिकल फाइल पे भी तुम्हारा असली नाम नहीं लिखा है, उसमें तुम छाया हो। अब तुम अपने असली नाम के साथ आराम से जियो। मगर 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आज अचानक वही छाया प्रिया के रूप में उनके सामने थी। बेटे की आवाज से वो वापस वर्तमान में लौट आईं। माँ, इसे क्या हुआ? वो प्रिया को देखकर बोला, डर गई है। प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने जवाब दिया, इसी की वजह से तो आप इतना थकी ना माँ। प्रिया की ओर देखते हुए ऋतिक बोला। प्रिया सिर उठाकर अब पलक ऋतिक को देख रही थी। अब तुम्हारी सजा ये है प्रिया कि तुम माँ के लिए चाय बनाकर लाओ और जो बचे उसमें से थोड़ी मुझे भी दे देना, ऋतिक ने कहा। कमरे का वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। तकिए की टेक के सहारे दोनों ने उनको बैठा दिया। चाय पीते हुए उन्होंने प्रिया की ओर देखा और बोली, प्रिया चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, चलो रसोई में तुम पास हो गई, पर अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। मेरी बहू बनने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा पास करनी होगी। प्रिया और ऋतिक एक दूसरे को देखने लगे। हिचकता हुआ ऋतिक बोला, माँ आपको कोई एतराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे अकेले में प्रिया से कुछ बात करनी है, उसके बाद में तुम्हें बुला लूंगी। जी, ऋतिक प्रिया की ओर देखता हुआ बाहर चला गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है ग्रहण। अब तक आपने सुना डॉक्टर रागिनी जब अपने बेटे ऋतिक की गर्लफ्रेंड प्रिया से मिली तो उनके होश उड़ गए। ये वही लड़की थी जो बचपन में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुई थी और उन्होंने ही उसकी काउंसलिंग और उसका इलाज किया था। उन्होंने उसे बहू बनाने पर सहमति तो दे दी पर अपने बेटे से ये कहा कि उन्हें इसकी एक परीक्षा और लेनी है और ऋतिक को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। अब आगे प्रिया अब सीधे उनकी ओर देख रही थी। वो बोली, प्रिया मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। माँ, मुझ जैसी ग्रहण लगी लड़की को जानते समझते हुए आप क्यों स्वीकार कर रही हैं? आप मना भी तो कर सकती हैं। प्रिया बोली, क्यों मना करूंगी? तुम्हारी जैसी कोमल हृदय वाली बेटी मेरी बहू बने, यही तो हमेशा से चाहा था मैंने। तुम्हारे साथ ही मेरे बेटे की खुशियां हैं, ये खुशी मैं उसे देना चाहती हूं। बस एक वादा चाहिए तुमसे। कौन सा वादा माँ? प्रिया बोली, कभी किसी भी कमजोर पल में उस हादसे का जिक्र ऋतिक से नहीं करोगी। वो बोली, प्रिया मौन उन्हें देख रही थी। प्रिया, मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ है, फिर भी मैं नहीं चाहती कि किसी अनचाहे अतीत का काला साया मेरे बेटे बहू के जीवन को परेशान करे। आपकी भावना मैं समझ सकती हूँ माँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का जिक्र मेरी जबान पर कभी नहीं आएगा। प्रिया, अपने मम्मी पापा से भी कहना कि जब वो आएंगे तो हम पहली बार मिल रहे होंगे, ये याद रखें। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। भावुकता से प्रिया उनके गले लग गई। प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर उन्होंने कहा, अब ऋतिक को बुला लो। प्रिया के साथ ऋतिक कमरे में आया तो उसके चेहरे पर कई प्रश्न साफ दिखाई दे रहे थे। तेरी प्रिया मेरी परीक्षा में पास हो गई, ये चांद सी सुंदर लड़की मुझे बहू के रूप में स्वीकार है। अच्छा, अब तुम दोनों रसोई से कुछ लाकर खिलाओ तो, मुझे भूख लग रही है। उठते हुए प्रिया बोली, मैं लाती हूँ माँ। और हाँ प्रिया, अपने मम्मी पापा से बोलना मुझसे जल्दी आकर मिलें और उन्हें ये भी बता देना कि मुझे शादी की जल्दी है। ऋतिक और प्रिया के चेहरे खिल उठे और दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी ग्रहण। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात
0: जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज़ से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-200।